मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 12 अक्टूबर 2026, 5:56:40 में हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने वाले हैं। समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने

0: में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2-471-234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है नवरात्रि पर विशेष आराधना।

नवरात्र के दूसरे दिन अपने हाथों में अक्षमाला तथा कमंडलु धारण करने वाली भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली माता ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। जब सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्यागे और पुनः शैलपुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। जब पार्वती का शिव से मिलन होगा तभी तो हम जन्म जन्मांतरों से अर्जित पाप समूह रूपी तारकासुर के पदार्थ कार्तिकेय को प्राप्त कर पाएंगे। अतएव माता पार्वती ने शिव को पति

में प्राप्त करने के लिए हिमालय शिखर पर तपस्यारत प्रभु शंकर की सेवा का व्रत लिया। इसके लिए हिम शिखर पर तपस्यारत भगवान शंकर की सेवा वे बराबर करने लगीं और सन्नत गात्री पार्वती वृक्ष की सुकोमल कलिका के समान यौवन भार से झुकी हुई पार्वती ने पुष्पादि पूजा सामग्रियां लेकर भगवान शंकर की पूजा के लिए प्रस्थान किया। देवताओं ने जब यह आयोजन देखा तो उनके सहायतार्थ कामदेव और वसंत को भेज दिया और लो ये क्या, पल में वह प्रांतर वसंत के सभी समायोजनों से परिपूर्ण हो गया। लताएं वृक्षों का आलिंगन करने लगी, भौरे पुष्पों के भार से झुकी डालियों पर मधुर गुंजार करने लगे, तितलियां इधर उधर मानो फूलों से बतियाने लगीं और पूजन सामग्री सहित सुंदरी षोडशी पार्वती प्रभु शिव के

यौवन भार से झुकी हुई पार्वती ने पुष्पादि पूजा सामग्रियां लेकर भगवान शंकर की पूजा के लिए प्रस्थान किया। देवताओं ने जब यह आयोजन देखा तो उनके सहायतार्थ कामदेव और वसंत को भेज दिया, और लो ये क्या, पल में वह प्रांतर वसंत के सभी समायोजनों से परिपूर्ण हो गया। लताएं वृक्षों का आलिंगन करने लगी, भौरे पुष्पों के भार से झुकी डालियों पर मधुर गुंजार करने लगे, तितलियां इधर उधर मानो फूलों से बतियाने लगीं, और पूजन सामग्री सहित सुंदरी षोडशी पार्वती प्रभु शिव के पूजन के लिए झुकी। शिव जो साक्षात ब्रह्म हैं, निर्विकार हैं, निर्लेप हैं, उनका ध्यान भी विचलित सा होने लगा। प्रभु ने इसका कारण जानने के लिए जब इधर उधर देखा तो दिखा कि कामदेव अपने इक्षु धनुष की डोरी तान कर बाण संधान कर रहा है। बस उनका तृतीय नेत्र खुला और कामदेव जलकर राख हो गया। उसकी प्रिया रति विलाप करने लगी। तब पार्वती ने अपनी रूप की निंदा की कि उस रूप से क्या लाभ जो मेरा मनोरथ परिपूर्ण न हो सका, मैं शिव को पति रूप में पा न सकी। और तभी आकाशवाणी हुई, हे सुंदरी तुम दुखी न हो, अपने रूप को तप की कठोरता से महिमान्वित करो। जब तपह तेज से तुम्हारा यह शरीर कंचन सा दमकने लगेगा तब तुम्हें शिव पति रूप में मिलेंगे। और इसके बाद क्या पूर्व जन्म प्रिया को रुकना था? माता पिता को रोका बिलकता छोड़कर उस सुंदरी ने अपने कमल के समान सुंदर हाथों में जप माला और कमंडल ले लिया। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में वे तपस्या करने निकल पड़ी। कहने लगी, माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गः त्वयि नस्तः तस्मान् मे सिद्धिदा भव। देवी की संकल्प शक्ति अद्भुत थी। यह संकल्प शक्ति ही है जो मनुष्य मात्र की उन्नति और अवनति का कारण होती है। यज्ञ व्रत नियम धर्म सभी तो संकल्प से जन्म लेते हैं। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवः। व्रत नियम धर्माश्च सर्वे संकल्प जाय स्मृता। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने भोजन त्यागा, जल त्यागा, केवल वायु पीकर रहीं और इसीलिए अपर्णा कहलाईं। शीत ऋतु में कटी पर्यंत जल में खड़े रहकर तपस्या की, तो ग्रीष्म में अपने पांच तरफ अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप संपन्न किया। और तब कर में अक्षमाला और कमंडल उधारिणी उमा ने अपनी तपस्या से शिव को जीता। प्रभु शिव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे सुंदरी मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया दास हूँ, तो माता ब्रह्मचारिणी सर्वश्रेष्ठ हैं। तपह पूता वे नवदुर्गा साधना के द्वितीय चरण की पथ प्रदर्शिका हैं। आप अक्षत कौमार्यावस्था वयह संधि की अवस्था की प्रतीक हैं। साधना के विकास का ये द्वितीय स्तर है। साधना की किरणों के जन्म लेते ही हृदय दीप शिखा के चिन्मय प्रकाश से मानो आलोकित हो जाता है। तब अज्ञानतम मिट जाता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ तत् कवयो वदन्ति। पर ज्योतिर्मयी भव्यता की मूर्ति ब्रह्मचारिणी दुर्गा विजन वन के गहन अंधकार को भेद कर साधक के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। जप मालिका एवं कमंडल उदाहरण करने वाली गुरु अंबिका ब्रह्मचारिणी ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्रदान करती हैं। प्रातःकालीन उदित रश्मियों के हेमाभ श्रृंगार से सुसज्जित श्री गायत्री माँ गायंतम त्रायति इति गायत्री माता ने भी अपने कर कमलों में कमंडलु एवं जप मालिका को धारण कर रखा है। जहाँ जप मालिका एवं पुस्तक विशुद्ध ज्ञान के प्रतीक हैं, वहीं उनका कमंडलु

सकल कामनाओं और मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। एक वाग्भव बीज ज्ञानप्रद है तो कामराज बीज स्वरूप आनंदप्रद है। माता के चरण कमल अनंत शक्तिप्रद हैं। श्री बाला त्रिपुर सुंदरी भी अपने वाम कर में पुस्तक और दक्षिण कर में जप मालिका धारण करती हैं। इसी से यह अनवर्थ ही प्रतीत होता है कि नवशक्ति समायुक्तम नवरात्र तदुच्यते, एकैव देव देवेशी नवधा परिकीर्तिता। वास्तव में माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्म शक्ति हैं, वही मातृशक्ति हैं और वही दुर्गा देवी हैं। इन्हीं की आराधना करके हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर शिवत्व को प्राप्त करना है। तपस्या से हमें अपने दुर्गुणों, अपवित्रताओं और अमानुषिक भावों को दूर करना पड़ेगा, तभी सत्वगुण की वृद्धि होगी। यह माँ ब्रह्मचारिणी ही हैं जो सभी जीवों में व्याप्त विष्णु माया हैं। सभी जीवों में चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, श्रद्धा, कांति, धृति, स्मृति और भ्रांति रूप में रहती हैं। साधक के त्राण के लिए यह ब्रह्मचारिणी तप के लिए निकली है। उनका तपहपूत सौंदर्य विश्व की प्रत्येक वस्तु को सुंदर बना देता है। अतएव जिस माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से स्वर्ग, मोक्ष और नरक सभी के प्रति दिव्य दृष्टि मिल जाती है, साथ ही भवसागर से मुक्ति भी मिलती है, वे माता ब्रह्मचारिणी हम सब की रक्षा करें। स्वर्गो अपवर्गो नरकोपि यत्र विभाव्यते दृक् कलया विविक्तम, सा चाद्वितीयापि शिवद्वितीया, सा ब्रह्मचारिणी अवताद् भवेभ्यः।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: विशेष आराधना कार्यक्रम की आप दूसरी कड़ी सुन रहे थे, जो कि नवरात्रि पर आधारित थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: दर्शन और प्रदर्शन मानव जीवन के दो पहलू हैं। पहला यदि जीवन का राग है तो दूसरा विराग। प्रदर्शन यदि मनुष्य को सांसारिक बनाता है तो दर्शन मुक्ति का मार्ग देता है। नितांत रूप से अबोध बालक समय के साथ प्रदर्शन को समझने लगता है और धीरे धीरे अपने चारों ओर प्रदर्शन की अभेद्य दीवार खड़ी कर लेता है। कहीं ज्ञान प्रदर्शित होता है तो कहीं धन। हम लोग जो हैं उससे कहीं ज्यादा दिखें, विशेष दिखें, यही भावना प्रदर्शन के मूल में है। इसी भावना को लेकर हम नौकर, गाड़ी, कपड़े, गहने आदि का अंबार लगाए रहते हैं। औपचारिकता ओढ़े हम जो नहीं हैं उसका ढिंढोरा पीटा करते हैं। हमारी वास्तविकता कपड़े पर लगे पेबंद की तरह कहीं झलक न जाए। हम बातें तो बड़े आदर्श की करते हैं, लेकिन अनैतिक रूप से रुपये लेने में भी नहीं हिचकते, क्योंकि पैसा ही प्रदर्शन की प्रथम आवश्यकता है। उसी का आश्रय लेकर ही हम दूसरों से विशिष्ट दिख सकते हैं। प्रदर्शन का मार्ग जहां खत्म होता है, दर्शन का मार्ग वहीं से शुरू, क्योंकि दर्शन तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का नाम है। उसके उदित होने पर लोभ या मोह, द्वेष या अहंकार रह ही नहीं सकते। सर्वे सुखी न संतु, सर्वे संतु निरामया। सब सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का कल्याण।

0: प्राण हो, यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना ज्ञानी महापुरुषों की रही है। मनुष्य को जब दर्शन दृष्टि मिल जाती है तब उसे स्वयं में और दूसरे में भेद नजर नहीं आता, क्योंकि जो मुझ में समाया है वही तो दूसरे में बैठा है। जब मुझ में और उसमें तत्वगत एकता है तो अज्ञान अहंकार ऊंच या नीच का अस्तित्व ही कहां रह जाता है। प्रदर्शन के स्टेज पर खड़े व्यक्ति की प्रत्येक मुद्रा हाव भाव मात्र औपचारिक है, जबकि दर्शन की प्रत्येक मुद्रा स्वाभाविक और चिरंतन है। प्रदर्शन तो हमें एक से अनेक बनाता है, हम अलग अलग ईश्वर में आस्था रखते हुए बढ़ते चले जाते हैं, विभिन्न अवसरों पर जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन होता है भगवान के नाम पर हमारे संप्रदाय का, जबकि दर्शन विभिन्न मतों के होते हुए भी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या आत्मा का प्रतिपादन करता है, वह अनेकता में एकता लाने वाला है। आज आवश्यकता इसी दर्शन की है। होड़ या बराबरी प्रदर्शन का ही दूसरा स्वरूप है। विश्व आज हथियारों की इसी दौड़ में विनाश के कगार पर पहुंच गया है। अहंकार उन्हें किसी से कम नहीं होने देता, इसीलिए समझौता वार्ताएं असफल हो जाती हैं। मानव भय और संत्रास में जी रहा है, ऐसे में दर्शन ही एकमात्र अवलंबन है। प्राचीन समय की घटना है, मगध और काशी नरेश अपने अपने वैभव संपन्न रथों पर आरूढ़ हो भ्रमण पर निकले। घूमते हुए वे एक पथ पर आमने सामने आ मिले। पथ संकीर्ण था और कोई भी सारथी अपना रथ पीछे हटाने को राजी नहीं था। तय हुआ कि जो राजा गुणों में श्रेष्ठ होगा वही पहले जाएगा। फिर क्या था, मगध के सारथी ने अहंकार पूर्वक राजा के गुणों का वर्णन शुरू किया। मेरा राजा क्रोध को क्रोध से, झूठ को झूठ से, अर्थात प्रदर्शन को प्रदर्शन से जीतता है। काशी के सारथी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरा राजा क्रोध को क्षमा से, झूठ को सत्य से, अर्थात प्रदर्शन को दर्शन से जीतता है। यह सुनकर मगध नरेश की दर्शन दृष्टि खुल गई। उसने तुरंत ही उन्हें प्रणाम किया और रथ को पीछे हटाने की आज्ञा दी। उसका अहम पिघल चुका था।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय था दर्शन और प्रदर्शन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कृषि जगत।

0: इस कार्यक्रम में कृषक जन सुनेंगे मिश्री लाल चौधरी से अमरीश कुमार की बातचीत, कृषि अवशिष्टों का सही उपयोग।
1: कृषि और किसानी में एक चीज देखा जाता है कि जो उन अवशेष होते हैं, खासकर खरपतवार हो गया और कटाई के बाद जो नीचे खरपतवार बचा और ओकर अवशेष बचा, ओका के तरीके से ठीक रखा जाए कि वो पर्यावरण का नुकसान न करे और लोगन के लिए फायदेमंद हो जाए। इकरे लिए आज बातचीत करे बारे हमारे साथ ML चौधरी साहब, ये अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त लखनऊ से वहाँ हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातचीत इनसी हुई, खास करके कृषि अवशिष्टन पर। तो अवा फिर बातचीत की जाए। ML चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक।
1: खेती किसानी में देखा जाता कि बड़ी सारी जो परेशानियाँ है उकर एक जड़ देखा जाए तो अवशेष होता है। एक किसान भाई लोगन देखा जलाए देते हैं, उसी बड़ा पर्यावरण का नुकसान होता है। इसी अवशिष्ट के का कहा

0: जा था, एका कैसे पहचान की जाए कि हाँ किसी अवशेष आ, एक बारे में जरा आप विस्तार से बताओ।
1: किसान भाइयों, फसल उत्पादन में जो पौधे हैं, तना है, उसकी पत्तियां हैं, ये सभी प्रकार के जो अवशेष हैं, ये अक्सर किसान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसकी मृदा संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है
0: जी।
1: हमें किसानों में जागरूकता लानी है कि पौधों के अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं, ताकि उनमें उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा सूक्ष्म तत्व जैसे लोहा, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, तांबा इत्यादि एवं दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया नष्ट न हो।
0: चौधरी साहब, यह जानकारी दें कि जैसे जो फसल अवशेष होता उहमा पोषक तत्व मौजूद होता है, लेकिन जो किसान भाई यहाँ हमरे इनका बहुत कम उकरे बारे में जानकारी हो पावत है, जेकरे कारण उनका नष्ट कर दे थीन। जरा एकरे बारे में बताओ कि अवशेष जोन हो थीन एकर कैसे इस्तेमाल की जाए कि जोन एमा पोषक तत्व हैं उसका फायदा किया जा सके।
1: हाँ किसान भाइयों, बहुत अच्छा सवाल है। फसल अवशेषों की खेती में जलाने को एक अनुचित सिलसिला प्रारंभ हो गया है, जिससे न केवल कार्बनिक पदार्थ के लाभों से वंचित हो रहे हैं, अपितु पर्यावरण और प्रदूषण की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पौधों के अवशेषों को जलाने से उनकी जड़, तना और पत्तियों में सिंचित पोषक तत्व नष्ट होते हैं। फसल जलाने से मृदा ताप में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे के कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में विपरीत प्रभाव पड़ता है। पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब आप खड़ी फसल दाना निकालने के बाद जो अवशेष है उसको जला देंगे
0: जी,
1: तो निश्चय ही आपको पशुओं के चारे की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अवशेषों को जलाते समय बगल के खेत में खड़ी फसल में आग भी लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, कार्बनिक खादों, कंपोस्ट व पशुशाला की खाद और हरी खाद आदि का प्रयोग न होने से फसल के अवशेषों को जला देने के कारण उर्वरकों की मांग, जैसे यूरिया है, डीएपी है, इसकी खपत बढ़ जा रही है और इसमें आपका बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। यह सर्वविदित है कि दलहनी फसलों की जड़ों में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया की उपस्थिति का बड़ा महत्व है। दलहनी फसल जैसे ऊट, मूंग, लोबिया आदि फसलों की फलियों तोड़ने के उपरांत ऊंचे पौधों को पलट दिया जाए तो एक हरी खाद का काम करता है। पौधों के समस्त अवशिष्ट भूमि में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि फसल के अवशेषों को जलाएं नहीं, चाहे वो तना हो, पत्ती हो या जड़ें हो, क्योंकि उसमें बहुत से जो पौधों को पाए जाने वाले पोषक तत्व आवश्यक हैं वो सब रहते हैं, इसलिए इनको कम से कम नष्ट न किया जाए।
0: बड़ी अच्छी बात बताए ना आपकी। देखें कि सरकार चाहत यह है कि किसान भाइयों का जो आय है ओका कौन तरह से दुगुना किया जाए
1: जी।
0: और जब ये किसान भाई फसल का अवशेष जला देथिन तो हम जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाथिन। ऐसी यूरिया डाई वगैरह जो मात्रा है ओका बड़ा ज्यादा डालक पड़ता है। ऐसी होत का है कि किसान भाइयों का जो खर्चा है खेती का वो बहुत बढ़ जाता है
1: जी। जी।
0: अगर किसान भाई एक जलावे ना बल्कि एक उपयोग हरी खाद वगैरह में करें तो कितना बढ़िया लाभ हो जाए। तो आप थोड़ा सा हरी खाद का होता और किसान भाई कैसे हरी खाद का प्रयोग करें, एक आप बनाएं कैसे, जरा एकरे बारे में विस्तार से बताएं तो किसान भाई बड़ा लाभान्वित हुई हैं।
1: किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हरी खाद में हम फसल सनई है, ढैंचा है, उर्द है, मूंग है, लोबिया है, इन फसलों को जो जल्दी से जल्दी सड़ जाती हैं खेत में, मिल जाती हैं मिट्टी में, इन्हीं का उपयोग करते हैं। हरी खाद का प्रयोग किसान भाई करें। इधर काफी दिनों से हरी खाद का प्रयोग लोगों ने बंद कर रखी। हरी खाद की फसलों को जब एक उचित प्रकार की तैयार हो जाए तो समूचा पौधे को पलटने वाले हल से उसको मिला देना चाहिए। उसको मिला देने से जो उनके जड़ों में हमारे नाइट्रोजनस बैक्टीरिया हैं वो बच जाते हैं और सॉइल की संरचना, मिट्टी की संरचना बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि हरी खाद को न छोड़ें। अगर जैसे जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं तो आप हरी खाद से उसकी काफी कम से कम 30% तक पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए हरी खाद का तो बहुत महत्व है और इसको अवश्य करें।
0: देखा किसान भाई कितनी बढ़िया बात बताएं कि आप हरी खाद का अगर प्रयोग करी हैं तो न सिर्फ आपके जो मिट्टी का गुणवत्ता है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी बल्कि जो फसल का उत्पादन है आपका वह बढ़ जाएगी। यानी कम खर्चा में अच्छा आप उत्पादन कर ली हैं और जो खाद का प्रयोग आप रासायनिक खाद खास कर रहें ओकर कमी आ जाएगी। तो जैसे कि आप बताएं कि हरी खाद का प्रयोग की जाए, खास करके जो अवशेष है यही अवशेष से कह प्रकार से किसान भाई हमरे ओकर कंपोस्ट खाद बनाए लें कि कंपोस्ट खाद का प्रयोग अपने किसानी में कर सकें और फसल को उत्पादन बढ़ा सकें, एकरे बारे में जरा विस्तार से बताओ कि कंपोस्ट खाद कैसे तैयार।

0: किन जाए?
1: किसान भाइयों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंपोस्ट पहले लोग ज़्यादा बनाते थे, लेकिन इधर कम बना रहे हैं, तो हमको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बिल्कुल प्रेरित होना चाहिए। आप कंपोस्ट खाद में होता क्या है कि पहले एक कंपोस्ट पिट तैयार किया जाता है, खाद का गड्ढा, और बड़े पेड़ों की जमीन पर गिरी हुई पत्तियाँ, कूड़ा, करकट इत्यादि को कंपोस्ट पिट में अनुपातिक रूप से उसमें डालते हैं। गोबर, मलमूत्र इत्यादि भी के अवशेष उसमें हम दर पर दर बिछा कर पिट में, गड्ढे में डालते रहते हैं और मिट्टी से ढकने देते हैं। इस प्रकार ऐसा करने से कुछ दिनों बाद वो कंपोस्ट, 2-3 महीने बाद वो कंपोस्ट खाद बन के तैयार हो जाती है, जिसका प्रयोग खेती में करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कंपोस्ट खाद भी बनाना, तैयार करने की विधि पर सदैव आधारित रहें
0: जी,
1: और इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, घरों में सब्जी बनाने हैं तो सब्जियों के छीलन उपरांत छिलके, जड़, तना, पत्ती इत्यादि अवशेष पदार्थ बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें गड्ढों में गड़ाकर खाद बनाई जा सकती है, जो फसलों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। अब इधर ये देखा जा रहा है कि जैसे धान की फसल है
0: जी,
1: अब जब से मशीनों से कटाई होने लगी है तो करीब 9-10 इंच जो है फसल के पौधे छोड़ करके ऊपर से कटाई होती
0: जी,
1: है
0: जी,
1: तो किसान के सामने एक समस्या होती कि इसको क्या करें, उसको जला देते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम आपको बताते हैं कि अगर आप इन अवशेषों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो उसमें नमी दे करके और करीब 20 किलो यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से अगर छिड़क दें तो वो जितने पौधे फूट खड़े होते हैं वो सड़ जाते हैं और एक प्रकार से खाद के रूप में भी तैयार हो जाता है, इसलिए उसको जलाएं नहीं।
0: बहुत बढ़िया जानकारी दें एमएल चौधरी साहब। आप किसान भाई निश्चित तौर पर एकर उपयोग करी हैं, ओकर लाभ उठाई हैं और सेशन का ना जलाई हैं ना ओकर खराब ना करी हैं, बल्कि कंपोस्ट खाद और हरी खाद बनाए के ओकर उपयोग करी हैं। आप एक कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि अवशिष्टों का सही उपयोग, इस विषय पर अभी कृषक जन मिश्री लाल चौधरी से अमरीश कुमार की बातचीत सुन रहे थे। आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर बी के सिंह की वार्ता, अल्जाइमर्स कारण लक्षण और उपचार।
1: डिमेंशिया एक गंभीर बीमारी है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इसे हमें समझने और पहचानने की आवश्यकता है। डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और यहाँ तक कि रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यह एक बीमारी नहीं है बल्कि लक्षणों का एक समूह है जो मस्तिष्क के खराब होने के कारण होते हैं। डिमेंशिया के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण अल्जाइमर बीमारी है, लेकिन अन्य कारणों से यह हो सकती है, जैसे स्ट्रोक, मस्तिष्क में चोट या संक्रमण भी हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता है, लेकिन यह केवल वृद्ध लोगों तक सीमित नहीं है। डिमेंशिया के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआती लक्षणों में याददाश्त में कमी, काम को करने में कठिनाई, भाषा में समस्या और समय और स्थान की पहचान में दिक्कत शामिल है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, व्यक्ति को दूसरों की देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। डिमेंशिया का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन इसका प्रबंधन किया जा सकता है। प्रारंभिक निदान से व्यक्ति की जीवन शैली में सुधार किया जा सकता है और दवाओं द्वारा लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि डिमेंशिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उपाय हैं जो इसके जोखिम को कम कर सकते हैं, जैसे स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, मानसिक गतिविधियों में शामिल होना और धूम्रपान या शराब के सेवन से बचना।

0: डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति को परिवार और समाज की सहायता की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस बीमारी को समझें और डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति और सम्मान के साथ पेश आएं। डिमेंशिया एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन जानकारी और जागरूकता से हम इसका सामना कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है या आप किसी को जानते हैं, तो उन्हें सही समय पर चिकित्सकीय सहायता दिलाएं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बी के सिंह को। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में सुबह 10:05 पर आपको सुनवाएंगे न्यूट्रिशियन डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का पहला भाग। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा अंजनी कुमार सिंह की वार्ता अमृतलाल नागर का साहित्यिक संसार। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7:00। इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का गायन। पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 और रात्रि 10:30 पर। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 8:45 और इसके बाद 9:00 आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर मुबाहिसा का मौजू होगा राही मासूम रजा का बेबाक अंदाज। शुर का प्रोफेसर अली अहमद फातमी, डॉक्टर लईक रिजवी और डॉक्टर नीलुफर हफीज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आपको सुनवाएंगे मनीषा निर्खी के गाए भजन और गीत। लोकगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर। कलाकार राम कृपाल और साथी विनीता तिवारी और राम सिंह पटेल और साथी। एक ही कलाकार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 11:00। 11:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी डॉक्टर बी पॉल थैलियत से बातचीत, स्तन कैंसर कारण लक्षण और उपचार। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है 2:30 से। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया शाम 5:00। युववाणी में शाम 5:15 पर युवजन सुनेंगे न्यूट्रिशनिस्ट और व्यावसायिक जिम ट्रेनर महावीर प्रताप सिंह से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे रामकृपाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत, डॉक्टर सुनील चंद्रा की वार्ता, रबी की फसल हेतु आवश्यक कार्य और केवी पांडे से लोक भाषा कविता पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आपको सुनवाएंगे अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन और गीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:00 और 10:00। गजलों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं रात 9:30 से। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, संस्कृत समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्वेषयति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा, सामर्थ्यं, सम्भावनाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिंदू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयंती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमंत्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्षति।
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
0: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैधनिगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रोसेवायाः समयानुसारं संचालनम्, अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहने बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इन्दौरनगरस्य होल्कर क्रीडाङ्गणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी

मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। गायन स्वर अनुराधा पौडवाल का था, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति नरेंद्र चंचल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आशा फिल्म से दी गई ये भक्ति रचना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं ये देवी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म स्वर्ग से सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रादेशिक समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दशहरा पर्व की तैयारियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के दिए निर्देश। बलरामपुर में शिक्षा की उड़ान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा नारी सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 94वें संस्करण में लिया हिस्सा। फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की जा रही है मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्गा पूजा दशहरा त्योहार की तैयारियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की।
1: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार में किसी भी दशा में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित न हो, इसके लिए दुर्गा पूजा समितियों से बात की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रतिमा विसर्जन मार्गों का निरीक्षण कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने नदियों के जलस्तर और जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में बाढ़ और अत्यधिक बारिश से फसलों का नुकसान उठाने वाले किसान के लिए कृषि निवेश अनुदान के तौर पर 493 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करेंगे। यह धनराशि प्रदेश के 9,18,091 किसानों को DBT के माध्यम से जारी की जाएगी। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बलरामपुर जिले में शिक्षा की उड़ान पहल के अंतर्गत स्टडी टेबल और आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि नारी सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: वह समाज जो नारी शक्ति का वंदन और अभिनंदन नहीं कर सकता, वह विकास की बुलंदियों को भी नहीं छू सकता। और इसीलिए बेटी हो, कोई बहन हो, कोई महिला हो, उसकी सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान उसी क्रम में संचालित हो रहा है। उसका थीम ही है कि महिला की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन, ये तीनों एक साथ चलेंगे।

0: तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी तय किया है कि जिस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, उसकी राशि घर की मालकिन के नाम पर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ परिसर में विराट किसान मेले का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न लाभार्थियों को कृषि यंत्र वितरित किए। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अंतिम समाचार मिलने तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया। कल सुबह लगभग 4 बजे आई बाढ़ में वहां घर और पुल बह गए तथा कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश के कुशीनगर जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि ने बताया कि नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए कुशीनगर में नदी के जलस्तर, वाल्मीकि नगर बैराज के डिस्चार्ज और तटबंधों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में कल वाराणसी के नमो घाट पर 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों ने भाग लिया। नमो घाट से शुरू हुई साइकिल यात्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाकर फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
2: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
3: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
2: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भोर से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर और बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ पर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। अयोध्या के बड़ी देवकाली

0: छोटी देवकाली और जालपा देवी मंदिरों पर कल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहां कल दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
1: दुर्गा पूजा यहाँ 40 साल से अयोध्या में है। यह अयोध्या की पहचान बन चुकी है। अयोध्या से दूर दूर से लोग आते हैं अयोध्या की रामलीला और दुर्गा पूजा देखने के लिए। तो हम लोग निश्चित रूप से ये प्रयास करते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और जो अयोध्या आ रहे हैं वो यहाँ से अच्छा संदेश लेके जाए।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर तक कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में 14 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस बीच शामली जिले में कल कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरने से वहाँ के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अमरोहा जिले में भी कल तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। बिहार के राजगीर में हो रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के एलिट ग्रुप के मुकाबले में बिहार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की टीम ने कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना लिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से रिंकू सिंह और माधव ने नाबाद शतकीय पारी खेली। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दशहरा पर्व की तैयारियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के दिए निर्देश। बलरामपुर में शिक्षा की उड़ान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा नारी सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 94वें संस्करण में लिया हिस्सा। फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की जा रही है मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भटियार में गाया ख्याल। गायक कलाकार श्री विद्याधर प्रसाद मिश्रा।

राग भटियार में गाया ख्याल अभी आपने सुना। गायक कलाकार थे श्री विद्याधर प्रसाद मिश्र। इनके साथ तबले पर संगत की श्री पूरन कुमार मिश्र ने।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। समाचार प्रभात की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशन चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने

0: जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
1: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
2: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत तो बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
2: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और इसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2471234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123314 01 01 23 7 1 7 1 7। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग

0: जाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हूती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights potential of India's youth in solving global challenges while remaining anchored in the ancient cultural roots. Delhi government to distribute 1300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. One person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. US President Donald Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine with immediate effect. 139 people killed after overcrowded boat capsized off Djibouti coast. And in cricket, India beat West Indies by 14 runs in the third T20 international to take a 2-1 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of the Jai Gopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possesses the talent and the potential to provide them.
3: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा. Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
2: The Prime Minister emphasized that the current era belongs to the younger generation. Mr. Modi noted that the fresh ideas and hard work will mold the future of both India and the wider world, alongside global problem solving. Prime Minister delivered a message centered on national unity and the timeless wisdom of Tamil heritage. He specifically praised the ancient Tamil classic Thirukural as an essential guide for life and lifelong learning, reminding students that acquiring knowledge must always be paired with putting it into practice. Mr. Modi urged students to dream big, think differently and act fearlessly. Highlighting the infinite opportunities available in the country today, Prime Minister stated that youth are central to realizing the vision of Viksit Bharat by 2047.
3: Aaj Bharat mein jo infinite opportunity hai, main chahta hoon ki har yuva अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
2: The Prime Minister reiterated that by balancing modern innovation with a deep connection to the cultural heritage, young leaders can build a progressive, self-reliant nation while earning recognition on the global stage. Delhi government is set to launch the Durga Driving Upliftment and Rozgar for Women and Transgender e-auto scheme to create safe, dignified and sustainable self-employment opportunities for women and transgender persons. The initiative will also promote clean and inclusive mobility across the national capital. The government is informed that the scheme will facilitate the allocation of 1,300 pink electric autos in its first phase, of which 1,170 electric autos will be reserved for women beneficiaries and 130 for

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौजवानों के कदीम सकाफती जड़ों से वाबस्ता रहने के साथ साथ आलमी चैलेंजों को हल करने उनकी सलाहियत को उजागर किया है। दिल्ली सरकार दुर्गा स्कीम के तहत ख्वातीन और मुखन्नस अफराद को 1300 ई ऑटो तकसीम करेगी। रियाज हवाई अड्डे पर दो दिन के अंदर अंदर हौसियों की तरफ से किए गए दूसरे हमले में एक शख्स हलाक और 11 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान तवानाई के ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों को फौरी तौर पर रोकने का ऐलान किया है। जिबोटी साहिल से कुछ दूर एक कश्ती के उलट जाने के हादसे में 139 अफराद हलाक, जिसमें गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार थे। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 बैन अक्वामी मैच में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा कर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में जय गोपाल गार्डिया हिंदू विद्यालय की गोल्डन जुबली तकरीबात के दौरान भारतीय नौजवानों की आलमी सलाहियत का जिक्र किया। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि आलमी बिरादरी उभरते हुए चैलेंजेस के इख्तराई हल की तलाश के लिए सरगर्म है। उन्होंने मुकम्मल एतमाद जाहिर किया कि भारत के नौजवानों में सलाहियत और हुनर दोनों मौजूद हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशन चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
0: उन्होंने खास तौर पर कदीम तमिल क्लासिक थिरुकुरुलल की भी जिंदगी और जिंदगी भर की आमोजिश के लिए एक लाजमी रहनुमा के तौर पर सताइश की, जिससे तलबा को ये याद दहानी होती है कि इल्म के हुसूल के साथ साथ इस पर अमल भी करना चाहिए। जनाब मोदी ने तलबा से जोर देकर कहा कि वो बड़े ख्वाब देखें, अलग अंदाज में सोचें और निडर होकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने आज मुल्क में बेशुमार मौकों की दस्तियाबी का जिक्र करते हुए कहा कि नौजवान 2047 तक विकसित भारत के विजन को हकीकत की शक्ल देने में मरकजी किरदार के हामिल हैं।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: दिल्ली सरकार दुर्गा स्कीम का आगाज करेगी। इस स्कीम के तहत ख्वातीन और मुखन्नसों के लिए ड्राइविंग, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने और रोजगार के लिए ई ऑटोज जारी किए जाएंगे। इसका मकसद ख्वातीन और मुखन्नस अफराद के लिए महफूज, बावकार और मुस्तकिल खुद रोजगारी के मौके पैदा करना है। इस पहल के तहत कौमी राजधानी में माहौल के लिए साजगार और सबकी शमूलियत वाली नकलो हमल को भी फरोग दिया जाएगा। हुकूमत ने यह भी बताया कि इस स्कीम से पहले मरहले में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटोज को मुख्तस करने में सहूलत फराहम होगी, जिनमें से 1170 इलेक्ट्रिक ऑटोज ख्वातीन के लिए और 130 ऑटोज मुखन्नस अफराद के लिए।

0: सनआ में हवाई अड्डे पर एक फिजाई हमले की वजह से सऊदी अरब की तरफ से सरकारी फौजों को हिमायत देने के सबब कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मुल्क इस सिलसिले में कोई फैसला और जल्द कार्रवाई करेगा कि आया हौसियों पर हमला किया जाए। सऊदी अरब की राजधानी रियाज के शाह खालिद बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कल हुए हमले में एक भारतीय शहरी जख्मी हो गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रियाज में भारतीय सफारतखाने ने जख्मी होने वाले शख्स के अहले खाना के साथ यगानगत का इजहार किया और कहा कि वो उन्हें तमाम जरूरी मदद फराहम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर वाकई श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कुल 47,346 अकीदतमंदों ने श्री माता वैष्णो देवी में पूजा अर्चना की। नौ रोजा त्योहार के आगाज में बड़ी तादाद में अकीदतमंद माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए कटरा के बुनियादी पड़ाव पहुंच रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमलों को रोकने से इत्तेफाक किया है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई। कल रात जनाब ट्रंप की एक मुख्तसर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि ये जंगबंदी फौरी तौर पर कर दी गई है, अलबत्ता रूस ने इस सिलसिले में कोई फौरी रायजनी नहीं की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका मुल्क ट्रंप के इस ऐलान का हरेक के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचों पर हमले से गुरेज करने को तैयार है। अलबत्ता ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद यूक्रेन की तवानाई से मुतालिक तंसीबात पर हमले जारी रखे हुए है। तर्के वतन करने वालों से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम IOM ने बताया कि 15 बच्चों समेत 139 अफराद की मौत हो गई है। एक कश्ती में इसकी गुंजाइश से ज्यादा 305 अफराद सवार थे कि ये कश्ती मशरकी अफ्रीका में जिबोटी के साहिल से कुछ दूर घेरे के नजदीक उलट गई। IOM ने बताया कि ये कश्ती जुमेरात की रात किनारे से रवाना ही हुई थी कि कुछ दूर जाकर उलट गई। सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद 139 बताई गई है। अगरचे जिबोटी में IOM के मिशन के सरबराह ने वजाहत की है कि यह तादाद उन हलाक शुदगान की है जिनकी तदफीन मकामी हुकाम ने की है। आज अलसुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हुई। भारतीय मौसमियात महकमे IMD के मुताबिक कल तक दिल्ली में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे ने मजीद कहा कि आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। क्रिकेट में भारत ने कल रात खेले गए तीसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त दी। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। 224 रन का ताकुब करते हुए वेस्टइंडीज की टीम मुकर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 200 रन ही बना सकी। शिमरन हेटमायर ने सबसे ज्यादा 43 रन का स्कोर किया, जबकि कामिलपुरन ने 42 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट हासिल किए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तकरीबन 100 साल बाद मध्य प्रदेश में वाके कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को उनके कुदरती मस्कन में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इतवार के रोज वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने 8 जंगली भैंसों को 17 हेक्टेयर पर मुहित एक बड़े बाड़े में छोड़ा। इन भैंसों को आसाम के काज़ीरंगा नेशनल पार्क से लाया गया था। हुकूमत अगले 3 साल के दौरान 50 जंगली भैंसों को कान्हा खित्ते में वापस लाने का इरादा रखती है। कल एक समुद्री तूफान सिमोन मेक्सिको के बहरुल काहिल के साहिल से टकराया। सियारा मेड्रे पहाड़ों और समुद्र के दरमियान बहुत तेज हवाएं चली और बारिश हुई। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे GST भारत की टैक्स इस्लाहात में अक्सर तब्दीली वाला रोल के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा CBIC के GST पॉलिसी विंग के कमिश्नर गौरव सिंह के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामईन इस मौजू पर अपने सवाल इन टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 0112342100। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत में नौजवानों के लिए बेपनाह मौके दस्तियाब हैं, वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर सकते हैं। वजीर आजम ने तमिलनाडु में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के साथ साथ

0: चेन्नई मेट्रो कॉरिडोर के दूसरे मरहले का भी इफ्तिताह किया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ओहचार के दूसरे दोहरे मयार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वह भारत के दाखिली मामलों में मुदाखलत करने से गुरेज करे। इस खबर को आज के अखबार ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौजवानों के कदीम सकाफती जड़ों से वाबस्ता रहने के साथ साथ आलमी चैलेंजों को हल करने में उनकी सलाहियत को उजागर किया है। दिल्ली सरकार दुर्गा स्कीम के तहत खवातीन और मुखन्नस अफराद को 1300 ई ऑटो तकसीम करेगी। रियाज हवाई अड्डे पर दो दिन के अंदर अंदर हौसियों की तरफ से किए गए दूसरे हमले में एक शख्स हलाक और 11 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान तवानाई के ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों को फौरी तौर पर रोकने का ऐलान किया है। जिबूती साहिल से कुछ दूर एक कश्ती के उलट जाने के हादसे में 139 अफराद हलाक हो गए, जिसमें गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार थे। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 बैन अक्वामी मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा कर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल कर ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने मेजबान उज्जवल सिन्हा के साथ। जय माता दी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शक्ति की आराधना, भक्ति की साधना और आस्था के उत्सव नवरात्रि में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नवरात्रि के 9 दिन केवल माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के दिन नहीं है, बल्कि ये 9 दिन हमें जीवन जीने की कला, कठिनाइयों से लड़ने का साहस और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा भी देते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम आराधना करते हैं माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की, जो तपस्या, त्याग, संयम, धैर्य और अटूट संकल्प की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, तप और आध्यात्मिक साधना, जबकि चारिणी का अर्थ है उस मार्ग पर चलने वाली। अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी वो देवी हैं जो तप, साधना और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनकी जप माला निरंतर साधना का संदेश देती है, तो कमंडल त्याग, सादगी और आत्मसंयम का प्रतीक है। माँ का शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, विचारों की पवित्रता और संकल्प की दृढ़ता में भी निवास करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे पूर्व जन्म में सती थीं और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। कहा जाता

है कि नारद मुनि के मार्गदर्शन से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए देवी ने अत्यंत कठिन तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने फल और कंद मूल का सेवन किया, फिर केवल पत्तों पर जीवन व्यतीत किया और अंततः भोजन का भी त्याग कर दिया। उनकी इसी कठोर साधना के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। उनकी तपस्या हमें ये संदेश देती है कि जीवन में कोई भी महान लक्ष्य हो, उसे प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक है। जब संकल्प अटूट हो तो कठिन रास्ते भी साधना के पथ बन जाते हैं।

माँ की आराधना हमें सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण, विचारों में पवित्रता और कर्मों में निरंतरता जीवन को सार्थक बनाती है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ हर व्यक्ति शीघ्र सफलता चाहता है, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि स्थायी सफलता का मार्ग अक्सर धैर्य और निरंतर परिश्रम से होकर गुजरता है।

माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा केवल मंदिरों में उनकी पूजा करने तक सीमित नहीं है, उनकी साधना का वास्तविक संदेश हमारे दैनिक जीवन में भी दिखाई देना चाहिए।

आइए इस नवरात्रि हम भी संकल्प लें कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और कठिनाइयों से घबराकर अपने

लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि तपस्या हमें मजबूत बनाती है, संयम हमें श्रेष्ठ बनाता है और अटूट विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर स्मरण करते हैं उस किसान को जो धूप में तपता है, बारिश में भीगता है, सर्द हवाओं से लड़ता है, लेकिन फिर भी धरती की छाती पर उम्मीद के बीज बोता रहता है।

0: अब आज का नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम समाप्त करने की अपने मेजबान उज्जवल सिन्हा को इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभय कांत तिवारी। अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8004926250 पर, यानी 8004926250। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये पहला गीत आशा भोसले, महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम अब

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: जनपद एटा में जल जीवन मिशन के तहत जलेसर नगर क्षेत्र की पेयजल समस्या दूर करने के लिए 142 करोड़ रुपए की परियोजना पर जल्द काम शुरू होने जा रहा है। परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परियोजना के तहत जाबड़ा नहर से जलेसर तक करीब 32 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 3 हेक्टेयर भूमि पर 11 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में जलेसर नगर इलाके में करीब 67 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के साथ 3 ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। परियोजना पूरी होने पर लगभग 48,000 की आबादी को नियमित पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक जाबड़ा नहर से जलेसर तक पानी पहुंचाने का कार्य अक्टूबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है। फसल अवशेष प्रबंधन और पराली के समुचित उपयोग को लेकर एटा में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी एम अरुण मोली ने कलेक्ट्रेट परिसर से 3 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले की 3 तहसीलों की ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रति जागरूक करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि खेतों में पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव और उपयोगी जीवांश नष्ट होते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और आने वाली फसल के उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जिलाधिकारी ने मलावन इलाके का निरीक्षण कर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने निराश्रित गौवंश आश्रय केंद्र, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय, परिषदीय विद्यालय और पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। मलावन की अस्थायी गौवंश आश्रयशाला में करीब 350 निराश्रित गौवंश संरक्षित मिले। जिलाधिकारी ने हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता, जल निकासी और आगामी सर्दी के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चारागाह की भूमि पर नेपियर घास तैयार कर हरे चारे की व्यवस्था करने को भी कहा। परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से बात कर उनकी शैक्षिक स्थिति जानी। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता, बच्चों की 100% उपस्थिति, विद्यालयों की साफ सफाई और स्मार्ट क्लास के संचालन पर विशेष जोर दिया। ग्राम पंचायत सचिवालय के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों में कुछ कमियां मिली। जिलाधिकारी ने सभी पत्रावलियों और रजिस्टरों को अद्यतन रखने तथा ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे विभिन्न जन कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में एटा के पीतल उत्पाद, चिकोरी और अन्य स्थानीय उत्पादों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित ट्रेड शो में जलेसर के पीतल उत्पादों के साथ घुंघरू, घंटी और घंटे जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए। एक जनपद एक व्यंजन के तहत एटा की चिकोरी को भी ट्रेड शो में प्रदर्शित किया गया। उद्यमियों और खरीदारों ने चिकोरी उत्पाद में रुचि दिखाई। एटा की महिला उद्यमी संगीता मौर्य ने ट्रेड शो को वैश्विक बाजार से जुड़ने का उपयोगी मंच बताया। जलेसर के पीतल हस्तशिल्प को GI टैग मिलने के बाद ऐसे आयोजनों में इनके प्रदर्शन से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को नए बाजार मिलने की उम्मीद है। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देशन में जिला गंगा समिति द्वारा आर्ष गुरुकुल में

0: स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को नदियों के महत्व, संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत एटा के युवा नरेंद्र राजपूत ने 25 लाख रुपए के ऋण की सहायता से मैक्रोनी निर्माण इकाई स्थापित की है। अवंतीबाई नगर शिकोहाबाद रोड पर स्थापित इस इकाई में आधुनिक मशीनरी से मैक्रोनी का उत्पादन किया जा रहा है। इकाई से नरेंद्र को स्वरोजगार मिला है, वहीं दो लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त हुआ है। जिला उद्योग विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए ऋण और आवश्यक सहयोग उपलब्ध करा रही है। डीडी एग्रीकल्चर सुमित पटेल ने बताया कि सरकार की मदद से स्वयं उद्यम स्थापित कर युवा रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं।
1: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
2: कौशाम्बी जिले में 72 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन से प्रदेश के छात्र छात्राओं को 148 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा में देखा हुआ चुना गया। इस अवसर पर प्रथम चरण में कक्षा 9 से 12 तक के 5656 छात्र छात्राओं को धनराशि वितरित की गई। पिछड़ा वर्ग के 3265, अल्पसंख्यक वर्ग के 615, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के 1776 विद्यार्थी शामिल हुए। योजना का उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में सहयोग प्रदान किया गया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल से छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। कौशाम्बी जिले में इंटर कॉलेज की दयनीय स्थिति को लेकर छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य को हटाकर छात्रों की मांगों को निस्तारण करने का जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इंटर कॉलेज पहुंचकर साफ सफाई और पठन पाठन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर शिक्षकों को फटकार लगाते हुए विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तत्कालीन प्रधानाचार्य को निर्देशित किया। कौशाम्बी जिले की तहसीलों में आयोजित समाधान दिवस पर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने पर मंडलायुक्त ने उपजिलाधिकारी चायल और नायब नाजिर को प्रतिकूल प्रविष्टि और 9 अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। मंडलायुक्त प्रयागराज डॉक्टर लोकेशियम द्वारा 3 अक्टूबर चायल तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण नहीं मिला। शिकायतों के निस्तारण में चायल उपजिलाधिकारी और 9 अनुपस्थित कर्मचारियों की लापरवाही पाई गई। तहसील के नायब नाजिर द्वारा फाइलों के रखरखाव और निस्तारण में शिकायतों के मामले में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई। 9 अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया। उन्होंने तहसील दिवस में दर्ज 83 शिकायतों में 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। कौशाम्बी जिले में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिकों का मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले महिला पुरुष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। मतदाता की मृत्यु अथवा अन्य कारणों से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और सूची में नाम विवरण संशोधन अथवा निवास परिवर्तन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा बीएलओ को प्राप्त कराया जा सकता है। मतदाता ऑनलाइन ईसीआई नेट और एनबीएसपी पोर्टल के माध्यम से भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। कौशाम्बी जिले में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत जनसेवा से राष्ट्र सेवा के 26 वर्ष पूर्ण होने पर मंझनपुर विधानसभा के सरसवा विकास खंड में सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्षा कल्पना सोनकर द्वारा जनसेवा से राष्ट्र सेवा के 26 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जनसेवा से राष्ट्र सेवा के 26 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के एक माह से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। जन योजनाओं एवं सेवा कार्यों के प्रति मात्र शक्ति एवं बहनों को जागरूक किया गया। कौशाम्बी जिले में गांधी जयंती पर वॉक रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद सिंह और कोमल मौर्य को प्रथम विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालक एवं बालिका वर्ग में 3 किलोमीटर की वॉक रेस और बालिका वर्ग से 30 धावकों को रेस में शामिल किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अरविंद सिंह एवं कोमल मौर्य को विजेता घोषित किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी अजय प्रताप साहू ने बताया कि बच्चों में महात्मा गांधी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौशाम्बी जिले में गांधी जयंती के अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालक बालिकाओं को बाल संरक्षण एवं यौन उत्पीड़न की कानूनी ढांचों के प्रति प्राविधानों के प्रति जागरूक किया गया।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बालक बालिकाओं को बाल संरक्षण एवं यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी ढांचों के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी गरीब असहाय बालक बालिकाओं का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए गाँव की महिलाओं और बालिकाओं को पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। कौशाम्बी जिले में जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के परमो धर्म अहिंसा के पथ पर चलने के लिए शपथ दिलाई गई। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा परमो धर्म के पथ पर चलने की शपथ दिलाई गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

अभी आप सुन रहे थे संवित सुरों में देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अगले कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: ऐसे अदीबों को याद करना जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लिखने पढ़ने में लगा दी, आज़ादी के साथ, बेबाकी के साथ, बग़ैर नामो नमूद और शोहरत और दौलत की परवाह के बग़ैर। उनमें एक नाम मासूम रज़ा राही का भी है। तो लईक साहब, हम आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अजीब बात है कि राही साहब बतौर नावल नगार जितना मशहूर हुए, वो इतने ज़्यादा मशहूर हुए और उनके नावल और बिलखसूस आधा गांव को जो शोहरत मिली, उसने उनको ज़बरदस्त तरीके से एज़ ए फिक्शन राइटर इस्टेब्लिश किया। तो आधा गांव, उसके अलावा एक दर्जन और भी उनके नावल हैं, जैसे हिम्मत जौनपुरी, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, नीम का पेड़, कटरा भी आरजू, और भी बहुत सारी चीज़ें फिक्शन की उनकी हैं, कुछ उनके अफसाने भी हैं। तो मुख्तसरन आप उनके कुछ नावलों पर रोशनी डालें कि क्या खसूसियत आपको, क्या इनफरादियत इन नावलों में आपको नज़र आती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा आप फरमा रहे थे कि राही हमारे उन अदीबों में शामिल हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू में यकसां तौर पर कबूलियत भी हासिल है और सब उन्हें अपना अदीब शायर कहते हैं। ये सच है कि राही ने जो इजहार ख्याल के तीन मीडियम हैं, प्रिंट, टेलीविज़न और फिल्म, तीनों में काम किया और तीनों में उन्हें बहुत हद तक कामयाबी और मकबूलियत हासिल हुई, लेकिन जो उनकी पहचान का, उनकी शनाख्त का बुनियादी और सबसे मरकज़ी हवाला है, मैं समझता हूँ कि वो नावल नगारी ही है। नावल नगारी के साथ एक बात यहाँ मैं और जोड़ दूँ कि राही की नावल नगारी इसी शहर में जहाँ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इलाहाबाद से शुरू हुई। 1950 गालिबन उनका पहला नावल यहाँ से आया, मोहब्बत के सिवा। आधा गांव लिखा तो उर्दू में गया था, राही की बेशतर तहरीरें उर्दू में हैं, लेकिन वो पहली बार जो शाया हुआ हिंदी में शाया हुआ। तो आधा गांव, बल्कि उनके ज़्यादातर नावल और उनकी जो शायरी है वो हिंदुस्तानियत की शायरी है, जो कौमी एकजहती की, जो हमारी मुश्तरका तहजीब है, जो हमारा भाईचारा है, उसकी वकालत वो करते रहे। और उन्होंने जब कलम उठाया था जिस दौर में, वो जंग आज़ादी का ज़माना था, बिल्कुल फैसला कुन दौर में वो लड़ाई पहुंच चुकी थी उस दौर से, और फिर उसके बाद जब आज़ादी तय हो गया कि आज़ादी मिलने वाली है, तो अचानक बंटवारे की जो परछाई पड़ी वो तमाम हिंदुस्तानियों के जहन पर भी पड़ी, और बिलखसूस राही जैसा जो हसास कलमकार था उसने उसको बहुत गहरे।
0: तो आधा गांव जो नावल उनका गैर मामूली तौर पर मकबूल हुआ, तो उसकी मकबूलियत के क्या सबब थे, ये थोड़ा मुख्तसर बताएं।
1: मैं अर्ज कर रहा था कि आधा गांव में भी उन्होंने, आधा गांव नाम ही जो उसका उन्वान है वो भी अपने आप में कलीदी लफ्ज है, वो गंगोली की कहानी नहीं है, सिर्फ गंगोली की कहानी नहीं है, बल्कि वो एक बंटवारा का जो माहौल बन रहा था या बन चुका था, उस माहौल को उन्होंने एक अलामती तौर पर एक आईना बनाया गंगोली को, और कैसे बंटवारे की वजह से साइकी बदल रही है और बहुत सी सरहदें समाज में पैदा हो रही हैं, छोटी छोटी फिक्री लेवल पर, नज़रियाती लेवल पर। तो वो गंगोली जो था उनका, जिसको वो बुनियाद बनाकर लिख रहे थे, वो दरअसल हिंदुस्तान था, और वो हिंदुस्तान जिसमें एक बड़ा हिस्सा तो रह गया लेकिन एक हिस्सा कट गया जिसका, और वो तकसीम के बाद उन्होंने आधा आधा का जो लफ्ज
0: लगाया
1: आधा, वो सिर्फ इसीलिए लगाया था कि एक ऐसे गांव की कहानी है जो अब आधा हो गया है। कुछ सरहदें हैं जो दिखती हैं, कुछ सरहदें ऐसी हैं जो नहीं दिखती।
0: देखिए लईक साहब, जो आपने गंगोली का जिक्र किया, ये सही है कि कोई भी राइटर, फिक्शन राइटर हो या शायर हो, वो कोई मुकामी जगह तो लेगा और मुकामियत से ही आगाज़ करेगा और फिर वो आलमियत या आफाकियत तक पहुँचेगा। अपने गांव से शुरू करना, अपने कस्बे और अपने शहर से शुरू करना, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। फिराक साहब कहा करते थे कि जो शायर जहां का है, अगर वहीं का नहीं है तो फिर कहीं कहीं का नहीं है। लेकिन क्या उसमें एक ज़मींदाराना कल्चर का मजाक भी, जो ऐश परस्ताना माहौल, मौलवियों की हरकत, मजहब के ख़िलाफ़, ये सब भी तो अनासिर उसमें मिलते हैं।
1: आधा गांव इन मनों में भी बहुत अहम है, बल्कि और बहुत से लोगों ने इस तरह की फ़िरका

0: परस्ती या जमींदाराना जो निज़ाम है जो के मजालिम हैं उन पर लिखा गया है उर्दू में भी और हिंदी में भी। लेकिन राही का कारनामा ये है कि राही उसी तबके से आते हैं, उसी जमींदारों के घराने से, वो शिया और सादात जिन घरानों में आज़ादारी का जिनमें बाज़ कोताहियों की तरफ उन्होंने इशारा किया है, उसी तबके के होते हुए जिस बेबाकी से राही ने आधा गांव में जमींदारों का मजाक उड़ाया है या ऊंच नीच का मजाक उड़ाया है वहाँ पर, उनके मजालिम का जो इस तरह पर उसकी छोट की है, या आज़ादारी को भी उन्होंने एक इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया है,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो वो दूसरे जो फिक्शन निगार हैं उनसे इन मानों में बुलंद करता है कि एक तरक्की पसंद अदीब जब चीज़ों को उठाता है तो वो ये देखे बिना ये हमारे तबके की बात है,
1: वो ये नहीं देखता। वो तो देखिए जब अदीब होता है तो फिर वो अदीब होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता, न शिया सुन्नी होता है। यही जो बात आप राही के बारे में कह रहे हैं, आप देखें बेशतर तरक्की पसंद शोरा, कैफी साहब, अली सरदार जाफरी, वामिक जौनपुरी, इन सब ने ज़मींदाराना माहौल के जो मजालिम हैं, जो ख़राबियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उन्हीं से शुरू की। मार्क्सिज्म वगैरह तो उन्होंने बहुत बाद में पढ़ा जाके, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टेज पर पहुँचे, प्रोटेस्ट तो वहीं से शुरू किया अपने माहौल, उसमें राही भी आए और उन्होंने फिर यही प्रोटेस्ट फैलता है और टोपी शुक्ला और हिम्मत जौनपुरी में सोशल और कम्युनल दायरों को समेटता है और नावल का दायरा फैलता है। और इस तरह से यके बाद दिगरे वो नावल लिखते चले गए। आपको याद होगा कि नीम का पेड़
0: जी
1: पूरा इसी तर्ज पर है और उसी पे सीरियल भी चला।
0: बहुत से ऐसे नावल हैं जो जिसमें उन्होंने जमींदाराना जो निज़ाम है उसके,
1: देखिए लाइक साहब जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो मुशाहिदा होगा, देखिए फिक्शन में मुशाहिदे का कि बड़ा रोल होता है, जो मुशाहिदा होगा तो वो वही तो पेश करेगा इस फिक्शन के लिए, क्या शायरी के लिए भी, लेकिन फिक्शन बतौर ख़ास ऑब्जर्वेशन पे ही टिका रहता है। आपका तजुर्बा, आपका मुशाहिदा, वो बोलता है, आप मंजर बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, मुकालमे बोलते हैं।
0: आधा गांव में डॉक्टर साहब एक चीज़ जो और अच्छी लगती है और जो उसकी मकबूलियत की मेरे हिसाब से वजह बनी, वो सिर्फ जो कर्ब है उसका बयानिया नहीं है बल्कि उसमें उन्होंने उस अंधेरों के बीच में नफरत, फिरका परस्ती या और जो बंटवारे हो रहे थे समाज के, उन अंधेरों के बीच में बहुत सी उम्मीद की किरणें भी दिखाई।
1: लेकिन वो तरक्की पसंद शायर को तो सेवा होता है, वो उनका नज़रिया होता है। क्यों ना हम थोड़ी सी गुफ्तगू डॉक्टर नीलोफर हफीज से भी करें और इनसे ये पूछें कि आप किस पहलू पर इजहार ख्याल, क्योंकि कई पहलू हैं उनकी शख्सियत के, शायर भी हैं, मुकालमा नवीज भी हैं, नावल नवीज तो ही हैं जैसा लईक साहब ने फरमाया, तो आपको कौन सा पहलू उनका पसंद है और किस पर गुफ्तगू करना चाहेंगे आप?
2: कुछ शायर और अदीब इतना तनव्वो होता है उनकी शख्सियत में कि किसी एक पहलू पर इजहार ख्याल करना उनके लिए मुश्किल होता है। हमारे राही मासूम रज़ा साहब उन्हीं अदीबों में से और शायरों में से एक हैं जिनका हर रंग अपने आप में इनफरादियत रखता है। राही साहब जितने बड़े नसर नवीस हैं, मकालमा निगार हैं, उतने ही बड़े और अजीम शायर भी हैं। दोनों नसर नवीसी और शायरी दोनों पर उनको यकसा कुदरत हासिल थी। और अगर शायरी के, वैसे तो दुनिया ने उनको उनके मकालमों के ज़रिए पहचाना, उनको जो शोहरत हासिल हुई वो उनके नावलों और उनके मकालमों से हासिल हुई है, लेकिन अगर उनकी शायरी का मुताला किया जाए तो हमको अंदाज़ा होता है कि वो शायर भी उतने ही आला दर्जे के थे। और उन्होंने अपने अदबी सफ़र की जो शुरुआत की है वो शायरी से ही की थी। अदबी सफ़र है, तख्लीकी सफ़र है, वो शायरी से शुरू किया। उन 7 मजमूए जो हैं वो मंजरे आम पर आए, मौजे सबा, वादे सबा और रक़्से मैं वगैरह काफ़ी मशहूर हुए। इसके अलावा उनका एक हिंदी मजमूआ भी आया था, शेरी मजमूआ फेरी वाला, इसमें भी उनकी जो शायराना आज़मत है उसको महसूस किया जा सकता है। अगर हम बात करें राही मासूम रज़ा साहब की शायरी की, तो मुझे जो चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो ये है, अपनी कदीम रवायात से अपना रिश्ता उस्तवार रखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो اپنے عہد سے نظر چراتے ہیں. وہ ان روایات کو جو انہیں بہت عزیز ہیں, جو ان کے بزرگوں کی روایات ہیں, ان کو وہ نئے سانچوں میں ڈھال کر نئے تجربوں کے ذریعے ہمارے سامنے پیش

0: करते हैं और उनका ये अंदाज़ है जो उनको इनफरादियत अता करता है। अगर वो कोई ऐसा शेर भी बयान कर रहे हैं जो उनकी इतनी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, उसमें भी इज्तमाईयत का पहलू नज़र आता है हमको। जैसे उनका शेर है, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा तो बहुत देर तक याद आते
1: आते
0: रहे।
1: रहे, बड़ी
0: ये
1: मशहूर नज़्म है इनकी,
0: जी
1: बहुत
0: जी बहुत
1: बिल्कुल।
0: मशहूर। तो ये जाहिर है शायर अपनी तन्हाई का जिक्र कर रहा है, लेकिन आज जदीद दौर का हर इंसान जो अपने वतन से दूर है या तन्हाई के कर्ब को झेल रहा है, ये उसको अपने ही दिल की आवाज़ महसूस होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने नीलूफर साहिबा, कि राही तखल्लुस ये खुद ऐलान करता है कि वो बुनियादी तौर पर पहले शायर थे, और वो भी गज़ल के शायर। देखिए, ये हमारी एक तहजीबी रवायत रही है कि शायरी का आगाज़ उमूमन रोमानी और तगज़ुल और ताशुक़ इससे सब शुरू होता था, और इसीलिए उन्होंने राही तखल्लुस भी रखा। गाज़ीपुर में जो शुरू शुरू में जो कलाम उन्होंने कहे अपने बिल्कुल नौजवानी के दिनों में, उनमें गज़लें ज़्यादा हैं। उनके नावलों को जो मकबूलियत मिली, ख़ासतौर पर आधा गांव को, उससे कहीं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के अदीब जाने गए, उर्दू का जो शायर है वो कहीं पसमंज़र में चला गया। ये ठीक नहीं है। इस सदी पर हमें हमें कोई हर्ज नहीं, हिंदी का बड़ा नावल है, उर्दू का आदमी क्या कहने, होना भी चाहिए। लेकिन जो उर्दू का शायर है और जिसने बड़े कमाल की शायरी की है, वो भी इस सदी के मौके पर मंजर-ए-आम पर आना चाहिए।
2: मैं जो अर्ज कर रहा था शुरू में कि राही हिंदुस्तानियत के राही हैं, उन्हें
1: बिल्कुल
2: उनके दिल में दिमाग में हिंदुस्तानियत उसकी मुश्तरका तहजीब ये बसी हुई थी, और जो चीज़ उसको चोट पहुंचाती थी राही वहीं बेचैन होते थे और वहीं से वो उनके नावलों का उनकी शायरी का खमीर उठता था। फिरका परस्ती भी बहुत से
1: बहुत बहुत
2: बहुत
1: बहुत
2: कहानियां भी हैं, नावल भी हैं उनके। आधा गांव में तो कोई बलवा फसाद जैसी सूरत नहीं है, वो सिर्फ साइकी की तरफ, जो फिरका परस्ती की साइकी है उस पर बात की है उन्होंने, लेकिन उसकी बूंद में तो बाकायदा फसाद होता है, कत्ल होता है। उसने उस बवाल को जो तनाज़ा उठा था उसे दूर करने के लिए पहल की थी।
0: जब एक शख्सियत में कई सारी चीज़ें कई सारे फन जमा हो जाएं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम उसके कौन से रंग को ज़्यादा अहमियत दें। उसके यही राही का भी
1: हाँ
0: मामला
1: मुश्किल
0: है
1: होता है इस तरह।
0: कि हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते,
1: हाँ,
0: हालांकि उनकी शायरी किसी भी एतबार से उनकी नस्र से
1: कम नहीं है।
0: कमतर नहीं कही जा सकती है। और जैसा कि सर ने कहा कि मौजूदा वक्त में इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि राही साहब को दोबारा से पढ़ा जाए, समझा जाए, और उन्होंने शायरी के ज़रिए जो कुछ कहा है उसको अपनी ज़िंदगी का अमली हिस्सा बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें उनकी शायरी एक आफाकी पैगाम है हमारे लिए और हमारी गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार है। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अस्सरेनोस का मुताला करें और अपनी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा मुश्तरका कल्चर है, जिसका ख्वाब के राही ने देखा था कि एक वक्त होगा कि सारे लोग जो है वो मिलजुल कर रहेंगे, वो बार बार इस चीज़ का पैगाम देते हैं।
1: कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राही एक अलबेला, अनोखा, बल्कि सजीला भी कहिए और नुकीला भी कह लीजिए, फनकार था, जिसकी बगावत की इब्तिदा अपने घर से होती है और फिर पूरे मुल्क तक फैल जाती है। मुकामियत से वो आफाकियत का सफ़र तय करता है, ये हर बड़ा फनकार करता है। बहरहाल, आज हम लोगों ने राही को याद किया, और राही को बार बार याद किया जाना चाहिए।
3: राही मासूम रजा का बेबाक अंदाज, इस मौजू पर अभी आप समाप्त कर रहे थे निहायत ही मयारी, जहन अंगेज और बेमिसाल मुबाहिसा। शुरका थे प्रोफेसर अली अहमद फातिमी, डॉक्टर नीलूफर हफीज और डॉक्टर लईक रिजवी। तो सामईन, हमारे तीनों शुरका ने जिस खूबसूरती, अदब और दलीलों के साथ राही मासूम रजा के फलसफे को हमारे सामने रखा, उससे एक बात तो रोजे रोशन की तरह वाजे हो जाती है कि वो कल भी जिंदा थे और अपनी हकगोई की शक्ल में आज भी जिंदा हैं। सच कभी पुराना नहीं होता और बेबाकी कभी बेमायने नहीं होती। अब वक्त हो चला है इस खुसूसी नशरियात को यहीं पर समेटने का। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज

0: नशर किया गया। पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी फ्रीक्वेंसी पर एक नई बज्म और कुछ महकते हुए लफ्जों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दी अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को। आदाब।
1: उर्दू प्रोग्राम खत्म हुआ।
2: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
3: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
2: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जान।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ संदेशों के बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं मनीषा निर्की का काया, एक भजन लिखा है मीराबाई ने।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मनीषा ने लिखी गाया एक और भजन, जिसे लिखा है कबीर दास जी ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मनीषा निर्खी का गाया एक गीत जिसे लिखा हरिवंश राय बच्चन ने।

सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार थी मनीषा निरखी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों को नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे The world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वीमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। पुलिस ने वाहन चालकों से ये भी कहा है कि वे प्रभावित इलाकों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने देश में विकसित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।
2: दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम जो पूरी तरह से बेस्ड है युवाओं के ऊपर, यूथ के ऊपर, हमारे युवा साथियों के ऊपर। आज का जो हमारी बातचीत का विषय है, जो टॉपिक है, वो है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन, कैसे होता है न्यूट्रिशन, और एक जो न्यूट्रिशनल फूड की अवधारणा है, जो हाइपोथेसिस है, वो क्या होती है। क्या हर व्यक्ति जो हम आज अपनी भाग दौड़ भरी जीवन शैली में खाना खा रहे हैं, उसमें पैकेज्ड फूड भी है, ताज़ा खाना भी हो सकता है, अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो क्या वो पोषण हम ले पा रहे हैं। और इसी के साथ बात हम करेंगे जिमिंग की। क्या जिमिंग ज़रूरी है, सही तरीका क्या है, और इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है प्रयागराज की प्रख्यात न्यूट्रिशनलिस्ट को, डॉक्टर छाया मिश्रा। जी हाँ, डॉक्टर छाया मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, यूथ के ऊपर। डॉक्टर छाया मिश्रा, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
2: न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि पेट भरो, पेट भर के खाना खाओ, पेट भर जाने का मतलब न्यूट्रिशनल फूड हमने उतना ले लिया, ये होता है।
3: The word nutrition itself is so powerful.
2: पोषण,
3: पोषण, पोषण कहाँ से शुरू होती है? In fact, even before birth.
2: अच्छा।
3: हाँ, जब मदरहुड के लिए तैयार हो रही होती हैं, उससे पहले होने वाली मदर की न्यूट्रिशन कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ से शुरू होती है। It's even before the birth of a child or conception of a child. That is why जो girl child के बारे में बताते हैं ना कि एक lady की health, nutrition क्यों ज़रूरत है, because progeny कहाँ से आ रही है, who gives birth, a woman, right? इसलिए a woman's nutrition even before conception is very important.
2: अच्छा, यही कारण था कि पुराने समय में जो दादियाँ नानियाँ हुआ करती थी, वो अलग अलग तरीके की चीजें इस समय पर, चाहे लड्डू हो,
3: ध्यान रखा जाता था from the age of puberty.
2: Just because of nutrition.
3: Yes, nutrition and आपके आपकी species को आगे लेके जाने वाली कौन है? The woman. इसलिए woman health, woman nutrition is important.
2: जी.
3: क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होगा, बॉय और गर्ल, इफ दे हैव टू बी हेल्दी, द मदर हु इज बेयरिंग द चाइल्ड शुड बी हेल्दी बिफोर कंसेप्शन।
2: डॉक्टर छाया मिश्रा, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फूड की, तो आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसको देखते हुए एक आइडियल, एक आदर्श न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस थाली क्या हो सकती है, एक हमारा जो यूथ है उसके हिसाब से?
3: जी देखिए, यूथ में एक कॉमन बिलीफ है, इनफैक्ट आज जो भी सुन रहे होंगे, द मोमेंट दे थिंक ऑफ न्यूट्रिशन या डाइट, सबसे पहले दिमाग में लोगों को आता है वेट लॉस, है ना? दूसरी चीज़ आती है, अच्छा कोई बीमारी हुई तो क्या, है ना? दो ही जगह पे लोग उस पे ध्यान देते हैं। जो कभी ध्यान नहीं देते हैं वो लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब दवा तो दे दिया, क्या खाए क्या ना खाए बताइए। सो कैन यू सी द इम्पॉर्टेंस कम्स वेन यू आर इन क्राइसिस। मैं बोलती हूँ क्राइसिस में नहीं, जब आप अच्छे से रहते हो तभी आप इस पे ध्यान देंगे, तो आपको आप बीमारी नहीं होगी, बीमार कम पड़ेंगे आप, इतना इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। एंड जैसे हमने बताया कि लोग वेट लॉस को लेकर न्यूट्रिशन

0: को जोड़ते हैं, नहीं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट इम्यूनिटी, इट्स अबाउट योर ओवरऑल जनरल वेलबींग, है ना। अब जैसे कि WHO का डेफिनेशन क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, इट्स जस्ट नॉट कि बीमार ना होना, है ना, इट्स अ फिजिकल, सोशल, इमोशनल,
1: मेंटल,
0: मेंटल वेलबींग। ये सारे चार एंगल्स को लेते हुए सब अगर सेटिस्फाइड है तो एक पर्सन को हेल्दी बोला जाता है, एंड ऑल ऑफ दिस इज रूल्ड बाय न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग योर मेंटल हेल्थ।
1: कभी कभी ऐसा लगता है डॉक्टर छाया मिश्रा कि भारत जैसे देश में जिस तरह की दीवानगी है खाने को लेकर के, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है अगली जो जातियां बनेंगी वो खाने के आधार पे बनेंगी। ये नॉन वेजिटेरियन है, इनकी अलग जाति हो गई, इनका अलग धर्म हो गया। वेज और नॉन वेज, शाकाहार और मांसाहार, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये दोनों काफी अलग दिखते हैं। क्या जो शाकाहारी हैं उनके पास बहुत कम स्रोत हैं?

0: कभी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है अगली जो जातियां बनेंगी वो खाने के आधार पे बनेंगी। ये नॉन वेजिटेरियन है, इनकी अलग जाति हो गई, इनका अलग धर्म हो गया। वेज और नॉन वेज, शाकाहार और मांसाहार, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये दोनों काफी अलग दिखते हैं। क्या जो शाकाहारी हैं उनके पास बहुत कम स्रोत हैं, सोर्सेज हैं प्रोटीन के या न्यूट्रिशन के, या इसका अगर हम उल्टा कहें जो मांसाहारी हैं उनके पास जो एक सहज प्राप्त प्रोटीन होता है वो उनको अपनी डाइट से मिल जाता है। अगर मैं शाकाहार की बात करूं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको कम्पीट कर सकती हैं या उस स्तर का प्रोटीन या उस स्तर का पोषण दे सकती हैं। आप आजकल तो वीगन भी हो रहे हैं लोग।
1: जी, देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ कल्चरली भी डिफरेंशिएटेड है, जस्ट नॉट बाय चॉइस, है ना। बाय चॉइस भी लोग वेजिटेरियन होते हैं, बाय चॉइस लोग नॉन वेज भी खाते हैं।
0: बिल्कुल
1: सो कहीं पे हम कल्चरली देखा जाए, अगर लोगों को ये लगता है कि वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन, अमंग द वेजिटेरियन, दैट्स पार्टली ट्रू, हाउएवर नॉट कम्प्लीटली ट्रू। क्योंकि जितना हम वैरायटीज ऑफ, जैसे कि वेजिटेरियन में क्या है आपका, दूध दही, देन यू
0: दाल
1: हैव
0: चावल
1: पल्सेस,
0: सब्जी
1: दाल पल्सेस,
0: रोटी
1: हाँ सब्जी रोटी में, मतलब ग्रेन्स में उतना नहीं,
0: जी,
1: पर बेसिकली जो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जो है वो
0: दूध दही
1: है,
0: दालें।
1: उसमें वैरायटी आपको कई कई चीज़ों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा आपके डाइट में। क्योंकि एक बायोलॉजिकल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है नॉन वेज प्रोटीन में है, बट इन वेजिटेरियन सोर्स देर आर डिफरेंट सोर्सेस, लाइक जैसे दूध दही पल्सेस हमने बताया,
0: सोया
1: ये मेजर, हाँ पल्स में ही, सोया भी पल्स
0: जी
1: में ही आ जाता है। तो कभी किसी को, जैसे समझ लीजिए दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ तो एलिमिनेट हो ही गया, देन बचता है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। बट देन बाय एंड लार्ज व्हेन वी प्लान इन अ वे, वी कैन मेक श्योर दैट समबडी इज गेटिंग एडिक्वेट प्रोटीन डे टू डे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, दैट इज पॉसिबल। बट वेन देर इज एन एक्स्ट्रा नीड फॉर प्रोटीन, देर विल ऑल्सो बी इंक्रीज इन कैलोरी, वहां पर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होती है।
0: मैं इसमें जिम को लाना चाहूंगा क्योंकि आज एक बहुत, खासकर कोविड के बाद से जो एक एरा हमने जिया उस समय बहुत भयावह था, ईश्वर ना करे दोबारा वो आए, उसके बाद से जिम करने का या एक्सरसाइज करने का या योग करने का, प्राणायाम करने का एक अच्छी बात भी है। लोगों के अंदर एक जज्बा आया, एक अंदर से इच्छा आई कि हमको भी ये करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, जिमिंग भी इसी में आ गया। ऐसे में जब हम जिमिंग की बात करते हैं, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो क्या जो जिम कर रहा है व्यक्ति, लड़का लड़की कोई भी, उसका जो डाइट होता है या जो जिम नहीं कर रहा है उसका डाइट होता है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है या होना चाहिए?
1: बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए, है ना। पहली बात तो ये देखना है, व्हेन वी से जिमिंग, तो इट्स जो हमारे दिमाग में आता है वो, इट्स एन एरिया वेयर एवरीबडी इज़ गोइंग इन जिमिंग। सो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक आप एक्सरसाइज थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आज के तारीख में एवरीबडी हैव अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सिटिंग जॉब, या बीट स्टूडेंट्स, बीट एनी बडी, यू नो, हमारे आपके, यू नो, जनरल पॉपुलेशन एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रही है। उसमें 1 घंटे आप अगर निकालेंगे फॉर यू टू गिव वर्क टू ऑल द मसल्स इन योर बॉडी, अदरवाइज सब तो यूज़ नहीं हो रहा है ना पूरे दिन में।
0: ऑब्वियसली
1: सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉट यू डू नॉट यूज़ यू लूज़, हमारे एक मेंटर बोलते थे। सो लाइक वाइज बॉडी हेड टू टो आपको स्वस्थ रहने के लिए इंक्लूड ऑल द मसल्स ऑफ योर बॉडी दैट इट इज़ फंक्शनिंग एवरी डे। सो जिमिंग को इस तरह लिया जाए, इट इट्स नॉट अ टास्क, दिस इज समथिंग वी शुड बी डूइंग एवरी डे।
0: मतलब सबको कुश्ती नहीं लड़नी है तो
1: कुश्ती
0: केवल
1: नहीं
0: फिट
1: लड़नी,
0: रहना है।
1: हाँ, कीप ऑल द मसल्स इन योर बॉडी एक्टिव।
0: डॉक्टर छाया, पुराने समय में फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, बहुत सारे लोग होते थे, दादी बाबा चाचा चाची, कोई ना कोई मॉनिटर करता रहता था चीज़ों को। अब आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई शिफ्ट्स में काम कर रहा है, किसी के वर्किंग आवर्स इस तरह के हैं कि वो अपना एक जो रेगुलर भारत जैसे देश की दिनचर्या होती है कि सुबह उठ के नाश्ता किया, फिर लंच किया, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर इस तरह से वो कहीं ना कहीं

0: छूटा है। ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता जिसको हम कहते हैं, जो एक हमारे यहाँ की अवधारणा थी कि वो अच्छे से होना चाहिए। एक कहावत भी है कि नाश्ता आप राजा की तरह कीजिए, फिर दिन का खाना कर्मचारी की तरह खाइए और रात का
1: हाँ
0: खाना एक भिखारी की तरह खाइए।
1: जी।
0: ऐसे में ब्रेकफास्ट आप जिम भी कर रहे हैं, आप मैं सप्लीमेंट्स पर भी आऊँगा, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन आप ब्रेकफास्ट कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये ठीक है?
1: इसमें देखिए ब्रेकफास्ट का टाइमिंग भी है ना
0: बिल्कुल
1: फर्क
0: मैटर
1: पड़ता है।
0: करता है।
1: सो आइडियली जिसको हम क्रोनो न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात करते हैं, जो टाइमिंग है आपका सुबह दोपहर शाम
0: जी
1: रात के टाइमिंग के हिसाब से, देर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक आपके बॉडी में, देर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी में भी सुबह दोपहर शाम और रात होती है। व्हेन आई से दैट सर्टेन हार्मोन्स इन द बॉडी आर एक्टिव एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
0: मतलब जो पहर वाला कंसेप्ट था वो ठीक था हमारा, रात्रि
1: जी
0: का पहला पहर, दिन का दूसरा पहर, वो
1: हाँ,
0: सही
1: ये
0: बात
1: ट्रेडिशनली ये सही है।
0: थी।
1: हावेवर जैसे हम सब का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जैसे
0: जी
1: आपने बताया शिफ्ट ड्यूटी है, जिसको एक्चुअली नाइट ड्यूटी है वो तो दिन में तो सो ही रहा है, उसके लिए रात ही दिन की बात हो
0: सही
1: गई।
0: बात।
1: सो वहाँ पर थिंग्स चेंज एंड दैट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, सही तरीके से मॉडिफाई करेंगे ताकि उनके जो ऑब्वियसली बॉडी को, तो ये तो आपकी ड्यूटी है ना, नाइट ड्यूटी आपको करनी है, पर बॉडी
0: बिल्कुल
1: तो नेचुरली वो रात को ही रेस्ट करने के लिए बना हुआ है, नेचर
0: बॉडी
1: वाइज
0: क्लॉक अलग
1: बॉडी
0: है।
1: क्लॉक है ना। सो जब ये चेंज होता है तब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर ऑब्वियसली चेंज होगी है ना। अदरवाइज जैसे एक्टिविटी जहाँ पे कॉर्टिसोल हाई रहता है, विच इज़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, आइडियली 10 से पहले पहले इट इज़ गुड टू हैव अ सम्पच्युअस मील, प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील सुबह खा लेना ज़रूरी है। पर जिनके लिए नहीं है इट इज़ ओके, बट देन दे कैन शिफ्ट इट। लॉट ऑफ पीपल प्रिफर हैविंग ब्रंच,
0: ब्रंच
1: दैट्स ऑल्सो ओके। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज थ्रू आउट द डे आपका जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, और जिस समय का आपका एक्टिविटी कम रहता है उसके हिसाब से आपका डिक्रीज कैलोरी हो रही है कि नहीं। फिर भी वो जो भी थाली आप खा रहे हैं, जो भी खाना आप खा रहे हैं, वो बैलेंस्ड होना चाहिए थ्रू
0: मतलब
1: आउट द
0: आप
1: डे।
0: ये कह रही हैं कि अगर आप कुछ आपने कुछ वर्कआउट किया तो उसके बाद तुरंत आपको कुछ खाना है?
1: जी, व्हाट आई अंडरस्टैंड आप जो रेफर कर रहे हैं वो है जो वर्कआउट कर रहे हैं टू बिल्ड से मसल मास है ना, टू इम्प्रूव देयर स्टेमिना, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। या वर्कआउट के दौरान प्रोटीन लेना ज़रूरी है, वर्कआउट के तुरंत बाद ज़रूरी है, डिपेंड्स ऑन व्हाट योर एक्टिविटी गोल इज़। कि कोई कंपटीशन की, कोई एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, या कोई सिर्फ अपना मसल बिल्ड कर रहा है, कोई अपने बोन के लिए वर्क कर रहे होंगे। यू नो इन टुडेज सिनेरियो इफ़ यू आस्क हु नीड्स टू बी एक्सरसाइजिंग, एवरीबॉडी।
0: डॉक्टर छाया, बातचीत तो हम आगे भी करते रहेंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक चाहेंगे आप
1: जी
0: हमारे दोस्तों के लिए, कुछ अगर कोई गीत उनको सुनवाना चाहें, कोई भी सॉन्ग अपनी पसंद का।
1: 1942 अ लव
0: क्या
1: स्टोरी
0: बात
1: का,
0: है,
1: ये रिम जिम
0: रिम झिम भीगी भीगी
1: जी
0: रूप में। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत गीत था। हम बात कर रहे थे जिमिंग की और न्यूट्रिशन की। इसके बीच में एक और कड़ी आती है जिसका कि आजकल बाजार बहुत बड़ा हो गया है। लोग इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे कोई डेली यूज़ की जाने वाली चीज़ें हों। हम बात कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स की, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, और ज़्यादातर ये वो लोग लेते हैं जो रेगुलर जिम कर रहे होते हैं।
1: जी
0: क्या किसी भी तरह से बिना किसी से कंसल्ट किए ये अपने से लेना ठीक है?
1: आइडियली नॉट, क्योंकि आप अपने बॉडी को एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं बनाना है. टॉक टू अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर एंड कंसिडर व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट वर्सेस आप क्या प्लान कर रहे हैं जिमिंग के दौरान, राइट? तो इसका तालमेल सही बैठेगा तो एब्सोल्यूटली इट कैन बी टेकन, इट शुड बी टेकन, विच विल हेल्प एनहैंस मसल मास.
0: इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो स्टेरॉयड के तौर पे प्रयोग की जाती हों या जा रही हों। खतरा है?
1: होने को तो बहुत चीज़ें हो रही हैं बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. हम

0: तो यही बोलते हैं, सबसे पहले नेचुरल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, वहाँ से पूरा नहीं हो रहा है देन द सप्लीमेंट कम्स. सप्लीमेंट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर फूड.
1: मतलब जरूरी नहीं है कि हर
0: हाँ,
1: कोई
0: वो
1: सप्लीमेंट
0: रिप्लेसमेंट
1: ले।
0: नहीं है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए है. वो हटा के आप सिर्फ ये लीजिए तब बॉडी को नुकसान होगा.
1: बहुत सारे ऐसे भी हम आजकल रील देखते हैं सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों पर, जो एकदम से आपको एक तरह से प्रभावित करती हैं, उसके बाद आप खरीदे ना खरीदे मगर वो सर्च जरूर करते हैं। और एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप बार बार अगर कोई चीज़ करते हैं तो फिर वो आप कर जाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहली बात तो ये कि जिम जब आप जा रहे हैं तो क्या केवल जिम ही एक विकल्प है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है? अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो क्या आप अपने घर में, जैसे योग आजकल एक बहुत सारे लोग करने, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला, क्या जिम जाना ही ज़रूरी है? दूसरा, अगर आप जिम जा रहे हैं, जिसका जवाब आपने दिया अभी, मैं फिर से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कई तरह की चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी सबको पता भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट्स देख करके प्रभावित हो रहे हैं।
0: देखिए, जिम क्यों जाते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? वही एक्सरसाइज आप, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट एंड क्या आप उस समय, जैसे लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड सो मच ऑफ टाइम. जिम आना जाना, फिर वहाँ पर एक्सरसाइज करना. नाउ लेट्स से दैट इफ दैट टेक्स 1 आवर, आना जाना आधा घंटा लग जाता है, फिर आपके पास बचता है 30 मिनट्स. अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है, यू कैन एक्चुअली डू इट एट होम एज वेल, बट यू हैव टू डेडिकेट दैट टाइम. वॉक करना ज़रूरी है, अ मिनिमम ऑफ, जैसे आप बोले ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते, ताकि हम मेटाबॉलिक स्ट्रेस से या जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी या हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों को दूर रखने के लिए अ मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स ऑफ वॉक एवरी सिंगल डे, 6 डेज अ वीक आप करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनाफ टू स्टार्ट विथ. उसके अलावा 15 to 20 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, विच कुड बी इन द हाउस, बेसिक डम्बल्स के साथ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ कर सकते हैं, बट इज़ इम्पॉर्टेंट. इतना भी करेंगे तो काफ़ी है. ऑफकोर्स इफ समबडी इज़ डूइंग योगा, इट एड्स टू इट. दे शुड बी डूइंग, सो सी वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉट इज़ डूएबल फॉर यू, बट कुछ चीज़ें जो है नॉन निगोशियबल है, आपको करना ही करना है, ताकि आपका नेक्स्ट 20-25 ईयर्स हेल्दी रहे. लॉन्जिविटी इज़ जस्ट नॉट अबाउट कितनी लंबी उम्र, कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वॉट मैटर्स.
1: ज़रूरी नहीं है कि आप कितना लंबा जीते हैं, आपका जीवन कितना बड़ा होता है, इससे फर्क पड़ता है।
2: न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत अभी आपने सुना। ये बातचीत की पहली कड़ी थी। इसी के साथ वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं रामकृपाल यादव और साथियों का गाया खेमटा।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं राम सिंह पटेल और साथियों का गाया दादरा।

लोकगीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं लफ्जों के मुसाफिर निदा फाजली।

आज मैं ऐसे शायर की बात कर रही हूँ जिसने शायरी को मुश्किल किताबों से निकालकर हमारी आम जिंदगी की भाषा बना दिया। मैं बात कर रही हूँ जनाब निदा फाजली की।

निदा दी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन ग्वालियर में बीता। जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया, पर 17 साल के एक लड़के ने अकेले हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया।

उस अकेलेपन ने, उस दर्द ने उन्हें इतना बड़ा शायर बना दिया। उन्होंने भूख देखी, तन्हाई देखी और उसी से इंसानियत को समझा। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे मजहब से ऊपर इंसान को रखते थे। उन्होंने लिखा था, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कितनी बड़ी बात कितने आसान लफ्जों में। निदा जी ने फिल्मों के लिए गीत नहीं बल्कि हमारे दिल के एहसास लिखे हैं।

उनके लिखे गीत आज भी हमारे होठों पर हैं, जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, होश वालों को खबर क्या, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है और आ भी जा ए सुबह आ भी जा। इन गीतों में एक अधूरेपन का सुकून है जो हर किसी को अपना लगता है। उन्होंने इंसान को समझने का बहुत खूबसूरत बात कही है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। साहित्य में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

इसी योगदान के लिए उन्हें बड़े सम्मान मिले। उनकी किताब खोया हुआ साया के लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया और इसके अलावा उन्हें मिर्जा गालिब अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और बड़े फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले। 8 फरवरी 2016 को ये मुसाफिर अपनी आखिरी यात्रा पर चला गया, पर जाते जाते वो हम सब के लिए एक पैगाम छोड़ गया है। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यही है निदा फाजली, जो आज भी अपने लफ्ज़ों में हमारे बीच जिंदा हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज गीत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं रेस फिल्म से मुनाली को।

और आइए अब सुनते हैं सोनू निगम, आफताब साबरी और हाजिम साबरी के स्वर में मैं हूं ना फिल्म का गीत। संगीत है हनु मलिक का और गीत रचना है जावेद अख्तर की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के

0: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड, फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित प्रेम कुमार मलिक का ख्याल गायन। दोपहर 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर ग्रह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहने सुनेंगी डॉक्टर बी पॉल थेलियत की बातचीत, स्तर कैंसर कारण लक्षण और उपचार। दोपहर 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा।

शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवजन सुनेंगे न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली विषय पर बातचीत। इसमें हम आपको सुनवाएंगे

शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया। 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवजन सुनेंगे न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली विषय पर बातचीत। इसमें हम आपको सुनवाएंगे न्यूट्रिशनिस्ट और व्यवसायी जिम ट्रेनर महावीर प्रताप सिंह से अभिनव प्रग पांडे की बातचीत। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में रामकृपाल यादव और साथी के लोकगीत के अलावा डॉक्टर सुनील चंदा की वार्ता होगी रवि की फसल हेतु आवश्यक कृषि कार्य और केवी पांडे के स्वर में हम आपको सुनाएंगे लोक भाषा कविता पाठ। सात बजकर 31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में अंजनी कुमार सिंह की वार्ता होगी अमृतलाल नागर का साहित्य संसार। 7:45 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे अरुण गुलवाड़ीन के गाए भजन और गीत हम आपको सुनवाएंगे। 8:30 सबरस कार्यक्रम होगा और 9:30 पर कहकशा कार्यक्रम होगा। ये थे आज दिन भर के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आइए अब आपको खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना दे दें। अमित कुमार साहू पुत्र श्री रविशंकर साहू निवासी पिपली गांव प्रयागराज से सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री इशिता साहू 2 सितंबर 2026 दोपहर 2 बजे से लापता है। इशिता की उम्र है 18 वर्ष, चेहरा गोल है, रंग गेहुआ है और ऊंचाई है करीब 5 फीट। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9565933137 पर सूचित करें या पिपली गांव थाना एयरपोर्ट प्रयागराज में सूचित करें। एक और सूचना सुनिए। राजकुमार सोनकर पुत्र स्वर्गीय छन्नूलाल सोनकर निवासी बाइकाबाग थाना कीटगंज प्रयागराज से सूचित करते हैं कि रविशंकर सोनकर उर्फ शिव बाबू 19 अगस्त 2026 से लापता हैं। शिव बाबू की उम्र है 55 वर्ष, रंगे हुआ है और ऊंचाई है 5 फुट 4 इंच। इनकी सूचना मिलने पर थाना कीटगंज को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित प्रेम कुमार मलिक का ख्याल गायन राग मुल्तानी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित प्रेम कुमार मलिक का ख्याल गायन राग मुल्तानी सोलतार पर निबद्ध थी। इनके साथ पखावज पर संगत की पंडित रविशंकर उपाध्याय ने, हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने और बोल थे रे मन तू थिर न रहत। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। शारदीय नवरात्र का आरंभ हो चुका है और इस समय माँ दुर्गा की आराधना देश भर में की जा रही है। माँ दुर्गा, तुम शक्ति की देवी हो, तुम्हारा रूप है अति मनभावन, दुष्टों का नाश करने वाली, भक्तों का उद्धार कर...

करने वाली, तुम्हारी महिमा है अपरंपार और तुम ही हो जगत का सार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो आज के इस कार्यक्रम का आरंभ भी हम माँ दुर्गा की इस आराधना के साथ करेंगे।

श्रोताओं, इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ एक और धूम मची रहती है, वो है गरबा की। जी हाँ, जगह जगह पंडालों में आपको कई लोग गरबा खेलते ज़रूर देखेंगे। और ये प्रचलन आज से नहीं, वर्षों पुराना है, हमारी संस्कृति का एक रूप है। तो इसी गरबा को दर्शाते हुए गीत की फरमाइश हमारे श्रोताओं ने की है, वो फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। और इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है उनके नाम है हरियाणा से सीता राम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और अंकित कांगड़ा, ग्राम दुल्हापुर से है मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज सीमा, तन्वी काजल मानवी, सोनी लक्ष्य, ऋतिक मोहनी और बलवीर सिंह, बक्सर से है राज एस डी अंसारी, आसमा, आफताब मेहताब और मेराज, गुजरात से है धीरज वी रबारी, संजय और सचिन, मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, महाराष्ट्र से शंकरलाल, गणेशलाल, शुभम, दुर्गेश्वरी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।

इस समय आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद। तो देखिए, हमारे पास ये संदेश आया है और लिखने वाले हैं संजय नगर लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। इन्होंने लिखा है, मजबूरियां हावी हो जाएं ये जरूरी तो नहीं, कुछ शौक तो गरीबी भी रखती है। इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो बहुचर्चित फिल्म रही है MS धोनी, और इस गीत की फरमाइश हमारे कुछ और श्रोताओं की भी है। ये है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो। बिहार से शराफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अकरम अल्ताफ। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम, अदीबा, दानिश अंसारी। औरंगाबाद से हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञ।

ये हमारे श्रोता का एक संदेश है, लेकिन इनका नाम इसमें नहीं लिखा है। खैर, हम इनका संदेश आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये सुबह भी अब कमाल हो गई, तेरी चूड़ियाँ अलार्म और तुम चाय हो गई। आंखें खुली और हमने देखा चारों तरफ बेरंग दीवारें, आज आफ्ताब हो गई। भाई, बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी प्यारी सी चुलबुली सी बात इन्होंने लिखी है और साथ में गाने की फरमाइश भी है, कभी खुशी कभी गम। और इस गीत की फरमाइश हमारे कुछ और श्रोताओं की भी है, और ये हैं कीर्ति नगर नई दिल्ली से कविता, मानसी गौरव और इनके परिवार के अन्य सदस्य। प्रीतम नगर प्रयागराज से हैं, प्रियंका बुंदेलखंड से हैं, बहादुर चक्रवर्ती विदर्भ से हैं, संतोष खड़से और विनोद खड़से। तो चलिए हम आपकी पसंद के इस गाने को सुन लेते हैं। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

श्रोताओं, उत्सव के इस माहौल में कुछ गाने जो होते हैं बहुत ही फिट बैठते हैं। ऐसा ही एक गाना था देवदास फिल्म में डोला रे डोला, और ये बड़ा हिट भी हुआ था। और इस गाने की फरमाइश जो हमें आई है वो है औरंगाबाद से अनिल कुमार खोड़ के, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश, टीकमगढ़ से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा आरती और प्रभा देवी, दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा, नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम और वामिका। सुनते हैं देवदास फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले

0: दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: di ba, Hashmise? उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में सैलाब, शदीद बारिश, झालाबारी और तूफान की वजह से फसलों के नुकसान से मुतासर 9 लाख से ज्यादा किसानों को गोरखपुर से डीबीटी के जरिए 493 करोड़ की जरिए सरमायाकारी ग्रांट की तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
1: अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण प्रदेश ने पिछले एक सप्ताह पूर्व काफी बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारी जगह जन और पशु की भी हानि हुई है। आज डबल इंजन की सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को उनकी फसल क्षति, मकान

0: क्षति पशुधन की क्षति का ये आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक हिस्सा है।
1: इस इमदाद से किसानों को राहत मिलेगी, जरई सरमायाकारी के बंदोबस्त में मदद मिलेगी और जरात को बहाल किया जाएगा। डबल इंजन वाली हुकूमत बुहरान के वक्त किसान को मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मिशन शक्ति के छठे मरहले के तहत वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम से एक बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें खवातीन की हिफाजत, एहतराम और खुद इनसारी का पैगाम दिया गया। रैली का मकसद खवातीन और लड़कियों की हिफाजत, इज्जत और खुद इनसारी के बारे में मुआशरे में बेदारी पैदा करना है। मिशन शक्ति मुहिम के जरिए वजीर आला ने खवातीन और लड़कियों में उनके हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने, उन्हें महफूज माहौल फराहम करने और उन्हें खुद इनसार बनने की तरगीब देने का पैगाम दिया। रैली ने यह पैगाम फैलाया कि खवातीन का एहतराम करना, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना और उन्हें मसावी मौके फराहम करना हर एक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुहिम का मकसद खवातीन के एतमाद को बढ़ाना, उनके खिलाफ जरायम को रोकना

0: शक्ति मुहिम के जरिए वजीर आला ने खवातीन और लड़कियों में उनके हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने, उन्हें महफूज माहौल फराहम करने और उन्हें खुद इन्हिसार बनने की तरगीब देने का पैगाम दिया। रैली ने यह पैगाम फैलाया कि खवातीन का एहतराम करना, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना और उन्हें मसावी मौके फराहम करना हर एक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुहिम का मकसद खवातीन के एतमाद को बढ़ाना, उनके खिलाफ जराइम को रोकना और जरूरत पड़ने पर दस्तयाब मुआविन मेकानिज्म तक उनकी रसाई को यकीनी बनाना है। वज़ीरे आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में इंतजामी अहदेदारों के साथ दुर्गा पूजा, दशहरा और त्यौहार की तैयारियों, अमन अमान और तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीरे आला ने इस बात पर जोर दिया कि त्यौहार के दौरान किसी भी सूरत में ट्रैफिक में खलल नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा कमेटियों से मशवरा किया जाना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दुर्गा मूर्तियां सड़क पर न लगाई जाएं। वज़ीरे आला ने अहदेदारों को मूर्ति विसर्जन रास्तों का मुआयना करने और तमाम जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी। वज़ीरे आला ने दरियाओं के पानी की सतह और जिले में ज़ेर तामीर मंसूबों की पेशरफ्त के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के विजन के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ की तरफ बढ़ रही है। ये हुकूमती इकदामात जामे तरक्की और समाजी बाइख्तियार बनाने के जरिए लोगों की जिंदगियों में मजबूत तब्दीलियां ला रहे हैं। आज की खसूसी सीरीज में हम बता रहे हैं कि MyGOV प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को कैसे नाफिज किया गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGOV प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGOV पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं।
1: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही है। इस मौके पर सुबह से ही रियासत भर के देवी मंदिरों में अकीदतमंदों की कतारें लगी हुई हैं। विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर एक मशहूर शक्तिपीठ और बलरामपुर जिले के देवी पतन शक्तिपीठ में दर्शन और पूजा के लिए अकीदतमंदों की एक बड़ी भीड़ देखी जा रही है। अयोध्या के बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली और जलपा देवी मंदिरों में कल से बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन और पूजा कर रहे हैं। मेरठ में सरधाना के दबथुआ इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो के दरमियान तसादुम में 3 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। ये तीनों लोग गांव से बल्लियों से भरा एक टेम्पो चलाकर सड़क की तरफ जा रहे थे। एक पीछे से आने वाले एक ट्रक ने इस टेम्पो को टक्कर मार दी जिसकी वजह से 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। SP रूरल अभिजीत कुमार ने बताया कि तीनों अफराद की शिनाख्त के बाद उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए एक टीम दी गई है। महकमे मौसमियात ने 16 अक्टूबर तक मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने रियासत के मशरकी जिला में 14 अक्टूबर तक खुश्क मौसम की पेशगोई की है। दरियासना शामली जिले में कल मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी की वजह से दर्ज हरारत गिर गया। अमरोहा जिले में कल भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब पहले अपना कार्यक्रम सुनेंगी गृह लक्ष्मी।

0: सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
1: नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
2: शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के भक्ति रस को साझा करने आए हैं हम, मैं तनु
0: और मैं कंचन।
2: आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और इस वक्त पूरा वातावरण कितना अलौकिक हो जाता है, ये तो आप सबने भी महसूस किया होगा सखियों।
1: सही कहा आपने कंचन, ये पर्व ही ऊर्जा का है, पावनता का है, देवी माँ के शक्ति स्वरूप की वंदना का है।
0: बिल्कुल,
1: नवरात्रि के 9 दिन भगवती के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं।
0: अश्विन मास की प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाने वाले ये विशेष दिन मन मस्तिष्क को शांत और नियंत्रित रखते हैं, साथ ही आत्मबल को पहचानने वाले होते हैं।
1: बिल्कुल, मान्यता है कि दुर्गा माता 9 दिन तक महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध करते हुए उसे परास्त करती हैं। ये राक्षस हर दिन रूप बदल बदल कर आता है और माँ दुर्गा उससे युद्ध करते हुए अंततः उसका संहार कर देती हैं।
0: तो इसमें समझने वाली बात ये है कि

0: बुराई नकारात्मकता स्वरूप बदल कर यूं ही हम तक भी हर दिन रूप बदल बदल कर आने की चेष्टा करती हैं, लेकिन बुद्धि बल से हमें उन्हें परास्त करना होगा। और हमारा ये कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जो कि स्त्रियों का ही कार्यक्रम है, तो ये 9 दिन स्त्री शक्ति का, उसके विभिन्न स्वरूपों को समझने का, स्वीकारने का और जीवन में उतारने का विशिष्ट समय है।
1: कमनीयता और कोमलता का पर्याय स्त्री सिर्फ सौंदर्य की मूरत मात्र नहीं है, बल्कि अपार ऊर्जा, आंतरिक बल, समर्पण की छवि भी है, जो समय आने पर अडिग रहती है और किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने तनु जी, क्योंकि ये पर्व ही शक्ति की पूजा का है, तो मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है इससे जुड़ा।
1: हाँ, बताओ।
0: और उसका जो निष्कर्ष है वो बड़ा सुंदर है, पता है क्या?
1: हाँ?
0: देखिए, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व आश्विन मास में ही समुद्र तट पर 9 दिनों तक शक्ति की कठिन आराधना की। इसके बाद 10वें दिन जब उन्होंने रावण का वध किया और वो दिन कहलाया विजयदशमी।
1: हाँ।
0: पर यहाँ निष्कर्ष ये निकला कि सर्व समर्थ परमात्मा को भी शक्ति प्राप्त प्राप्ति हेतु देवी की शरण में ही आना पड़ा।
1: यानी स्त्री शक्ति अनुकरणीय है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा 9 दिन 9 स्वरूपों में पूजी जाती हैं, जिनका अलग अलग महत्व है। प्रथम दिन, जो कि कल था, माँ शैलपुत्री को समर्पित है। ये शक्ति की पहली अभिव्यक्ति हैं, जो जीवन में दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक हैं।
0: और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो आज का दिन है। इस स्वरूप में देवी तप और ज्ञान की देवी हैं।
1: तीसरा माता चंद्रघंटा का है, जो शांति और कल्याण करने वाली हैं। और चौथा दिन है कुष्मांडा देवी का, जो पूरे ब्रह्मांड की नियंता हैं।
0: पंचम दिन समर्पित है स्कंद माता को, जो माँ के ममत्व का स्वरूप है। यूं ही छठा दिन है माता कात्यायनी का, ये शत्रु संहारक स्वरूप है।
1: सप्तम दिन होता है कालरात्रि माँ का, जो हर बुरी शक्ति दूर करने वाली होती हैं। और अष्टम महागौरी का, जो पवित्रता, सौम्यता और सुंदरता की देवी हैं।
0: और नौमी सिद्धिदात्री माता का है, जो हर मनोकामना को पूर्ण करती है, आपकी आराधना को सफल करती है।
1: बिल्कुल, तो ये तो हो गई सभी जो स्वरूप हैं माँ के, उनका वर्णन। और कंचन, अब एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: तो भाई गीत तो बहुत ही सुंदर था। इन गीतों ने देखिए हमारे स्टूडियो के माहौल को भी भक्तिमय बना दिया है ना दीदी।
1: बिल्कुल, माता को समर्पित था।
0: बिल्कुल।
1: और जो हम बात कर रहे हैं कंचन, देखो जो माँ हैं, जो हमारी देवियां हैं, वो शक्ति स्वरूप हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और शक्ति के बल पर ही ये जीवन

0: चल रहा है, और उस शक्ति को धारण करने की जो माध्यम है हमारे लिए वो हमारा शरीर है।
1: बिल्कुल,
0: हम जो भी काम करते हैं इस शरीर से ही करते हैं, है ना।
1: और शरीर को भी इसीलिए मंदिर कहा गया है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए पहले उस शरीर का ध्यान रखना, उस पर ध्यान देना, उसकी साफ सफाई या जिस भी तरीके से आप उसको पोषित कर सकें वो बेहद जरूरी है। क्योंकि जब कोई समस्या या कोई बीमारी उस शरीर को घेरती है वो बहुत कष्टकारी होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सिर्फ कष्ट झेलना या उस बारे में जानना ही जरूरी नहीं है, उसका निवारण जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शक्ति जब हमारे शरीर में होगी, जब हमारा शरीर निरोग होगा, जब हम पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, तभी हम अपने जीवन के सारे कार्य कर सकेंगे। और जो भी हम बातें कर रहे हैं कि हमें इन 9 दिनों में सीखना चाहिए, उनको अमल करना चाहिए, उनको अमल करने के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है, है ना।
1: तो इसलिए तो तनु दीदी हम लोग बात तो अभी आगे अपनी जानकार एक बातचीत लेकर आए अपनी श्रोता सखियों के लिए, लेकिन ये बात जो आपने कही वो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपने मित्र बनिए, अपने शरीर के मित्र बनिए, उसको कतई नजरअंदाज न करें किसी भी हाल में।
0: तो आज कौन सी बातचीत लेकर आई है उसका विषय बता दो।
1: आज हम डॉक्टर बी पॉल थेलियट जी से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बातचीत लेकर आए हैं। विषय है स्तन कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार। चलिए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम कैंसर और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं, आप सबको जागरूक करेंगे और ये कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है इस बात का इत्मीनान रखिए। और ये जो ठीक होने का सफर है ये कैसा होना चाहिए, किन बातों का हम ध्यान जरूर रखें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बी पॉल थेलियट। आप पद्मश्री से सम्मानित भी हैं, भारत सरकार ने आपको सम्मान इस क्षेत्र में गहन कार्य के लिए दिया है। और साथ में हैं अभय कांत तिवारी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
3: धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी।
2: डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है लोग थोड़ा घबराते भी हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता कि इसको कैसे समझा जाए, तो इसकी शुरुआत हमारे सुनने वालों को जरूर बताएं कि भाई उनको कैसे पता चलेगा। आमतौर पर महिलाएं घबरा जाती हैं कहीं हमको भी नहीं हो गया, हमको भी नहीं हो गया।
3: स्तन के कैंसर शुरुआत से ही पता चल सकते हैं हम लोगों को।
2: जी कैसे?
3: हम लोगों को सिखाते हैं स्वयं अपना स्तन के परीक्षण करना है।
2: जी,
3: एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं।
2: हाँ,
3: अभी इसमें क्या करते हैं, हर औरत अपना बाय स्तन को दाहिने हाथ से हम लोग फील कर सकते हैं इसे।
2: हाँ,
3: हाथ लगा दो, पूरा चढ़ लो और आर्म पिट में भी सी कर सकते हैं।
2: जी,
3: अगर आपको कोई भी गिल्टी महसूस होते हैं उसमें आप लोग का आगे तुरंत इसका टेस्ट करना चाहिए।
2: जी,
3: जांच करना चाहिए। अपना पास नजदीक का डॉक्टर को दिखा सकते हैं या कोई कैंसर सेंटर हो तो इसमें कर सकते हैं। आजकल स्तन कैंसर डायग्नोस करने के लिए ऐसे सुविधा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैमोग्राफी। स्तन का एक्सरे होते हैं।
2: जी,
3: वो एक्सरे करने से हम लोग पूर्ण रूप से पता चल सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं और नॉन कैंसर है। कई लोगों को कैंसर के अलावा गिल्टियां होते हैं, जैसे छोटी उम्र में, जैसे लड़कियों को होते हैं फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, कुछ तरह का गिल्टियां होता है वो कैंसरस नहीं है लेकिन उनको बहुत ज्यादा शंका होते हैं। लेकिन ये शंका होते हैं हम लोग हॉस्पिटल में आके इनको चेकअप करके और छोटी उम्र में हम लोग अल्ट्रासाउंड टेस्ट करके कंफर्म करते हैं।
2: पहले अल्ट्रासाउंड होता है,
3: अल्ट्रासाउंड करते हैं ना छोटी उम्र में, अगर 40 उम्र के ज्यादा हो तो हम लोग एक्सरे यूज करते हैं।
2: अच्छा।
3: क्योंकि एक्सरे शरीर के लिए थोड़ा सा नुकसान करते हैं, इसलिए एक्सरे हम लोग एल्डरली पीपल को यूज करते हैं 40 की उम्र के। यंगर लेडीज को ना ये ब्रेस्ट बड़ा ग्लैंडुलर होते हैं, इसमें कोई ये एक्सरे से आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग ये अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं।
2: जी,
3: कोई डाउट हो तो इसमें MRI टेस्ट करते हैं।
2: सर, एक्सरे अगर कोई करवाता हो तो उसे किस तरह के नुकसान होते हैं, आप नुकसान की बात कर रहे हैं?
3: एक्सरे नुकसान मतलब एक्सरे शरीर में लग गया तो सबको कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, इसलिए हम लोग यंगर एज में ये अवॉइड करते हैं।
2: जी,
3: लेकिन ओल्डर एज में लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: आपने मेमोग्राफी की भी बात की।
3: मेमोग्राफी एक्सरे से ही करते हैं।
2: मेमोग्राफी
3: जो होते हैं एक्सरे होते हैं, लेकिन छोटी उम्र में हम लोग ना अल्ट्रासाउंड से करते हैं एक्सरे, स्तन का एक्सरे उसी में पिकअप कर सकते हैं दोनों में। अगर कुछ डाउटफुल लिशन हो तो शंका है कैंसर का, हम लोग वो जो गिल्टी जो भी पता चलता है उसको निकाल के टेस्ट करते हैं।
2: अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सामान्य गिल्टी भी हो सकती है और ये भी कह रहे हैं कि वो कैंसर सेल
3: भी हो सकते हैं,
2: मतलब वो दिखने में एक जैसे होते हैं?
3: एक्चुअली ना वो जो अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर उसमें अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी में फिर भी डाउट है कैंसरस का तो हम लोग इसमें डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है, एक नीडल डाल के सुई डाल के इसमें जो टेस्ट करते हैं

0: या वो पूरा गिल्ली निकाल के टेस्ट करते हैं,
1: ओ
0: उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आदमी को, उसे पता कर सकते हैं पक्का 100% कैंसर है कि नहीं। कैंसर नहीं है तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अगर कैंसर होता है आपके शुरुआत में आके इलाज कर सकते हैं। शुरुआत में इलाज करना बड़ा अच्छा होता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि
1: क्यों है?
0: शुरुआत में होते हैं इलाज होते हैं, इसमें स्तन का पूरा निकालने की जरूरत नहीं होता है। हम लोग जो कैंसर प्रभावी थेरिया को सिर्फ निकाल के बाकी स्तन को बचा के इलाज करते हैं, उसके पूरे आगे लेसिंग को लाइट लगाते हैं, रेडिएशन का ट्रीटमेंट, और इसका कोई जरूर टेस्ट से पता चलेगा किस तरह का बीमारी है, उस तरह का कोई कुछ बीमारी में कुछ इंजेक्शन भी यूज करते हैं, इसमें
1: जी
0: पूर्ण रूप से ठीक होने का संभावना है। इसलिए आजकल हम लोग मीडिया में भी बोलते हैं हर औरत हर महीने अपना स्तन का स्वयं चेकअप करना चाहिए,
1: जी
0: बाएं स्तन को दाहिने हाथ से और दाहिने स्तन को बाएं हाथ से
1: ऑपोजिट
0: फील करना चाहिए। कोई भी गिल्टी महसूस होगा आप पास में डॉक्टर के पास आए हो या कैंसर अफसर आए हो, वो टेस्ट करके इसका पूर्ण रूप से रूल आउट कर सकते हैं कैंसर है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, ये भी एक रिसर्च में आया, आप कह रहे हैं कि भाई छोटी सी गिल्टी हो,
0: हाँ
1: अगर वो बिनाइन हुआ,
0: हाँ
1: वो कैंसर सेल हुआ, तो उसको निकाला जा सकता
0: या
1: है और पूरी जो छाती है उसको बचाई जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि भाई आप सेल पर बात करिए, आपने उतने एरिया को तो निकाल दिया, लेकिन बाकी जो सेल का नेचर है आसपास, वो तो वैसा ही है, वो फिर क्या उभरने की संभावना
0: नहीं
1: रहती
0: नहीं
1: है?
0: इसमें जो हम लोग जो स्तन के जो गिल्टी निकालते हैं ना, आसपास का सेल्स को भी निकालते हैं, वो टेस्ट करने से पता है, इनके मॉलिक्यूलर लेवल में काफ़ी टेस्टिंग करते हैं, उससे पता चलेगा वो लोकलाइज्ड डिसीज होते हैं या फैलने वाला कैंसर है कि नहीं। फैलने वाला कैंसर होता है इसके आगे इम्यून थेरेपी होता है या कीमोथेरेपी होते हैं, उसको ले
1: ओहो,
0: लीजिए वो सप्रेस करते हैं, अगर नहीं तो जो
1: अच्छा।
0: बिनाइन टाइप की होता है हम लोग इसमें ऑब्जर्व कर
1: अब
0: सकते
1: भाई जी,
0: हैं।
1: ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके मन में कोई
0: या
1: प्रश्न आ रहा
0: डॉक्टर साहब, जैसे आप
1: है?
0: बात कर रहे थे सेल्फ डायग्नोसिस की, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा भी क्या कोई लक्षण, शुरुआती लक्षण होते हैं स्तन कैंसर के, या बिना लक्षण के भी स्तन कैंसर हो सकता है?
1: लेकिन
0: बिना इधर यही होता है ना, जो पेशेंट निगलेक्ट करते हैं, अगर कोई गिल्टी पता है देखो लोग इग्नोर करते हैं।
1: या बुखार आता होगा ऐसा कुछ?
0: एक्चुअली अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में कोई बुखार वगैरह ऐसे कुछ है नहीं है, हम लोग
1: कोई
0: बिना
1: दर्द नहीं, कुछ नहीं।
0: ऐसे बुखार वगैरह नहीं होते, बहुत एडवांस स्टेज में ये सब बुखार वगैरह होता है। स्तन में जो डायग्नोज करते हैं गिल्टी, सिर्फ गिल्टी महसूस होता
1: कोई
0: है।
1: गांठ तो नहीं
0: छोटी
1: है?
0: उम्र में जो गिल्टियां होते हैं, जो मैंने बोला ना, जैसे यंग अडल्ट्स को होते हैं कैंसर के अलावा कई तरह का ये गिल्टियां होते हैं, जैसे हम
1: जी
0: लोग फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, वो बिनाइन डिसीज होते हैं, वो कई गिल्टियां होते हैं, उससे पता चल जाए ना, हम लोग फील करने से पता चलेगा वो
1: जी
0: बिल्कुल मूव करते हैं, और जो
1: ओ
0: कैंसर वाला वो लेस मूवमेंट होते हैं इसका,
1: जी
0: उसका
1: जी
0: इवन सिस्टिक भी होते हैं,
1: जी
0: उसे हम लोग फील करने से ही पता चलेगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए या अल्ट्रासाउंड और या
1: डॉक्टर साहब,
0: मेमोग्राफी
1: जैसे
0: का।
1: आपने कहा कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड या फिर मेमोग्राफी की आपने
0: हाँ
1: बात की, तो क्या इन दोनों टेस्ट से ये पूरी तरह हम श्योर हो सकते हैं कि कैंसर है या नहीं?
0: देखो वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें पूर्ण रूप से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कैंसर है कि नहीं। उसमें जो कुछ लेशंस ऐसे आते हैं, कुछ डाउटफुल आते हैं, कुछ शंका होता है, उसी को हम लोग फिर टेस्ट करना
1: हम
0: पड़ेगा,
1: फर्दर टेस्ट के लिए जा
0: फर्दर
1: सकते हैं।
0: टेस्ट करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि भाई छोटा है तो उसको निकाला जा सकता है, तो क्या ये स्टेज 1 हुआ, और जब वो बढ़ जाता है, जब कीमो की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो स्टेज 2
0: देखो
1: हुआ?
0: जो शुरुआत के स्टेज में डायग्नोज
1: जी
0: करने से यही फायदा है, हम स्तन को बचा के इलाज कर सकते हैं,
1: जी
0: उनका कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगा। लेकिन कैंसर एडवांस स्टेज में हो गया, स्टेज 2 और फर्दर निपल एरिया के नीचे आ गया, लेकिन इनको पूरा ब्रश को रिमूव करना पड़ेगा, पूरा
1: जी
0: मैस्टेक्टमी करना पड़ेगा, वो लेडीज को कड़ा यंगर एज के
1: जी
0: लोगों को थोड़ा
1: हाँ
0: सा फीलिंग्स
1: बिल्कुल,
0: होते हैं
1: हाँ
0: और
1: जी
0: काफ़ी लोग रिलेक्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसलिए शुरुआत में बिना ऑपरेशन का कर सकते हैं। दूसरा ये हो तो हम लोग इसका जो स्तन का ऑपरेशन करने के बाद पूरा इनका टेस्ट हो जाता है,
1: जी
0: आजकल काफ़ी तरह का मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इससे पता चलेगा ये कैंसर दोबारा आने का चांसेस है कि नहीं।
1: सर, कोई ओरल दवाई भी होती है, जैसे टैबलेट्स है, इंजेक्शंस
0: या
1: हैं, ये भी
0: इसमें
1: होते हैं?
0: हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं,
1: अच्छा
0: अगर दोबारा
1: जी
0: आने का चांस हो तो इसमें जो हार्मोन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टमोक्सिफेन होते हैं, ये लेट्रोसोल
1: जी
0: करके ओल्डर एज में जो लेडीज को ये यूज करते हैं, इसमें जो कैंसर आने का संभावना बहुत कम होते हैं।
1: जो इंजेक्शंस यूज करते
0: इंजेक्शन भी
1: हैं?
0: होते हैं, अगर लोकली एडवांस कैंसर होता है इसमें कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर ब्लड के माध्यम से शरीर में और जगह पे फैल सकते हैं, और एडवांस से हो तो
1: हाँ,
0: फेफड़े के अंदर, हड्डी के अंदर, ब्रेन के अंदर, कई शरीर में किसी भी अंग में फैल सकते हैं।
1: ब्लड,
0: इसी के लिए हम लोगों को अगर एडवांस एज हो तो पेट स्कैन का इस्तेमाल करना पड़ता है, पेट स्कैन
1: जी
0: होता है, वो पेट स्कैन जो करने से पता चलेगा शरीर में और कहीं फैला हुआ है कि नहीं, और ऐसे हो तो फिर हम लोग को इसमें कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं।
1: डॉक्टर साहब,
0: कीमोथेरेपी शरीर में किसी भी अंग में बीमारी फैला

0: है उसको रोक सकते
1: रोक
0: हैं
1: सकती है।
0: क्या?
1: डॉक्टर साहब, कीमो के नाम से मैंने बहुत लोगों को डरते हुए देखा है। वो इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि भाई ये गर्म होती है और भाई बाकी जो शरीर है वो कमज़ोर होता है, या फिर जो शरीर पर बाल हैं वो चले जाते हैं, रंग थोड़ा कम हो जाता है। आप क्या कहेंगे
0: देखो, ये
1: इस पर?
0: कीमोथेरेपी ऐसे कोई घबराने वाला इलाज नहीं है। कीमोथेरेपी हम लोग जो स्टैंडर्ड डोज में देते हैं
1: जी
0: उसमें कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं। शुरुआत में होते हैं कुछ उल्टी मिचलाहट होते हैं, मिचलाहट और कभी हो सकते हैं जो लेडीज में थोड़ा सा बाल गिर जाएगा।
1: जी
0: लेकिन जो बाल जो गिर जाते हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं।
1: ओ, मतलब वो उसके रूट्स कहीं नहीं जाते।
0: नहीं, रूट नहीं, वो जो बाल ऊपर से निकल जाते हैं लेकिन बाल दोबारा आ जाते हैं। इसलिए ऐसे कोई डरने वाला बीमारी ये नहीं है बाल की वजह
1: जी
0: से।
1: जी
0: आपको बिल्कुल करना नहीं है तो इलाज करेगा, पहले अपना लाइफ बचाओ, उसके
1: बिल्कुल,
0: बाद ये सब बाल तो वापस आ
1: सौंदर्य
0: जाएगा।
1: तो कोई नहीं ले
0: ये
1: सकता।
0: नहीं दे
1: डॉक्टर साहब,
0: सकते।
1: कीमोथेरेपी के डोज कैसे होने चाहिए?
0: कीमोथेरेपी के जो स्टैंडर्ड डोज होते हैं,
1: जी
0: अलग अलग दवाई होते हैं।
1: जी
0: अभी जो अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं हम लोग कम डोज वाला, ज्यादा मारक दवाई नहीं यूज करते हैं, कम माइल्ड कीमोथेरेपी यूज करते हैं। अगर उसमें जो फैला हुआ कैंसर होते हैं, अगर वो इसमें ड्रेडफुल है, वो खतरा बीमारी है, दम इसमें कोई अग्रेसिव हाई डोज में कैंसर का दवाई देना पड़ता है।
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: कैंसर भी हम लोग देख के हम लोग डिसाइड करते हैं, माइल्ड देना है या मॉडरेट देना है, या
1: जी
0: हेवी देना है
1: माइल्ड है,
0: या
1: मॉडरेट
0: मॉडरेट
1: है, या
0: देना है
1: फिर जो हाई
0: या
1: डोजेस
0: इसमें ऐसे
1: हैं।
0: कोई घबराने वाला नहीं। मेरे
1: जी
0: को पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा ना, जो आजकल पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोला गया कि कीमोथेरेपी देना है या रेडिएशन देना है, वो लोग अपना नेट में सर्च करके ये बोलते हैं इनका साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। इसलिए लोग बहुत देर पे आ जाते हैं रिपोर्ट करते हैं इलाज के लिए, और जहाँ पे इंडिजिनस ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं फिर
1: जी
0: वापस आते हैं जो एडवांस हो जाते हैं। इसके आजकल जमाने में यही देख रहे हैं पढ़े लिखे लोगों में,
1: जी
0: जो
1: जी
0: अनपढ़ गाँव के लोगों को इलाज करना बड़ा आसान है, हम लोग जो बोलते हैं वो सीधे करते हैं।
1: जी ये बीमारी महिला और पुरुषों दोनों को होती है। महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है और पुरुषों में थोड़ा कम है इसका परसेंटेज। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव कैसा रहा कि आपके पास कौन से लोग ज्यादा आते हैं, किस जेंडर के लोग ज्यादा आते
0: देखो,
1: हैं?
0: स्तन कैंसर हम लोग महिलाओं में देखते हैं,
1: जी
0: आदमी लोगों को देखते हैं बहुत कम कम लोगों को देखते हैं।
1: जी
0: लेकिन जो आदमियों में जो कैंसर देखा जाता है काफ़ी एडवांस स्टेज में देखते हैं,
1: जी
0: क्योंकि स्तन में जो इनको ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम है आदमी को। हम लोग जो देखते हैं कैंसर का, वो जो बुरा स्थिति के साथ चिपक गया है
1: जी
0: तभी स्टेज में लोग को पता चलता है। शुरुआत में जो लोग चमड़ी का कैंसर ये सब सोच कर, हमें चमड़ी का बीमारी सोच करके डिले करते हैं, उसमें जो चमड़ी के नीचे ही ये बीमारी, उसमें जो स्तन आदमी में कोई है नहीं है,
1: जी
0: ब्रेस्ट टिश्यू नहीं है, इसलिए एकदम लोग आते हैं जब छाती के साथ चिपा के आते
1: यानी कि
0: हैं
1: वो थर्ड स्टेज भी
0: या
1: हो चुकी
0: थर्ड और
1: होती
0: फोर्थ स्टेज
1: है।
0: में आते हैं, जो इसमें जो इलाज करना मुश्किल है। जैसे लेडीज में मैंने बोला ना, स्तन बचा के हम लोग जो गिल्टी को निकाल के आगे ट्रीटमेंट स्तन बचा के इलाज कर
1: मतलब
0: सकते हैं,
1: बिनाइन स्टेज में
0: जो
1: ही ये हो
0: जो
1: सकता है।
0: पुरुषों में ये करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो एडवांस स्टेज में पता चलता है। लेकिन ये पुरुषों में कैंसर होने का संभावना बहुत कम
1: कम
0: है।
1: है।
2: डॉक्टर साहब, डेंस ब्रिस्ट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था कि ये क्या होता है और ये मैमोग्राफी द्वारा कैंसर को डिटेक्ट करने में ये कितना प्रभावित कर सकता है उस रिपोर्ट को?
0: देखो ऐसे है ना, मैंने जैसे बोला आपको, हम लोग मैमोग्राफी वाला जो 40 उम्र के बाद में, जैसे लेडीज का जो पीरियड्स खत्म हो गया उसके बाद ही हम लोग इस्तेमाल करते ज्यादा, इसमें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं आराम से ब्रेस्ट टिश्यू में, जो एक्सरे देने के इस पता से चलते हैं वो कैंसर से कि नहीं, इसका जो गिल्टी का कैरेक्टर देखने से पता चलतेगा हम लोगों को ये कैंसर से कि नहीं। अगर कैंसर होता है हम फर्दर
1: जी
0: इसका टेस्ट करते हैं, अगर नहीं तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस है। सर में जो होते हैं फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं, ऐसे गिल्टियाँ होते हैं। लेकिन ये सब फाइब्रोएडिनोमा वगैरह मल्टीपल होते हैं, कई तरह पर कई जगह गिल्टी होते हैं, लेकिन स्तन कैंसर तो शुरुआत होते हैं एक ही जगह से शुरू होते हैं, वो आसपास में जगह में
2: वो
0: फैल
2: धीरे
0: जाते
2: धीरे
0: हैं,
2: फैलता है
0: धीरे धीरे फैल जाते हैं।
1: या
0: दूसरा,
1: छिटपुट जगह पे भी हो सकता है डॉक्टर साहब, कि
0: हाँ वो तो
1: छाती
0: ना
1: में
0: जो
1: हुआ, स्तन
0: ब्रेन
1: पे
0: बिनाइन
1: हुआ।
0: ब्रेस्ट जो
1: हाँ
0: नॉन
1: हाँ
0: कैंसरस वंस, ये जो कहीं शरीर में दोनों साइड में भी हो सकते हैं, ये जो बिल्कुल स्लिप करते हैं हम लोग हाथ लगाए तो
1: हाँ
0: ऐसे शुरुआत में जो,
1: ओ, मतलब सेल्स ट्रैवल करती
0: हाँ
1: है, मूव
0: ट्रैवल नहीं
1: करती
0: करते
1: है।
0: हैं लेकिन हम
1: हाँ
0: लोग हाथ लगाए तो स्लिप हो जाते हैं हाथ
1: ओह,
0: से, जो
1: नाउ आई
0: ब्रेस्ट
1: गेट
0: कैंसर
1: इट।
0: होता है जो आसपास में जगह टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट करते हैं इसलिए स्लिप नहीं करते हैं, इसलिए मैंने फील करने से ही पता चलते हैं,
1: ओके
0: जो एक्सपीरियंस
1: जी
0: डॉक्टर्स
1: जी
0: होते हैं
1: जी
0: वो
1: जी
0: फील करने
1: जी
0: से पता चलते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन ये टेस्ट करने से हम लोग मैमोग्राफी है जो अल्ट्रासाउंड करने से पूर्ण रूप से इसको डायग्नोस कर सकते हैं, देन हम लोग पेशेंट से रिलेटिव से बात करके आगे ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं हम।
1: जी
2: डॉक्टर साहब, ये अगर हम कारणों की बात करें तो बदलती जीवन शैली, खान पान का कितना योगदान है इस कैंसर को, इस बीमारी को?

0: बढ़ाने में।
1: देखो खान पान में ज़्यादा इसमें ज़्यादा ये नहीं है, बाकी कैंसर जैसे होते के जो मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, पेट के कैंसर में खान पान में काफ़ी फर्क है। आपको आपको आता है टुबाको जो यूज हो सकते हैं मुंह का और गले का, लेकिन स्तनपान में ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन अपना जीवन शैली से जुड़ेगा तो आपको फैटी टिश्यू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो फैटी फूड खाते हैं, ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स ज़्यादा खाते हैं, इसमें संकेत थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
0: डॉक्टर साहब की बातों से हमने आज यही सीखा कि अगर हमें कभी भी कुछ भी ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना है, हमें देर नहीं करनी है और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना।
1: बिल्कुल नहीं।
2: तो चलिए आज के सफर में बहुत कुछ हमने जाना डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: तो अभी हम सुन रहे थे बातचीत जिसमें डॉक्टर बी पॉल थेलियत से बात कर रही थी नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी जी, और हमारा विषय था स्तन कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार।
2: कंचन, ये जो विषय था ये वाकई बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय था, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें, जो लक्षण, जो उपचार, जो भी चीज़ें हमारे डॉक्टर साहब ने बताई, ये सब सुन के जो हमारी श्रोता हैं वो इसके प्रति जागरूक हुई होंगी, और किसी भी ऐसी परिस्थिति में जल्दी से जल्दी वो, अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी स्थिति आती है, तो कम से कम उनको ये समझ में आएगा कि हमें क्या कदम शीघ्र से शीघ्र उठाने चाहिए।
3: नहीं, वही बात हम लोग तनुदी पहले भी कर रहे थे कि अगर आपको जरा सा भी कुछ अपने शरीर में कुछ भी जो आपको अनयूजुअल लग रहा है ना, वो उस पर आप तुरंत गौर करिए। आपको शायद लगे कि मैं बेकारी डॉक्टर के यहाँ आ गई,
2: नहीं,
3: बिल्कुल वो आप समय निकालिए,
2: भगवान करे कि आप जाएं और वो बेकार निकले
3: लेकिन उस चीज में लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं, उसमें आलस से बिल्कुल ना करें।
2: हाँ।
3: तो ये तो अपने शरीर के साथ दोस्ती हमको बनाए रखनी पड़ेगी और बहुत चौकन्ना रह कर बनानी होगी।
2: हाँ।
3: तो इस चौकन्ने वाले उसको ब्रेक करते हैं एक मीठे से गीत से, कुछ झमाझम हो जाए।
2: हाँ।

0: भाई इतने अच्छे से झमाझम गीत के बाद स्त्रियों का कार्यक्रम है, गाना हो गया, बिना और खाने के बाद कैसे बनेगी?
1: खाना और गाना और गरबा नाइट
0: कार्यक्रम में
1: जितनी तैयारी हमारी पूजा की होती है, सारे हमें विधि विधान करने होते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, उतनी ही तैयारी हमारी साज सजावट की, गरबा की।
0: भाई अभी हमने देवी के नौ रूपों की चर्चा की, कुछ कुछ रूप विविधताएं तो स्त्रियों में रहेंगी ना?
1: बिल्कुल। और जब नौ दिन व्रत रखना है और नहीं भी नौ दिन रखना है तो पहला अष्टमी तो सब लोग रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक विषय ये भी होता है कि क्या बनेगा फलाहारी, है ना,
0: यूनिवर्सल प्रश्न।
1: हाँ, क्योंकि भाई हम महिलाएं हैं, हम हर चीज में स्वाद का तड़का दे ही देते हैं। आपका व्रत ही क्यों ना हो, खाने में कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो भाई हम भी दो तीन रेसिपीज ले आए हैं जो हमने अपने घर में ट्राई करी थी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो आपको आज मैं आप ही की बताई रेसिपी का इंतजार कर रही हूँ।
1: बिल्कुल,
0: आज तरु दीदी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली।
1: और पता है इस बार सबसे बड़ी चालाकी मैंने क्या की है?
0: क्या?
1: ऐसी रेसिपीज बनानी है जो बच्चों को भी पसंद आ जाए, वो जान भी नहीं पाएंगे।
0: कितनी हमारी जो श्रोता सखी है जिनके पास छोटे बच्चे होंगे उनके लिए तो बहुत यूजफुल है ये,
1: क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, व्रत वालों के लिए अलग बनाओ, अपने लिए अलग बनाओ, बच्चों के लिए अलग बनाओ, तो ऐसा बनाओ ना जो यूनिवर्सल हो,
0: सब पूरा परिवार एंजॉय करे।
1: तो सबसे पहले हम बताते हैं नगेट्स, बच्चों को नगेट्स बहुत पसंद होते हैं ना।
0: अच्छा,
1: तो व्रत में हम बनाएंगे साबूदाने और पनीर के नगेट्स।
0: अरे वाह, नाम ही बिल्कुल नया सा है, बताइए।
1: इसके लिए आप एक कप साबूदाना ले लीजिए, मतलब मैं एक रेशियो बता रही हूँ, आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। एक कप अगर आपने साबूदाना लिया है तो 100 ग्राम पनीर, 3-4 आलू, हरी मिर्च, सेंधा नमक, भुना जीरा।
0: रुकिए एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। एक कप साबूदाना अगर लिया है तो 100 ग्राम पनीर ले लें, 3-4 आलू ले लें, कच्चे आलू, है ना, हरी मिर्च, सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा।
1: पहले तो कच्चे ही लेने हैं आलू, फिर उनको बॉईल करना है। तो आपको करना क्या है, साबूदाना आपको रात भर भिगो देना है, आलू को उबाल लेना है, उसके बाद साबूदाने को हम पानी से निकाल लेंगे छन्नी में, फिर उसको एक प्लेट में डालेंगे, उसमें ये पनीर और बॉइल्ड आलू हम ग्रेट करके डालेंगे, और फिर उसके बाद अपने स्वाद के अनुसार हरा मिर्च, सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा डाल देंगे। काली मिर्च पसंद है तो आप काली मिर्च डाल सकते हो। फिर इसको आप अच्छे से इवनली मैश कर लो, फिर आप इनको नगेट्स का शेप दे दो और आप इनको डीप फ्राई कर लो। डीप फ्राई करने के लिए आप घी का भी यूज कर सकते हो और आप मूंगफली के तेल का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मूंगफली व्रत में खाई जाती है तो उसका तेल चल सकता है, है ना। और बस आप इन नगेट्स को सर्व करिए, और सर्व करने के लिए चटनी भी मैं बता देती हूँ। चटनी देखो, हरा धनिया, हरा मिर्च, पिसा भुना जीरा, सेंधा नमक और ऊपर से नींबू का रस।
0: वाह,
1: सेम चीज से
0: आप आपके साथ घर
1: दो तरह की चटनी बना सकते हो। एक तो आप टमाटर भी डाल सकते हो।
0: दीदी भी खुश हो रही है, चलो।
1: बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, सब लोग आ गए, आज मैं व्रत का खाना बनाती हूँ, है ना।
0: देखिए आपने कहा ना बच्चों के लिए, तो मुझे भी एक चीज याद आ रही है, सोचिए बताई दे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल,
0: ये भी एक होशियारी है कि लोग नाम भले ही बच्चों का ले, हाथ सब साफ करते हैं।
1: बिल्कुल, तो बताओ अपनी रेसिपी।
0: तो देखिए भाई, ऐसा व्रत वाला हम लोग भी एक डिश बताते हैं जिससे बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। तो ये है कुट्टू के आटे की और आलू की फ्रेंच फ्राई।
1: वाह, फ्रेंच फ्राइज तो बच्चों की फेवरेट होती है
0: ना। तो इसमें भी बस आपको क्या करना है, कच्चे आलू लेके वही लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज के आकार में काट लीजिए, अच्छे से उसको धो लीजिए और एक छन्नी में रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। बहुत ज्यादा इसको सुखाने के चक्कर में नहीं रहना, बस थोड़ा सा पानी इसका एक्स्ट्रा निकल जाए। अब आपको ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बस कुट्टू का आटा लीजिए और ऊपर ही इसके ऊपर ऊपर से छिड़क दीजिए, मतलब इतना कि ये थोड़ा कवर जैसा हो जाए, और उसी में ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स भी आप अगर आपके यहाँ खाते हैं व्रत के दौरान तो वो छिड़क दीजिए, इससे सुंदर भी दिखता है और कैची थोड़ा लगता है, खाने का मन करता है। फिर इनको अच्छी तरह दोनों हाथों से मिला लीजिए, बहुत हल्के हल्के हाथों से मिला लीजिए और 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि वो जो आलू में जो वो मॉइस्ट थोड़ा सा बचा हुआ था पानी का, तो वो पूरा आटा उसमें सेट हो जाएगा कुट्टू का, और नमक वगैरह सब उसमें लग जाएगा। सारी चीजें जब अच्छी तरह सेट हो जाएंगी, उसमें चिपक जाएंगी, तो बस उसको घी या जैसा आपने बताया मूंगफली के तेल में डीप फ्राई कर लीजिए और भक्ति के साथ साथ स्वाद को भी बरकरार रखिए।
1: इस बार बच्चे बहुत बुद्धू बनने वाले हैं।

0: खुश हो जाएंगे.
1: बिल्कुल. और तीसरी चीज अब मीठी भी हो जाए, है ना. दो नमकीन बता दिया हम लोगों ने, और ये है साबुदाना पुडिंग. बस आप साबुदाना मत बताना, बोलना पुडिंग बनाई है. फिर देखना सब कैसे चटपट खत्म करते हैं. इसके लिए आप ले लीजिए आधा कप छोटे वाले साबुदाने, एक लीटर दूध, और अगर आप फ्रूट्स की पुडिंग बनाना चाहते हैं तो मनपसंद फ्रूट्स ले लीजिए. ड्राई फ्रूट्स की बनाना चाहते हैं तो मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है. इसके अलावा आप दो फ्लेवर्स में बना सकते हैं. अगर आप इलायची फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर ले लीजिए, और अदरवाइज अगर आप केसर के फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो 10-12-15 स्ट्रैंड्स आप केसर के ले लीजिए. और चीनी स्वाद अनुसार, जिसको तेज चीनी पसंद है वो तेज बना सकता है, जिसको हल्की चीनी पसंद है वो हल्की बना सकता है. करना क्या है, केसर को 2 चम्मच गर्म दूध में भिगो कर रख दें. साबुदाने को रात भर हमें पहले से भिगो के रखना है, और जो हमारे फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं उनको हमें छोटा छोटा काट लेना है, या चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं. ठीक. अब आप साबुदाने को धोकर पानी निकाल कर दूध में बहुत हल्का गाढ़ा होने तक पकाएं. अच्छा, इसीलिए हमने छोटे साबुदाने लिए हैं क्योंकि वो रात भर भीगने के बाद ना ऑलरेडी वो पूरे मैशी हो जाते हैं. ज़्यादा उनको पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि जो साबुदाना है ये बनने के बाद ना बहुत गाढ़ा होता है और एकदम सेट सा हो जाता है, तो वो पुडिंग के टेक्सचर में नहीं आएगा. तो बहुत हल्का ही उसको करें, जब हल्का सा गाढ़ा हो तभी बंद कर दें, ताकि ठंडा होने के बाद जब वो गाढ़ा होगा तो वो बिल्कुल सही टेक्सचर में आ जाएगा. जैसे ही वो हल्का गाढ़ा हो गया, उसमें हमने चीनी और केसर या इलायची जो आपको पसंद हो आप वो डाल दें,
0: सब गैस बंद होने के बाद.
1: फिर उसको आराम से ठंडा करने के लिए रख दें. जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, हल्का ठंडा, मतलब जैसे फ्रिज में है तो हल्का ठंडा हो जाए, तब आप उसमें फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स मिला दें. दोबारा उसे फ्रिज में रख दें, जब वो मस्त चिल हो जाए तब सर्व करें.
0: वाह वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई आज तनु जी ने. ये देखिए, ये होता है शक्ति, मतलब नारी के विविध स्वरूपों की महिमा.
1: और अब एक अच्छा सा गाना भी सुन लिया जाए.
0: हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं.
1: चलो सुनते हैं.

0: वाह, गीत तो बहुत ही सुंदर था। और कंचन देखो, हम आज नवरात्रि के अवसर पर अपने बहनों से मुखातिब हैं। जगत में शक्ति के बिना कोई काम सफल नहीं होता है। ये शक्ति आंतरिक रूप से जितनी प्रबल होती है, जीवन पथ पर आपकी यात्रा उतनी ही सफल होती है, है ना। और जगत जननी माँ दुर्गा, एक तो वो माँ है, दूसरा शक्ति को धारण करने वाली है। इनकी भक्ति से 9 दिनों में भक्त अपने अंदर एक पवित्र ऊर्जा का अनुभव करता है और अपने आत्मबल की शक्ति से जीवन में सफलता पाता है।
1: बिल्कुल, तो आइए फिर आह्वान करते हैं शक्तिपुंज का और उनसे प्रार्थना करते हैं सबके कल्याण की। सर्व मंगल मांगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
0: नमोस्तुते।
1: इसके साथ ही हम भी अपने कार्यक्रम से अपनी विदा लेते हैं, अपनी बहनों से। फिर आएंगे अगले अंक में नए नए विषयों के साथ। तब तक के लिए
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम

0: शामिल हैं। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले तीन डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्ध पोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: Our Constitution has made expensive promises.
4: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
5: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी

0: गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
1: स्मैच द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोयजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैच द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोयजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
2: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
4: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सके और जीत सके। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
3: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहाँ आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और

0: और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि माँ ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए NCERT की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और

बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरोन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर
या हमारे ईमेल पर यानी

0: audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
2: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है।
3: बहुत अच्छा।
0: तो बच्चों कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
3: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है। असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
1: बहुत मजा आएगा।
3: हाँ, बहुत मजा आएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
1: हम अनेक

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय, आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी, आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।

0: हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए छक्के।
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की।

0: उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
1: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के दो प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
0: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: साथियों, आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
3: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है।
4: वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
2: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
3: बिल्कुल ठीक रहेगा संजय भाई।
2: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
3: ठीक है,
2: फिर हमें मिशन शुरू करना है।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल ले। पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।

0: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
1: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
0: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
2: आगे बढ़ो, जवाब दो,
0: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
3: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
4: बिल्कुल ठीक,
3: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
1: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
3: कार्बाइन खाली हो गई है।
5: क्या करूंगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
3: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
1: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
0: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
3: दुर्गा माता जय।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
1: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
3: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं घायल। और कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। हमने साथियों, इनमें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो, मारो।

0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
1: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
2: आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ चलते हैं। मरहम पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
1: आओ भाई जी,
3: नहीं मानसिंह,
1: आओ तो सही।
3: मेरी चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
2: लेकिन जी, लेकिन
3: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
2: अरे
3: आप, तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
1: आप सुनो,
3: छुपा हुआ ना,
1: आप
3: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो।
1: लेकिन
3: चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
1: अरे जाओ,
2: आप
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
1: संजय भाई, इधर आओ।
3: क्या जगह था?
1: संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
4: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स के साथ साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: बच्चों कैसे हो आप सब? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपने ध्यान दिया कि आजकल जब आप सुबह सुबह उठते हो, स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हो, तो थोड़ी थोड़ी सी ठंडी लगती है ना, उठने का मन नहीं करता, फिर मम्मी जबरदस्ती उठाती है, है ना?
0: ये तो दीदी आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है बच्चों की। और सुनिए, लेकिन एक बात है दीदी, ये मौसम बदल जरूर रहा है, पर ये मौसम ना बदलाव के साथ साथ कुछ अच्छा अच्छा भी ला रहा है। अच्छा अच्छा मतलब समझी?
1: नहीं बताओ।
0: चलिए आप गैस करिए।
1: अभी क्या चेंज हो रहा है? हाँ, बहुत दिन बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ आ रहे हैं ना।
0: बिल्कुल सही, रौनक से भरपूर त्योहार होंगे, स्वाद से भरपूर पकवान होंगे, और सबसे बढ़कर स्कूल से होगी छुट्टी और मस्ती शुरू। क्यों बच्चों?
1: और दीदी मुझे तो लगता है कि ये जो त्योहारों की कड़ी शुरू हो रही है ना, ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट त्योहारों में से हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जैसे दशहरा।
0: हाँ हाँ,
1: दशहरे में तो मेले लगते हैं,
0: और क्या,
1: है ना?
0: और
1: बच्चे घूमने जाते हैं, रामलीला देखते हैं, झांकी, और उनका मन पसंद कितना कुछ खरीदने को और खाने को मिलता है ना,
0: जबकि छोटी छोटी चीजें, कितनी प्यारी प्यारी चीजें। अच्छा, हम और आप भी बड़े लोग भी चले जाए तो हमारा भी मन ललचने लगता है ना।
1: बिल्कुल,
0: वो छोटी छोटी बाल्टी, छोटी सी चारपाई कितनी प्यारी लगती है।
1: हाँ, और बहुत सारे बच्चे सब सामान घर ला के फिर मिल के खूब खेलते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो पता है दीदी, जैसे अपनी कॉलोनी में या आसपास ग्रुप बना के रामलीला भी करते हैं।
0: हाँ, ये है तो दीदी बहुत अच्छी बात है। और देखिए इस वक्त कई अलग अलग जगहों पे जो दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं,
1: हाँ,
0: और साथ ही होती रहती है कहीं ना कहीं तैयारी रामलीला की भी, बल्कि चल रही होती है रामलीला।

0: हम लोग को बच्चों से ये जरूर कहना चाहिए कि वो रामलीला में जाएं, वहां देखें, और अगर जैसा आपने कहा ना मोहल्ले में बच्चे अपने भी रामलीला करते हैं, वो काम उन्हें जरूर करना चाहिए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए।
1: हाँ, ये बच्चों हम लोग दीदी लोग आपसे ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रामलीला है ना वो रामायण का चित्रण करती है, और रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, मम्मी पापा से सुना होगा, श्री राम भगवान, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, और भी बहुत सारे, दिस 10 सिर वाला रावण जिसको जलाया जाता है दशहरे के दिन, है ना,
0: वो भी है,
1: वो भी, तो ये सारे ना बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आप वहाँ जाओगे देखोगे तो कुछ कुछ तो समझ में आएगा, और जो नहीं समझ में आए उसको घर में आके मम्मी पापा से, भैया दीदी से, और जो भी आपके घर के बड़े हैं उनसे पूछना, और फिर देखना आपको कितनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने को मिलेंगी, बहुत मजा आएगा।
0: और दीदी ये भी तो है कि जब बच्चे खुद इसमें इंटरेस्ट लेंगे, कभी कभी अगर वो उनको मौका मिले वो भाग भी लें अपने स्कूल में या अपने अपने ही आपस में, तो उनकी नॉलेज कितनी बढ़ जाएगी।
1: हाँ,
0: है ना, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों हम लोग अपने जो ये हमारी कथाएं हैं, जो हमारे ग्रंथ में लिखी हुई चीज़ें हैं, जैसे रामायण में भगवान राम की क्या उनकी आदतें थी, वो कैसे रहते थे, कैसा व्यवहार करते थे,
1: हाँ, क्यों वो इतने महान बने, हाँ, किन चीजों को उन्होंने अपनी लाइफ में
0: फॉलो किया, झेल कर उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, हम सब भी तो वैसा ही बनना चाहते हैं ना,
1: बिल्कुल,
0: तो आप लोग उनसे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, कितने बहादुर थे वो, है ना।
1: और कंचन दीदी देखिए, जो आजकल दुर्गा पूजा पंडाल भी लगते हैं ना, उसमें मैंने देखा है कि एक तरफ दुर्गा पूजा पंडाल होता है और एक तरफ उसी ग्राउंड में खाने पीने का सामान, झूले, दुकानें, वो सब लगी होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, उस कैंपस में घुसते ही मम्मी से, बड़े लोगों से कहेंगे आप लोग जाओ दर्शन करके आओ, हम लोग जा रहे इधर घूमने। ऐसा नहीं करना है, वहां पे भी आप जाके देखना, और शायद आप लोगों को पता ना हो कि जो देवी माँ होती है ना उनके भी कई रूप होते हैं, और उन सब के साथ भी कई कहानियां जुड़ी होती हैं। तो आप देखो वो कितनी सुंदर लगती हैं, काउंट करो उनके कितने हाथ होते हैं, उन्होंने हाथ में क्या क्या पकड़ा होता है,
0: और
1: है
0: वो
1: ना,
0: किस राक्षस को मार रही है, उसका नाम क्या है, क्यों मारा आखिर उसको,
1: हाँ,
0: है ना।
1: तो
0: ये देखो, ये जो लीलाएं, जो हम राम लीला या दुर्गा जी के पंडाल ये जाते हैं बच्चों, ये आप देख रहे होते हैं, और ये देखो ये टीवी से बाहर की दुनिया है, स्क्रीन से बाहर की दुनिया है, जो आप सामने देख रहे हैं वो आपका एक अलग अनुभव होगा, वो आपको अलग हमेशा याद रहेगा,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो आप उसको देखिए, उससे सीखने की कोशिश करिए, और बाद में जाके आप अपनी स्मार्टनेस भी दिखा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच कि देखो मुझे तो इतना आता है तुम्हें नहीं पता।
1: हाँ, और दीदी पता है बहुत सारे जो दुर्गा पूजा पंडाल्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे कॉम्पिटिशन भी रखे जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब कि जो दुर्गा पूजा सजाते हैं लोग, या जो संस्था या टीम या ग्रुप जो भी आप कह लो, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उस टीम का उस हिस्सा बन के देखो, आप उसकी तैयारियों में, उसके कामों में छोटा छोटा पार्टिसिपेट करके देखो, तब देखना आपको त्योहार का असली मजा आएगा।
0: और फिर रही बात खाने पीने की और खिलौने की, जब आप इतना पार्टिसिपेट करेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यूं ही मम्मी पापा खुश होके दिला देंगे।
1: बिल्कुल, और कंचन दीदी
0: भी नहीं करनी पड़ेगी।
1: अब हम लोग खुश होके क्या देने वाले हैं बच्चों को?
0: अब हम लोग खुश होके बच्चों को देंगे एक मजेदार सा गीत,
1: तो आओ सुनते हैं।

0: तो आया कुछ रामलीला वाला फील। हनुमान जी की तो ढेर सारी बातें हो गई है ना।
1: हाँ, और दीदी अब बात थोड़ी सी अपनी पृथ्वी की कर ली जाए।
0: हाँ,
1: जो हमने अभी शुरुआत में बात करी ना कि मौसम बदल रहा
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ।
1: देखो मौसम क्या है, हमारी जो अर्थ है वो जब रोटेट करती है तो हमारे जो मौसम है, दिन रात हैं, वो सब बदलते हैं। आपको पता होगा ना कि वो सन के अराउंड भी घूमती है और अपने एक्सिस में भी घूमती है ना। उसी के हिसाब से मौसम बदलते हैं। और मौसम यहाँ पे टिकते क्यों हैं? क्योंकि एक हवा की चादर हमारी अर्थ के चारों तरफ
0: घेरे रहती है,
1: घेरे रहती है। जैसे सन से जो हीट आई उसको उस चादर ने अपने अंदर छुपा लिया। जैसे हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो उसके अंदर गर्मी छुप जाती है ना।
0: बिल्कुल उसी तरह। लेकिन दीदी हमारे बच्चों ने भी गौर किया होगा, इस बार या इधर बीच मौसम का मिजाज कुछ बदला सा है ना। ठंड अब शायद इस बार जल्दी पड़े। देखिए बारिश इस बार कितनी लंबी होती रही, काफी दिन तक होती रही, और बच्चों पता है शायद आगे भी होने की संभावना है। और गर्मी भी अभी तक है ही, गर्मी का भी सीजन थोड़ा सा और स्ट्रेच हो गया, बढ़ गया है।
1: ये सारी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं?
0: क्यों हो रही हैं भाई बताओ?
1: क्योंकि जो हमारी गैसेस हैं वो जिस प्रोपोर्शन में हमारे एनवायरनमेंट में होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो रहा है।
0: हाँ।
1: तो उससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कि जो गर्मी धरती तक

0: पहुंची वो यहीं पे कैप्चर हो गई, यहां से वापस नहीं जा
1: वापस
0: पाई।
1: पलट के जा नहीं पाई।
0: उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, हम लोग, और उसके लिए हमें करना क्या होगा?
1: क्या भी कुछ तो जरूर करना होगा ताकि
0: प्लांट्स
1: हम
0: लगाने
1: इस प्रॉब्लम से
0: होंगे।
1: बाहर आए।
0: हाँ, प्लांट्स लगाने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कम यूज करने होंगे, अगर थोड़ा बहुत आसपास जाना है तो गाड़ी से ना चल के हम पैदल चलें।
1: हाँ
0: जो चीजें समय के साथ गल के खत्म नहीं होती हैं, जैसे पॉलिथिन होती है,
1: हाँ जैसे टॉफी के
0: टॉफी
1: छिलके,
0: के छिलके होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: उनको हम लोग इधर उधर ना फेंकें क्योंकि मिट्टी में वो खत्म नहीं होता, है ना?
1: लेकिन दीदी समय तो खत्म हो रहा है ना? तो चलिए अब अपने नन्हे मुन्नों से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे इनसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो
0: बच्चों से
1: बच्चों
0: कहते हैं
1: जय।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में युवाणी कार्यक्रम।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से युवाणी कार्यक्रम।

नमस्कार, आदाब और एक बेहद खूबसूरत शाम का सलाम आप सभी को। कहते हैं हर शाम अपने साथ एक अलग मिजाज लेकर आती है। किसी के लिए ये दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून के कुछ पल हैं, तो किसी के लिए दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियों और ढेर सारी गपशप का वक्त। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी अपनी किताबों, ऑफिस के काम या फिर घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों में व्यस्त होंगे। तो आप इस वक्त चाहे जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, बस अपनी शाम के कुछ पल हमारे नाम कर दीजिए, क्योंकि जनाब अच्छी शाम के लिए हमेशा किसी खास जगह या खास मौके की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक जानी पहचानी आवाज, कुछ दिलचस्प बातें और संगीत का थोड़ा सा साथ भी शाम को यादगार बनाने के लिए काफी होता है। और इसी बात पर एक सवाल आपसे भी, दिन भर में कितनी ही आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, लेकिन उनमें से कितनी ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के लिए हम खुद कुछ पल ठहरना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगले पल कुछ पल आप सिर्फ रेडियो सुने नहीं बल्कि इस महफिल का हिस्सा भी बने। तो चलिए शाम की इस मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ नए ख्यालों, कुछ दिलचस्प बातों और ढेर सारी अच्छी एनर्जी के साथ। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त संजय।

श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज से आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। तो मुस्कुराइए, अपनी शाम को थोड़ा और खुशनुमा बनाइए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये शाम है आपकी और ये साथ है हमारा। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हो, पूरी प्लानिंग की हो, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सब कुछ उसमें लगा दिया हो, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकला। अब ज़रा एक छोटी सी सिचुएशन पे गौर करिए कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो पिछले कई महीनों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। उसने अपना पूरा शेड्यूल उसी हिसाब से बनाया है, दोस्तों के साथ घूमना कम कर दिया है, अपने हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया है और हर दिन बस एक ही गोल सामने रखा है कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो तो बस कुछ मार्क्स से पीछे रह गया। अब ऐसे में उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद डिसअपॉइंटमेंट, शायद फ्रस्ट्रेशन, या फिर खुद से ही ढेर सारे सवाल। इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा क्यों हो गया? क्या मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई? क्या मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए? और दोस्तों, ये सिचुएशन सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। कभी किसी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल जाता है, कभी कोई बिजनेस प्लान उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता, तो कभी हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की होती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कई बार हमारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। एक छोटा सा फेलियर धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करने लगता है। हम अपनी एक असफल कोशिश को अपनी पूरी कैपेबिलिटी से जोड़ के देखने लगते हैं और फिर शुरू होता है वो सिलसिला जिसमें हम दूसरों से ज़्यादा खुद पर डाउट करने लगते हैं। ऊपर से आज के सोशल मीडिया के दौर में कंपैरिजन भी इतना सब कुछ ये और ज़्यादा आसान कर देता है हमारे डाउट को हमारे ऊपर हावी होने पर। किसी की नई जॉब की पोस्ट, किसी का कॉलेज सिलेक्शन, किसी की बड़ी अचीवमेंट या फिर किसी की परफेक्ट दिखने वाली लाइफस्टाइल स्क्रीन पर सब कुछ इतना अच्छा दिखाई देता है कि कई बार अपनी प्रोग्रेस भी हमें छोटी लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो क्या हमें उसके पीछे की पूरी जर्नी भी दिखाई देती है? उसके रिजेक्शंस, उसकी असफल कोशिशें, उसकी मेहनत और वो दिन जब शायद उसने भी खुद पर भरोसा कम किया होगा, उसका भरोसा खुद पे भी डगमगाया होगा, शायद नहीं देखते हम ये सब। हम अक्सर दूसरों की कहानी का सबसे अच्छा चैप्टर देखते हैं और उसकी तुलना अपनी कहानी के कुछ सबसे मुश्किल चैप्टर से करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? लेकिन क्या किसी एक एग्ज़ाम, एक इंटरव्यू या एक फेल्ड प्लान के बेसिस पर हम अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला कर सकते हैं? और अगर किसी कोशिश में हमें सफलता नहीं मिली तो क्या इसका मतलब ये है कि आगे कोशिश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों को फ़िलहाल हम यही छोड़ते हैं, क्योंकि इनके जवाब तलाशने के लिए हमारे पास एक बेहद खूबसूरत थॉट जो वर्षों पहले कहा गया था लेकिन आज की जनरेशन के लिए उतना ही रेलिवेंट है। लेकिन उस विचार तक पहुंचेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत और गीत के बाद बात करेंगे उस हौसले की जो मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हमें आगे बढ़ने की वजह देता है।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे उन सिचुएशंस की जब हमारी मेहनत और हमारी एक्सपेक्टेशंस के बीच एक बड़ा गैप आ जाता है, जब हमें लगता है कि हमने अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश की फिर भी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आ रही। और इसी से जुड़ा है आज की चर्चा का विषय, नर हो न निराश करो मन को। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति अपने भीतर एक बहुत ही गहरा संदेश समेटे हुए है। एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपनी उम्मीद और अपने प्रयासों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कभी दुखी ही नहीं होना चाहिए या फिर हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहना चाहिए। आखिर हम इंसान ही हैं, हमारी फीलिंग्स और हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब कोई चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो डिसअपॉइंटेड महसूस करना बिल्कुल नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन असली सवाल ये है कि हम उस डिसअपॉइंटमेंट से डील कैसे करते हैं। क्या हम अपनी एक फेलियर को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं या फिर उसे अपनी जर्नी का एक एक्सपीरियंस मानकर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकले हैं, रास्ता आपको पता है, पूरी प्लानिंग भी है, लेकिन अचानक रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है। अब आप क्या करेंगे? क्या वहीं रुककर अपनी पूरी जर्नी कैंसिल कर देंगे या फिर कोई अल्टरनेटिव रूट तलाशेंगे? दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कई बार हमें अपनी मंजिल बदलने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वहाँ तक पहुँचने का तरीका बदलना होता है। और यही बात हमें आज के कॉम्पिटिटिव दौर में समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हर तरफ सक्सेस की बातें होती रहती हैं, और कोई उम्र में कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है, कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो कोई अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच अगर हमारी अपनी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो तो हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन क्या हर किसी की लाइफ का टाइमलाइन एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी को अपनी मंजिल जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा समय लगता है, और किसी को रास्ते में कई बार अपनी डायरेक्शन भी बदलनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जर्नी कम इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, एक और बात, हम अक्सर कहते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अपने गोल्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता? किसी दिन हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो किसी दिन छोटी सी चीज़ भी मुश्किल लगने लगती है। ऐसे में काम आता है हमारा डिसिप्लिन, हमारा पेशेंस और अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर हमारी क्लैरिटी। क्योंकि अगर हम केवल अच्छे मूड या मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद कई ज़रूरी काम भी रुक जाएंगे और हो सकता है शुरू ही ना हो पाए।

इसलिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें। अगर आज आपने अपने गोल के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते हैं तो आधे घंटे निकाल लीजिए। अगर किसी काम में बार बार गलती हो रही है तो अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा काम करिए, और अगर कभी सचमुच थक जाइए तो खुद को थोड़ा रेस्ट देने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ब्रेक लेना और गिव अप कर देना दोनों एक ही बात नहीं होती। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति हमें केवल ऑप्टिमिस्टिक बनने की सीख नहीं देती है, बल्कि अपने कर्म और अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है, और शायद यही इसकी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें किसी चमत्कार का इंतज़ार करने के लिए नहीं कहती है, बल्कि अपनी परिस्थितियों में जो कुछ संभव है, जो कुछ पॉसिबल है, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहने का संदेश देती है। तो अगर आप भी इस समय किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, एक खराब दिन, एक असफल कोशिश या एक रिजेक्शन आपकी पूरी कहानी नहीं है। हो सकता है आज चीज़ें आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी सब कुछ वैसा ही रहेगा। अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, ज़रूरत पड़े तो मदद लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए और ख़ुद को आगे बढ़ने का एक और मौका दीजिए, क्योंकि सक्सेस की कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होती और ना ही उसे हासिल करने की कोई एक तय उम्र होती है।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आजकल जिम जाना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और फिटनेस गोल सेट करना यूथ की लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ जिम जाना ही फिट रहने के लिए काफ़ी है? हमारी डाइट, डेली रूटीन और बाकी हैबिट्स इसमें कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं? इन्हीं सवालों पर आधारित है हमारी आज की विशेष बातचीत, न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली। तो आइए सुनते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और व्यावसायिक जिम ट्रेनर महावीर प्रताप सिंह से अभिनव प्रज्ञा पांडे की ये बातचीत।
3: दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक बहुत ही अलहदा और बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम लेकर के। ज़रूरी इसलिए क्योंकि एक दौर बीत गया कोरोना का, वो जो दौर हमने बिताया और हमारी पीढ़ी के जो भी लोग हैं, जो भी युवा हैं, वो मुझे नहीं लगता कि जीवन भर भी कभी कोरोना का लगभग 1.5-2 साल का दौर था वो भूल पाएंगे। और वहीं से हमारे अंदर एक बार फिर से वो आदतें जन्म लेने लगीं जो कहीं ना कहीं हम विकास की इस दौड़ में और हमारी ये जो भाग दौड़ भरी जीवन शैली है उसमें हम भूल गए थे, और उसमें से एक थी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। और जब हम बात करते हैं यूथ की, तो यूथ के लिए जब एक्सरसाइज की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है जिम, और जिम के बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। क्या होती है सही जिमिंग, क्या होता है सही व्यायाम का, सही एक्सरसाइज करने का तरीका, क्या होता है सही पोषण, क्या होती हैं इससे जुड़ी हुई भ्रांतियां यानी कि मिथ्स, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है महावीर सिंह जी को, जो कि एक प्रोफेशनल कोच हैं, प्रोफेशनल जिमिंग कोच हैं और न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट भी हैं। महावीर सिंह जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: सभी को नमस्कार।
3: महावीर जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि मैंने भूमिका में बोला कि कोरोना के बाद से ये जो जिमिंग का कल्चर है या जो एक्सरसाइज के अलग अलग तरीके हैं ये कुछ ज़्यादा ही लोकप्रिय हो रहे हैं, या जिम की ओर जो रुझान है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए युवाओं में वो बढ़ा है?
4: जी बिल्कुल बढ़ा है। ऐसा होता है ना कि जब तक हमें किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या कमी है स्वास्थ्य को लेकर। जब अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं या फिर हमारे साथ कुछ होता है तभी हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास अपने आप को ठीक करने के लिए कि हाँ हमें अब दवा लेनी है, ठीक करनी है। इसी तरह कोविड था, कोविड ने कई लोगों को सीख भी दी कि हाँ हमारे लिए फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। रीज़न था कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो एक्सरसाइज करते थे या जो अपना थोड़ा प्रिकॉशंस रखते थे, जो हेल्थ जिनकी थोड़ा ठीक थी वो थोड़ा सरवाइव कर गए, और जो पहले से वीक थे, जिनकी हेल्थ थोड़ा वीक थी या फिर जिनके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी प्रॉब्लम थी पहले से, तो कोविड में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जनरली देखा जाए तो सिंपल वे में बोलें कि एक्सरसाइज हमेशा से इम्पॉर्टेंट थी। ये नहीं था कि कोविड आया तो उसके बाद से इम्पॉर्टेंट थी। हाँ, जब कोविड आया बॉडी के अंदर चेंजेस, जैसे कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई, जब वो रेस्ट पीरियड पर थे, उनका स्टैमिना, उनके मसल लॉस होना, तो क्योंकि जब हम किसी एक्टिविटी को करते रहते हैं, किसी मूवमेंट को करते रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी ब्लड फ्लो होता रहता है। जब हम बैठ जाते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जितने भी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जहाँ जहाँ हमारा ब्लड फ्लो सही से नहीं होता, तो फिर वहाँ पर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँच नहीं।

0: पाता है, तो इससे बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती। और कोविड में ऑलरेडी इतना वायरस हर जगह फैला था, पहले से वीक बॉडी है और उसमें ये सारी कमियां आ रही हैं। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जैसे कुछ लोग कोविड पे एक्सरसाइज कर रहे थे, जो घर पे एक्सरसाइज कर रहे थे, थोड़ा योगा कर रहे थे, वो ठीक थे, स्वस्थ थे, उनके बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा था और रिकवरी अच्छे से हो रही थी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है। और जो नहीं कर रहे थे वो इसके शिकंजे में ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारी बॉडी किसी एक्टिविटी को नहीं करती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कमियां आती है, डेफिशिएंसी आने लगती है चीज़ों की, क्योंकि हमारा हर जगह ना प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंचता है, जैसे कि कैल्शियम सही से नहीं पहुंच पाता। उसके बाद जब हम एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं तो हमारा जो भी हम न्यूट्रिएंट लेंगे वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं, पहली बात तो है ना ऑलमोस्ट। अब जैसे मान लीजिए हम प्रोटीन की बात करते हैं, अगर हमें प्रोटीन खाना है, प्रोटीन सब जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है ना, मसल्स बनाता है। बट अगर हमारी बॉडी एक्टिव है ही नहीं तो हम प्रोटीन खाएंगे भी तो वो हमारी बॉडी यूज़ करेगी ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, हम अपने हार्ट को प्रॉपर ट्रेन नहीं कर रहे हैं, कार्डियो नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी में प्रॉपर अपना ब्लड सर्कुलेशन थ्रू एक्सरसाइजेस नहीं करा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होगा नहीं, हम खाएंगे और वो वेस्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है कोविड से पहले भी इंपॉर्टेंट थी, कोविड के बाद इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि लोगों को लगा कि हाँ एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते तो वायरस से उतना ज़्यादा हम अफेक्ट ना होते। कई लोगों ने बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया जिनकी हेल्थ ऑलरेडी ख़राब थी, जिनकी हेल्थ अच्छी थी वो थोड़ा सर्वाइव कर गए, जी गए, या फिर उनको हुआ भी तो वो उस चीज़ को झेल गए। तो इसीलिए अब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जिम।
1: जब हम हेल्दी बॉडी की बात करते हैं, स्वस्थ शरीर की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या केवल एक्सरसाइज होती है या फिर संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस्ड फूड कहते हैं, वो भी होता है और नींद भी उसका एक हिस्सा होती है। अगर हम एक्सरसाइज की भी बात करें तो क्या केवल जिम जाना ही एक्सरसाइज है?
0: नहीं, एक्सरसाइज इन द सेंस हम अपना डेली वर्क कर रहे हैं। अब देखिए जनरली किसी भी बॉडी को अगर हम एकदम रेस्ट पे रखेंगे तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी तो उस बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। जनरली अगर हम एक गाड़ी भी खरीदते हैं और उसको हम रख देते हैं, चलाते नहीं हैं, बहुत समय के बाद उसमें चीज़ें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर जो है हमारा, हमारा जो हाथ पैर हर एक चीज़ है, हमें अपने ब्रेन से लेके अपने हर एक बॉडी पार्ट को मूवमेंट कराना इंपॉर्टेंट है। रही बात अगर जिम की आती है और न्यूट्रिशन की आती है और स्लीप की आती है, तो हम किसी एक को महत्व नहीं दे सकते, तीनों का महत्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तब भी हमें डेफिशिएंसी होगी, तो वो एक्सरसाइज हमें नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी ना कि पॉजिटिव। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, अपना प्रोटीन, कार्ब, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स को ध्यान रखते हुए, तब वो ज़्यादा बेटर है। और अगर हम ये दोनों भी कर रहे हैं, स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो हमारी रिकवरी हो नहीं रही है। तो हमारे लिए स्लीप, न्यूट्रिशन और जिम, तीनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किस तीनों में से किसी एक चीज़ को महत्व दे रहे हैं, बाकी किसी को अगर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेंगी।
1: जो लोग जिम करते हैं और जो लोग जिम नहीं करते हैं, तो क्या जिम करने वालों को प्रोटीन की ज़रूरत जिम ना करने वालों से कुछ ज़्यादा होती है? और अगर होती है तो क्या जो आजकल हम मार्केट में देखते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, उनको ऐसे ही ले लेना ठीक है?
0: नहीं, देखिए जो जिम करता है और जो जिम नहीं करता, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है। अभी अगर जो जिम करता है उसका गोल होता है ना कि हमें मसल बिल्डिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग में हमारा मसल्स ब्रेक होता है तो हमें उसको वापस से रिपेयर करने के लिए और पहले से स्ट्रांग करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन हमें ऐसा लीन सोर्सेज जो होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि हम एग खा सकते हैं
1: हाँ, यही मैं
0: अगर,
1: पूछ रहा था कि हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है
0: हाँ बिल्कुल,
1: उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं इनटेक में जो हम शामिल करें तो हमारी
0: हम
1: प्रोटीन की
0: बताते
1: ज़रूरत? जी
0: देखिए क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट लेना ही है, सप्लीमेंट डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को पूरा कर पा रहे हैं या फूड से या
1: नहीं
0: नहीं।
1: कर पा रहे
0: अब जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है वेजिटेरियंस में,
1: जी।
0: है ना, दाल बहुत सारी हैं अपने इंडिया में जो कि हमें अच्छा खासा प्रोटीन देती हैं अगर हम उसे मिक्स करके खाएं। कोई भी दाल सिंगल कंप्लीट अमाइनो नहीं देती है अगर हम उसे मिक्स करके खाते हैं, सोया चंक्स हो गया और बहुत सारी बीन्स आती हैं, चिकपी हो गई, राजमा हो गया, तो हम लोग वेजिटेरियन सोर्स से भी पूरा कर सकते हैं जो वेज है, और नॉन वेज में से
1: सोयाबीन,
0: भी,
1: मूंग, मूंगफली
0: हाँ ये
1: जी।
0: सारे, मतलब मूंगफली हो गई, मतलब डिपेंड करता है कि हमें कितने अमाउंट में क्या प्रोटीन लेना, क्योंकि इसमें और भी न्यूट्रिशन होते हैं तो अलग अलग, किसी से फैट ज़्यादा है, किसी में
1: जी
0: प्रोटीन ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि हमें सप्लीमेंट ही लेना, अगर हम डाइट से पूरा कर रहे हैं, हम वेज खाते हैं, वेजिटेरियन सोर्स से पूरा कर ले रहे हैं, ओके, पनीर है, दूध है, ठीक है, और अगर हम नॉनवेज खाते हैं, चिकन है या फिश, इससे पूरा कर ले रहे हैं, तो हमें नीड नहीं है सप्लीमेंट की। अगर हम इन सब से पूरा नहीं कर पा रहे हैं या हम, हमें प्रॉब्लम है

0: कुछ फूड से प्रॉब्लम है या हमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, हम फूड नहीं खा सकते, तो फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे लिए बेटर होता है वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, वो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं, किसी फिटनेस एक्सपर्ट से हम उसे लेते हैं, तो फिर वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करता है।
1: क्या आप ये कह रहे हैं महावीर की जो वेजिटेरियंस हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, उनके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, लिमिटेड सोर्सेज हैं। अब इंडिया में थोड़ा सा कार्ब आता है तो हमें बस हर चीज़ का बैलेंस करना है। सोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं, सोया चंक्स हमारा हाई
1: कार्ब से आपका
0: प्रोटीन है,
1: मतलब कार्बोहाइड्रेट से?
0: हाँ,
1: जी
0: कार्बोहाइड्रेट। अब हमें अगर देखा जाए लीन सोर्सेज में, हम बताते हैं जो वेजिटेरियन में, हम सोया चंक्स यूज़ कर सकते हैं, हम मूंग की दाल जो होती है
1: स्प्राउट्स,
0: स्प्राउट्स, उसमें कंप्लीट अमाइनो होते हैं, हम वो खा सकते हैं, हम मिक्स दाल खा सकते हैं, राजमा को राइस के साथ खाएंगे तो कंप्लीट प्रोटीन, दाल को राइस के साथ खाएंगे तो कंप्लीट प्रोटीन, या फिर हम मिक्स करके दाल को खाएंगे तो भी कंप्लीट प्रोटीन। तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि सोर्स नहीं है, बस हमें थोड़ा सा देखना है अपनी रिक्वायरमेंट को और उस हिसाब से चीज़ों को चूज़ करके अपने डाइट में ऐड करना है।
1: महावीर, ऐसा नहीं है कि जो लोग जिम जाते हैं वो सिर्फ मसल बनाने के लिए या जिसको हम आम भाषा में बॉडी बनाना कहते हैं उसी के लिए जाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मोटापे से जूझ रहे हैं, वो अपना वज़न कम करने के लिए भी जिम जाते हैं। आजकल हम अभी खाने की बात कर रहे थे, डाइटिंग का भी बहुत चलन बढ़ा हुआ है, लोग बिना सोचे समझे अंधाधुंध डाइटिंग कर रहे हैं। ऐसे में वज़न घटाने के लिए खाना छोड़ करके बिना किसी गाइडेंस के डाइटिंग करना ठीक है?
0: नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इससे क्या होगा, अगर हम बहुत क्रैश डाइट करते हैं, अगर जैसे जनरली आजकल बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि वो कार्ब एकदम बंद कर देते हैं, फैट खाना बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोटीन वगैरह खाया, या फिर वो मील को स्किप कर देते हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारा गोल फैट लॉस करना है या मसल बिल्डिंग करना है तो हमें एक कैलकुलेटेड डाइट खानी होती है ना, जिससे हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, जो हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है TDEE, उसका रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। साथ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है हमारी, वो जो हमारे बॉडी स्टोर एज अ फैट स्टोर है एनर्जी, उससे बॉडी यूज़ करती है उसे। मतलब सिंपल वे में अगर बोलें, जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना वेट कम करना है और आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2000 है,
1: ये कैसे नापते हैं, ये किसका काम है? ये
0: ये
1: जिम ट्रेनर
0: सब
1: आपको
0: ये
1: बता
0: जिम
1: सकता
0: ट्रेनर
1: है?
0: बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएंगे कि आपका कैलोरी कितना है, आपको डेली कितना कैलोरी लेनी है, तो उसके हिसाब से उसमें कितना डेफिसिट करना है, लॉस करने के लिए कितना सरप्लस करना है, आपकी क्या क्या कंडीशंस हैं उसके हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हैं, बहुत लो कैलोरी डाइट करते हैं, अगर हमारी डाइट में कार्ब एकदम कम है, शुगर एकदम कम है, मतलब अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो पहली बात तो हमारा ब्रेन जो काम करता है, इसको चाहिए होती है एनर्जी, ये ग्लाइकोजन से काम करता है। जनरली हमें कार्ब प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कार्ब ही है। अगर हम कार्ब नहीं खाएंगे तो हमें सर दर्द होना, चक्कर आना, है ना, वोमिटिंग फील होना, तो हम कभी बेहोश भी हो सकते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। एक एक समय तक तो हमें वेट लॉस होगा, साथ में मसल भी लॉस हो जाएगा, हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो ये सही तरीका नहीं है। वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए हमें एक अच्छी डेफिसिट डाइट, जो कि हमारे गोल के हिसाब से रिकमेंडेड हो, कि हम बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं कर रहे हैं कैलोरी को, है ना, बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट नहीं कर रहे कि एकदम कम खा रहे हैं, जो कि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे बॉडी पे, जिससे हम हमें प्रॉब्लम आ जाए, हम एक्सरसाइज कर भी ना पाएँ, बेहोश हो जाएँ, या हमें कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा नहीं करना। या फिर अगर हम गेन करने जा रहे हैं मसल्स, है ना, तो हम बहुत ज़्यादा कैलोरी या बहुत ज़्यादा शुगर ना खाएं, जिससे हमें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम हो, हॉर्मोनल से शुगर भी हो सकता है।
1: ये एक प्रश्न और आता है महावीर यहाँ पर, कि आजकल हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, फूड सप्लीमेंट्स का और प्रोटीन पाउडर्स का एक पूरा बाजार है, कोई कैसे ये चूज़ करे? अब जैसे केवल मसल बनाने के लिए नहीं, प्रोटीन पाउडर ही नहीं, इवन आपको वज़न कम करने के लिए भी अलग अलग सप्लीमेंट्स या अलग अलग दवाइयाँ या कुछ भी आ रहे हैं जिन पे 100% सेफ़ या 100% नेचुरल इस तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं। क्या इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं, कोई भी ऐसे ले सकता है?
0: नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं ले सकता। हमें ये देखना होगा कि हमें नीड किस चीज़ की है, हमारा गोल क्या है। हमारा अगर प्राइमरी गोल है कि हम एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान है, मान लीजिए हम थोड़ा सा हमारा वजन गेन हो गया, हमें उसे कम करना है, तो हमें शॉर्टकट नहीं लेना, पहले जो हमारा नेचुरल तरीका है हम वो अपनाएंगे। शॉर्टकट इन द सेंस, बहुत सारे शॉर्टकट ऐसे भी होते हैं जो कि है ही नहीं इस चीज़ के लिए बने, वो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, वो सेफ़ है ही नहीं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो मार्केट में सप्लीमेंट आ गए हैं कि हाँ इसको खाने से फैट लॉस होता है, आप एक बात बताइए, जनरली हम अपनी डेली एनर्जी जितना हमें चाहिए, मान लीजिए हम अभी हमने आपको बताया कि हम 2000 कैलोरी हमारी नीड है डेली। हम 2000 कैलोरी डेली खा रहे हैं तो हमारा वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, उसके

0: पर अगर हम सप्लीमेंट ले रहे हैं वो हमारा फैट कम कर रहा है, तो वो कैसे बर्न कर रहा है हमारा, मतलब
1: जी
0: कैलोरी को एक्स्ट्रा कैसे बर्न कर रहा है जब हम बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्टेरॉइड्स है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दे रहा है, हमारी दिल की धड़कन भी बढ़ा सकता है। तो हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेटेड तरीके से करनी है, एकदम सिंपल नेचुरल वे में, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर हमारे गोल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या स्ट्रकिंग हो रही है, या तो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट हमें गाइड करेगा या फिर हम डॉक्टर से मिलकर सारी चीज़ें सेफली करेंगे, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हमें अपने से कोई भी चीज़ ऐसे लेबल देखकर या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देखकर नहीं खानी, क्योंकि कई सारे इंडिविजुअल हैं जिनको किसी की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, हार्मोनल डिजीज़ है, किसी को PCOD वगैरह है, तो वो हो सकता है कि उसे नेगेटिव इम्पैक्ट करे वो। तो इसीलिए बिना भी डॉक्टर के कंसल्ट करे, बिना हमें कोई भी ऐसे सप्लीमेंट वगैरह नहीं खाने हैं।
1: बहरहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, ये थी न्यूट्रिशनिस्ट और व्यावसायिक जिम ट्रेनर महावीर प्रताप सिंह से अभिनव प्रज्ञ पांडे की विशेष बातचीत। और ये इस बातचीत का पहला भाग था जिसका शीर्षक था न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली। इसका दूसरा भाग कल इसी प्रोग्राम में युवाड़ी में ही 5:15 से 6 आप सुन सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये बातचीत से न्यूट्रिशन, फिटनेस और हमारी रोज़मर्रा की आदतों के बीच संबंध को समझने में कुछ उपयोगी जानकारियाँ मिली होंगी। तो आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में प्रेरणापूर्ण सेगमेंट पर, मगर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: तो दोस्तों, आज के प्रेरणापुंज में हम जिस महान व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं वो थे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और समाज सुधारक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। और दोस्तों, हम प्रयागराज के लोगों के लिए उनका जीवन और भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि मालवीय जी का जन्म इसी ऐतिहासिक शहर में हुआ था। 25 दिसंबर 1861 को तत्कालीन इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में जन्मे मदन मोहन मालवीय जी की एक ऐसे परिवार से आते थे जहां भारतीय संस्कृति, संस्कृत साहित्य और धार्मिक अध्ययन का विशेष महत्व था। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ संस्कृत के विद्वान और भागवत कथा के ज्ञाता थे। ऐसे वातावरण में पले बड़े मालवीय जी का बचपन से ही अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर झुकाव रहा। उन्होंने इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त करी और आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल करी। लेकिन दोस्तों, उनकी पहचान केवल एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट के रूप में नहीं बनी। उनका जीवन की दिशा उस समय बदलने लगी जब उन्होंने देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को करीब से समझना शुरू कर दिया।

ये वो दौर था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। देश में शिक्षा के अवसर सीमित थे और भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही थी। सन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में मालवीय जी ने भाषण दिया। उनके विचारों और प्रभावशाली वक्तृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और आगे चलकर वो स्वतंत्रता आंदोलन और सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बने। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। लेकिन दोस्तों, उनके जीवन का एक बेहद दिलचस्प पहलू ये है कि वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही अपने विचारों को सीमित नहीं रखते थे। वो समझते थे कि किसी देश की वास्तविक प्रगति के लिए उनके नागरिकों का शिक्षित होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा केवल एक व्यक्ति का भविष्य नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। और इसी सोच से जुड़ा था उनका सबसे बड़ा सपना, एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना जहां आधुनिक विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा दोनों को समान महत्व दिया जाए। आज जब हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तस्वीर आती है। लेकिन ज़रा सोचिए, आज से एक सदी से भी अधिक समय पहले ब्रिटिश शासन के दौरान इनके इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। मालवीय जी चाहते थे कि भारतीय युवाओं को आधुनिक साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और दूसरे विषयों की उच्च शिक्षा मिले, साथ ही वो अपनी भाषा, संस्कृति, दर्शन और नैतिक मूल्यों से भी जुड़े रहें। उनके लिए एजुकेशन का मतलब केवल किताबों का ज्ञान या एक अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं था। वो ऐसे शिक्षा चाहते थे जो व्यक्ति के कैरेक्टर को विकसित करे और उसे समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए। लेकिन एक बड़ा विजन होना, उसे रियलिटी में बदलना, दोनों में फर्क होता है। विश्वविद्यालय बनाने के लिए बड़ी मात्रा में धन चाहिए था, भूमि चाहिए थी, सरकारी स्वीकृति चाहिए थी और सबसे बढ़कर लोगों को विश्वास और सहयोग चाहिए था। मालवीय जी ने इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं करी। उन्होंने राजाओं, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों और आम नागरिकों से संपर्क किया और अपने शैक्षिक अभियान के लिए आर्थिक सहायता जुटाई। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसी एक व्यक्ति का अकेला प्रयास नहीं था। डॉक्टर एनी बेसेंट सहित कई शिक्षाविदों और समाज सेविकाओं ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और दोस्तों, आखिरकार वर्षों की प्लानिंग, फंड रेजिंग और लगातार प्रयासों के बाद 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और सन 1916 में बनारस विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना हुई। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनके पीछे जो भी उन्होंने इतने ढेर सारे संघर्ष, वर्ष, बहुत ज़्यादा धैर्य, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टीम वर्क और लगातार मेहनत किया, ये साफ साफ उनके इस विचार में, उनके जीवन में दिखाई देती है हमें। और दोस्तों, एजुकेशन और पॉलिटिक्स तक ही इनका योगदान सीमित नहीं था, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। वो हिंदुस्तान अभ्युदय और अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर से भी जुड़े रहे। और गौर देने वाली बात यह है दोस्तों कि मालवीय जी ने पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और जनता से जुड़े विषयों को भी सामने लाने का काम किया। और 12 नवंबर 1946 में मालवीय जी का निधन हो गया, लेकिन शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान की विरासत आज भी जीवित है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापूर्ण सेगमेंट। और प्रोग्राम के एंड में जब हम Q&A सेशन लेके आते हैं तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किससे हुई थी। आप अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर और रिव्यू दे सकते हैं हमारी ईमेल ID yuvvaniald@gmail.com पर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलेंगे फिर आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे

से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे अगजनों का प्रोग्राम कहकशा। फिल्मी नगमे आप सुनेंगी रात्रि 8 बजे और 10 बजे।

पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर रामकृपाल यादव और साथी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा केबी पांडे से लोकभाषा कविता पाठ। इसी प्रोग्राम में हम आपको बातचीत भी सुनवाएंगे, जिसमें राकेश सिंह से रितेश शुक्ला की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा मेथी की व्यावसायिक खेती। शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में 10:30 पर पंडित प्रेम कुमार मलिक का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की, और कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं।

कल रात 9:30 पर गजनों का प्रोग्राम कहकशा प्रसारित होगा। सुबह 6:05 पर शामिल होइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। आराधना में इन दिनों आप सुन रहे हैं नवरात्रि पर विशेष आराधना का कार्यक्रम। कल हम आपको इस कार्यक्रम का तीसरा भाग सुनवाएंगे। विचार बिंदु में 6:30 पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह कृषि जगत कार्यक्रम सुबह 6:35 पर होगा। कल के इस कार्यक्रम में कोमल सिंह यादव से बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 6:45 पर हमारी प्रातःकालीन सभा में ही। कल इसमें डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता होगी। विषय होगा हृदय रोग के लक्षण और होम्योपैथिक निदान। सुगम संगीत के प्रसारण में सुबह 9:50 पर ज्योति आनंद और शाम 7:45 पर अर्चना दास के स्वर में भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ रोज की तरह 7:00 और फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं आप सुनते हैं रोज 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के हमारे प्रसारण में सुबह 7:30 पर अनोखे लाल का तबला वादन और दिन में 12:15 पर रात्रि 10:30 पर

सिद्धेश्वरी देवी का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। दिन में 12:30 पर आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण बहनें प्रतिमा मिश्रा के गाये लोकगीत के अलावा सुनेंगी बातचीत। नमस्कार प्रयागराज, ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम सुबह 8:45 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे विनीता तिवारी के गायन लोकगीत। इसके अलावा दिन में 2:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में सूर्य प्रकाश पटेल और साथी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवजन महावीर प्रताप सिंह से अभिनव प्रज्ञा पांडे की विशेष बातचीत का दूसरा भाग सुनेंगे, न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में राम सिंह पटेल और साथी के गाय लोकगीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा श्यामाचरण पांडे से रामायण पाठ भी हमारे किसान भाई सुन सकेंगे। किसान वाणी 6:50 पर यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको कुछ खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं दे रहे हैं। गोपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय रामजस सिंह, ग्राम बघोल हरिहरपुर थाना खीरी प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी किरण सिंह, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, कद 5'3", रंग गेहुआ है, ये दिनांक 30 अगस्त 2026 से ग्राम बघोल हरिहरपुर से लापता हो गई हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, गोपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय रामजस सिंह, ग्राम बघोल हरिहरपुर थाना खीरी प्रयागराज। एक अन्य सूचना, सुरेश चंद्र मौर्य भोपतपुर मोहम्मद जिया उत्तराव प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी प्रीति मौर्य, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 5'2", ये दिनांक 2 सितंबर 2026 से ग्राम भोपतपुर से लापता हो गई हैं। प्रीति मौर्य काले रंग का सलवार सूट पहने हुए हैं। इनके घटनास्थल के आसपास पड़ोस के गांव, बाजार और दूरदराज के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को प्रीति मौर्य के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, सुरेश चंद्र मौर्य पुत्र राजमणि मौर्य भोपतपुर मोहम्मद जिया उत्तराव प्रयागराज। और ये सूचना हमें मिली है अभयकांत उपाध्याय पुत्र श्री जयशंकर उपाध्याय विष्णापुरी कॉलोनी पूरा मुफ्ती प्रयागराज से। इनके संबंधी जयशंकर उपाध्याय, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, कद 5'8", ये दिनांक 10 दिसंबर 2022 से लापता हैं। इनके विषय में मुख्य बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है और इनके प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बरेली, लखनऊ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को जयशंकर उपाध्याय के

विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध हो वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, अभयकांत उपाध्याय पुत्र जयशंकर उपाध्याय, पता 1/2H/8A, लेन नंबर 8, विश्नापुरी कॉलोनी, पूरा मुफ्ती, प्रयागराज। पता आपको एक बार हम फिर बता दें, 1/2H/8A, लेन नंबर 8, विश्नापुरी कॉलोनी, पूरा मुफ्ती, प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। आपने इस वक्त ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी प्रयागराज आपकी सेवा में हमेशा प्रयत्नशील है, अपनी विविध रंगी कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में तत्पर है।

4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी प्रयागराज आपकी सेवा में हमेशा प्रयत्नशील है, अपनी विविध रंगी कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में तत्पर है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार। समाचारों की कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब हमारी ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।

0: पांचवा राम राम। हम कहे तो दुर्गा भैया,
1: हाँ दिनेश,
0: एक बात ही समझा भाई कि देखा दयु राजा बरसन और ठीक धाने का फसल भी ठीक ठाक हुआ, इधर बीचन मान लीजिए मौसम ठीक ठाक है, दिन में गर्मी रात में कुछ ठंडा रसा
1: हो, थोड़ा थोड़ा सा कहता कि
0: अब एक माँ एक बात समझा कि गांव गिराव में तो देखा ना सवेरे तो मारे को ओस पर रात, अब ये ऐसा दुर्दशा मौसम जोन बा ना, यहाँ में भैया बहुत ही सावधानी की जरूरत बा, पहली बात तो ये भाई कि देखा ये दुआरे मुहारे भी तू सोवे लाए ना, जहाँ सोए वहाँ छहर होए, चाहे पेड़ के छाया हो चाहे छप्पर के छाया हो,
1: बिल्कुल,
0: और कुछ न कुछ ओढ़े के
1: जरूर रहा है, काहे से ले रहा है समय मच्छर जनित जो
0: मच्छर भी जाल लागत थी असाधे में जो सभी भोरहिया में ना ऐसा सहलावन लागत है, और वही जो उन सहलावन हल्की हल्की ठंडी में ना वही से सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो जाता था, जब सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो गया तो पता लग कहन कहन की भाई तो उसो सीजन वाली बिरामी हो गई, तो हमें भाई अपन नुकसान खेती किसानी सब का होए, साथ में एक
1: कहा कि ओसे में न सोए,
0: ओसे में न सोए, ओसे से बचाव करें भैया,
1: ओसे से बचाव करें,
0: और साथ में देखा यह समय न तो नवरात्र का समय चलत हुए, देवी मैया का पूजा पाठ हर जगह हो, दर्शन वर्शन तमाम जगह पंडाल उंडाल लगे हैं, हम कहते यहूँ में पूजा पाठ में कोनो बुराई नहीं ना, जगह जगह रामलीला भी हो रहा है, लेकिन यहूँ में सावधानी की जरूरत बा कि कोनो ऐसी बात ना हो जाए कि लड़का के दिला साथे जाए उनके साथे हो या अपने साथे हो, ध्यान रखे के चाहिए,
1: जरूरी बात है
0: बिल्कुल। और भाई देखा किसान भैया ने कही है कि अब जोन बन पहले का रहा, पहले के खेती रही कि एक जोने खेते में धान हो तो फिर धान हो,
1: धान ही बोवा,
0: जोने खेते में गेहूँ बोआए तो फिर गेहूँ बोआए,
1: गेहूँ बोआए,
0: एक बस एक करे बाद खाली रहा है। अब का है भैया देखा धीरे धीरे आबादी बढ़ी, तमाम जगह जमीन घर द्वार बनवे में चला गया, कल कारखाना फैक्ट्री में चला गया, अब आबादी ज़्यादा हो गई और खेती वाली जमीन कम,
1: बिल्कुल जोत कम हो गई
0: आबादी ज़्यादा हो गई, अब हमें जरूरत है हम बात करवा ना कि कम खेत में ज़्यादा उपज पैदा हो, तेरे लिए फसल चक्र अपनावे के जरूरत बा
1: भाई, जब कम जोत भय तो भैया वैज्ञानिक तरीका अब

0: जोर पकड़े लाग कि भाई अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करी है तो ओके कई सारे लाभ भी हैं
1: बिल्कुल
0: भाई,
1: बिल्कुल।
0: चाहे वो माटी की संरचना हो, चाहे पर्यावरण के हो और चाहे पैदावार के हो। तो वैज्ञानिक तरीका में ये बा कि जगह जगह पे देखा है भैया बतावत है, अब जैसे फसल चक्रीकरण आई गए, सह फसली खेती आई गए, तो एक फसल चक्रीकरण के का लाभ बा, सह फसली खेती जब एका अपनावत हैं तो ओकर जोन फायदा बा समझ में आवत है।
1: जी
0: तो फसल चक्रीकरण में देखिए भैया यही बात ना कि जैसे आप कहें कि एक बार भाई धान के खेत बाद धान ही लागत बाट है, तो नहीं, अब भाई धान के जगह अब समय आ गया बा भाई अरहर लगा ली, गेहूं लगा ली, यानी फसल चक्र के मतलब फसल बदलत रहा है।
1: मैं देखा वहूँ में वैज्ञानिक भैया हरंग के सलाह जरूरी बा कि कौने फसल के बाद कौन फसल
0: कौन फसल
1: लेहल
0: ले के
1: से
0: बा।
1: माटी के ताकत बनी रहे और उपज पैदा बढ़िया होए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो यह हिसाब से भैया हरे अगर वैज्ञानिक विधि अपनाए के खेती किसानी करी निश्चित बा कि लाभ होए। हमार मन कहता है कुछ गीत गौन सुनो होता तो फिर बतलाई।
0: तो भाई आपको मन करता बा तो फिर राम कृपाल और संघातिन के एक ठो विकास गीत बा
1: सुनाओ सुनाओ।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ दुर्गा भैया, देखा भाई गीत गाऊ नहीं भाई, और साथे में संदेश भी भवा। हमार मन ही कहत रहा ना कि कुछ कविता पाठ करो तो तब फिर देखी।
2: तो भाई जब मन करत बाटे तो आज अपने लोक भाषा कविता पाठ में केवी पांडे, डॉक्टर केवी पांडे जी के एक कविता ही बा, आप सुने और पंच भैया भी सुने कि देखें का कहा था।
1: सुनाओ सुनाओ।

आई एक दिन अम्मा कई सुधी आई, अम्मा गंगा रोज नहाई, जियरा व्याकुल हुई।

महिमामित अपार बाना। 1975 में माई सती की नाही स्वर्ग सिधाई। 1975 में माई सती की नाही स्वर्ग सिधाई। उनकर चित्र बन

शीतल सुखद बयार बा, महिमा मित अपार बाना, उगते सूरज क सुन

ईस नवावा माई क दर्शन हम पावा, हाथ जोड़ी क शीस नवावा, देख ए आई कई महिमा जग उजियार बा, महिमा मित अपार बाना।

0: महिमामित अपार बाना, भैया ए आई क अलग एक संसार बा, महिमामित अपार बाना।
1: हाँ दुर्गा भैया, देखा भाई देखा, कविता तो पांडे जी बहुत बढ़िया सुनाए। और हमारे मन कहत रहा ना कि देखा जो पारंपरिक खेती हो तो होबे करत।
2: बिल्कुल भैया,
1: अगर किसान भैया अरे कुछ व्यवसायिक खेती करी है तो निश्चित बात उनका ज्यादा मुनाफा हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और खेती के साथे साथे अब जो व्यवसायिक खेती जो बात करता है ये ज्यादा मुनाफा देत बाटे और कम समय में ज्यादा फायदा देत बाटे। तो यही में भैया जौन दिन भैया मेथी भी एक व्यवसायिक खेती के रूप में पंच भैया रे करत हैं, तो ओका कैसे करें, का सावधानी बरतें कि जैसे अच्छी से अच्छी पैदावार हुई।

0: पे राकेश सिंह भैया बतावता है, रितेश शुक्ला बातचीत करे हैं, एक तो हूँ सुना पंच भैया भी
1: सुना दो सुना दो।
2: किसान भाई बहुत बहुत स्वागत बा आपका हमारे पचन का जो कार्यक्रम बांटे उमन। देखा भैया, अगर योजनाबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से कोनो खेती किसानी का काम किया जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाइयन के उसे लाभ मिला था भाई। हम सब तमाम तरह के खेती करी था, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल के उगाई था। अगर वो फसल के व्यावसायिक ढंग से उगावा जाए तो उमन अलग से एक फ़ायदा होता और एक अलग से व्यवसाय भाई निर्मित होता। तो भाई आज हमारे कार्यक्रम में राकेश सिंह भैया हैं जो कि मंधाता प्रतापगढ़ से आवा हैं। आज हम राकेश सिंह भैया से बात करब कि मेथी का व्यावसायिक खेती कैसे कीन जाए, एमन का सावधानी रखी जाए, कौन कौन से कृषि रक्षा कार्य एमन होथिन। तो राकेश सिंह भैया बहुत बहुत स्वागत बा आपका। राकेश भैया, पहला सवाल तो हमारा यही बात है कि जोन मेथी का खेती होता कौने मौसम में किसान भाई एका शुरू करें, एकर खेत का तैयारी कैसे की जाए, पहले आप एक बारे में बतावें किसान भाई इनके।
3: किसान भाई एक एक मुख्य समय अक्टूबर से नवंबर तक दोमट मिट्टी हो चाहे किसान भाई, या तो बलुई मिट्टी हो चाहे, पानी के जैसे अच्छी ढंग से निकास हो सके किसान भाई, ओकरे लिए सब तो उपयोग खेत मेथी के उभय होते।
2: अच्छा।
3: जौन की पानी के निकल जाए, दोमट मिट्टी हो या बलुई मिट्टी हो, किसान भाई अक्टूबर नवंबर एक सबसे मुख्य समय आ एक मेथी खेती करे जौन की आपको लाभ दे। तो एक मुख्य समय ही आ, एक मुख्य चीज रख रखाव आपको बीज कितना डाले का है, बीज 20 से 25 किलो आपके प्रति हेक्टेयर डाले का है, और ओकरे 20 से 25 दिन बाद आपके हल्का पानी दे का है। पानी देहे के बाद हल्का सा आपके खरपतवार में देख लें टहल के, अगर खरपतवार उसमें थोड़ा बहुत है तो ओके खातिर आप छिड़काव के दवा के इंतजाम करके ओका छिड़काव करवाई दें, और पानी निराई गुड़ाई के समय से ओका देखें। सबसे मुख्य चीज यह है, अगर आपके खेती बढ़िया से अगर हुई गए मेथी तो आपके मार्च अप्रैल में आपके तैयार हो जाता है।
2: अच्छा, अच्छा।
3: फसल ओकरे पहले किसान भाई मेथी के वैसो लोग कच्ची मेथी के जैसे पेड़ाओ का लेके पालक में साग आ वैसो साग के तौर पे बहुत फायदेमंद वैसो साग। एक देसी कहावत है अपने किसानन भैया, मेथी के साग खाव्या तो कमर कम पिराए।
2: अच्छा।
3: हाँ, ये भी कहा थे।
2: हाँ।
3: और सबसे मुख्य चीज तो मेथी तो जान ले कि आपके एक एक कस्तूरी मेथी कहा थे।
2: अच्छा।
3: अगर एक सही ढंग से किसान भाई पैदा कर ले तो आप ये समझे कि 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर एक पैदावार होते है। और एक आप थोड़ा सा रख रखाव देख रेख सही ढंग से कह दें तो ये जान लें कि आप एक भाव थोक भाव 15 रुपया रहे।
2: राकेश भैया, मतलब जैसे आप कहें कि अक्टूबर नवंबर में एकर खेती शुरू हो जाता भाई, एकर बीज पड़ जाता तो जोन अपन भाई धान हम सब लगाए है
3: जी,
2: एक काटे के बाद
3: हाँ,
2: तुरंत बाद ही हम सब मेथी के बीज डाल सकते
3: थे। डाल सका थे, एक दो बार जुताई हो तो हल्की जुताई हो और बढ़िया जोन है बलुई खेत है दोमट मिट्टी है हल्का से ओमे नमी हो और बढ़िया खेत बन जाता है। बहुत एक जुताई के और बहुत रख रखाव की आवश्यकता ना हो तो मेथी की खेती बहुत ही सरल और बहुत ही फायदेमंद खेती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राकेश भैया, जो नी मेथी का खेती होता जैसे और आपका ठंडी का जोन भाई सब्जी साग सब्जी लगावा जाता, तमाम तरह के ठंडी की वजह से पारा घटे की वजह से उमन नुकसान होता।
3: हाँ।
2: भाई जब ज्यादा आपके ओस पड़े लगा था या ज्यादा आपका पारा गिर जाता है
3: हाँ।
2: तो उमन आपके फसल को नुकसान होता
3: हाँ।
2: ओसे कैसे बचा जाए उमन?
3: एमें मेथी में कौनो नुकसान ना हो।
2: अच्छा, मेथी में नुकसान
3: नहीं होता। मेथी में कौनो प्रकार को नुकसान ना हो तो खाली आपको हमें खर पतवार अगर आए तो वह खर पतवार के आप छिड़काव करवा दे और इसमें कौनो रोग नहीं लागत मेथी।
2: अच्छा।
3: कोई प्रकार का रोग नहीं लगता।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो इसीलिए तो कहे कि वो का किसान भाई कच्ची ऊपर से जौन नहीं फली देत ओका पहले उचार उचार बाजार में ले जाए के घरे ले जाए के साग बनवावा थे। कबो कबो तो साग पालक में डाला थे ना ही मेथी निछाने के साग बनवाई।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हाँ।
2: अच्छा राकेश भैया, जब एकर बीज डाला जाए तो पहले कहा जाता है भाई विशेषज्ञ भैया कहते हैं कि बीज डालने से पहले बीजोपचार कर

0: लिया जाए।
1: हाँ
0: तो आप कैसे बीजोपचार करते थे और कहाँ से बीज लेके आवते थे?
1: देखें, बीज का जो सरकारी दुकान यहाँ है, या सरकारी दुकान आपके यहाँ मार्केट में नहीं है, तो जोन आपको दुकान जानी मानी जे बढ़िया बीज के धंधा करते उनसे आप बीज ले आवें, बीज को का अपने घरे ले आवें, भिगो दें, दूसरे दिन उनका बुआई कर दें, बीज चेक कर लें कि उनमें बीज सब सही है कि उनमें बीज मरा है, वैसे में घुन भी नहीं लगत।
0: अच्छा,
1: मेथी एक ऐसा फसल आता है कि
0: एकर
1: उनमें
0: महक के कारण
1: हाँ
0: हमें लगत
1: महक
0: बटे।
1: के कारण ये किसान भाई दवा में बहुत प्रयोग किए जात
0: अच्छा,
1: मेथी है।
0: मेथी के। हाँ
1: हाँ मेथिया के आयुर्वेदिक दवा में बहुत प्रयोग किए जात
0: अच्छा
1: है,
0: अच्छा मेथी
1: तो
0: दाना।
1: हाँ मेथी के दाना, अरे वैसो किसान भाई अगर बासी में फाक के और एक गिलास पानी पी लें तो नहीं गैस नहीं बनता है।
0: अच्छा हाँ,
1: हाँ यह वह है, मेथी साग बढ़िया हो तो मेथी बहुत उपयोगिता वाली चीज है। किसान भाई एक जरूर आप खेती करें, खेती करें और व्यवसायिक खेती करें,
0: अच्छा
1: एमए लागत आपके 8 से 10 हजार हेक्टेयर आवत है,
0: अच्छा 8 से 10 हजार हेक्टेयर।
1: हेक्टेयर एक है न्यूनतम आप 30 से 35 कुंटल आप एक पैदावार होते
0: बीघा।
1: बीघा,
0: अच्छा
1: और न्यूनतम थोक रेट एक 15 रुपया से कभी नीचे ना आवत,
0: हाँ, तब तो
1: तो
0: अच्छा फायदा दे के
1: हाँ अच्छा
0: जाए।
1: फायदा, और इसमें रोक डोक नहीं लागत। किसान भाई एक एक खेती करें और एक एक बाजार ले जाए बेचें, वैसो बेचें, एक एक फली बेचें।
0: अच्छा राकेश भैया, जैसे आपन प्रचन के बात होत बाटे और आप कहें कि भाई एमन एक महक टाइप का होता तो भाई रोग दोख नहीं लगता,
1: हाँ
0: कीड़ा मकोड़ा नहीं लगते न,
1: हाँ
0: तो हमें लगत बाटे कि अगर एमन अगर महक होए तो जो जानवर रहतीन ओहो नहीं खाते नहीं का।
1: नहीं जानवर कोनो नहीं खाते जानवर, ये छुट्टा जानवर खाई है,
0: अच्छा, छुट्टा
1: छुट्टा
0: जानवर
1: हाँ
0: कहीं है।
1: छुट्टा जानवर खाई है, जोन अपने यहाँ के गाय भैंसा हैं इनका तो आप बांध के चारा भैया खियावत है किसान भाई, तो इनका तो चारा आप भूसा या खली या दाना या एका सब देते हैं, लेकिन जोन मवेशी टहरा तहा जेका भूसा चारा दाना ना मिलता है,
0: नील गाय उल गाय बाकी
1: हाँ
0: जोन
1: तो
0: खुला छूट छूटा
1: खुल्ला
0: है
1: छुटा आहा वो तो पे अटैक बोल के ओका खाबे करते
0: ना
1: हैं।
0: खाही, तो कम से कम खराब तो कहीं
1: हाँ
0: देंगे।
1: खराब
0: तो
1: कर
0: एक
1: दे।
0: अगर चारों तरफ एक बाड़ लगाई दिन जाए तो भाई एक
1: हाँ
0: सुरक्षा की जा
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: बहुत अच्छी सुरक्षा हो सकत है, हम तो किसान भाई से यह कहा एका ज्यादा ज्यादा आप सब खेती करें, लोगन के का बतावें ये रोग रहिता, एक चीज एमें न कीड़ा लागे न मकोड़ा लागे, ये आयुर्वेदिक दवा से लेके किसान के वैसो मेथी खाते हैं। आप हमारे यहाँ देहातन में जब लड़का बच्चा पैदा होते हो जाते हैं जेकरे गर्भवती महिला के, तो गंगुआ में बना था सठौरा, तीही मेथिए के बनावा जात है।
0: पड़त
1: हाँ
0: है।
1: किसान भाई मेथिए के बनवावा थे उस सठौरा के रूप में दीन जात है।
0: अच्छा राकेश भैया, तो भाई भाई मेथी के तमाम तरह का भाई फायदा बाटे,
1: हाँ
0: मगर जोन हमार सवाल आपसे ही बाटे कि भाई मेथी के अगर हम सब लगाए है तो कितना सिंचाई की जरूरत पड़त है, कितना उमन खाद की जरूरत पड़त है, कितना कीटनाशक की जरूरत पड़त है, एक बारे में भैया किसान भाई इनके बताएं।
1: बहुत हल्की खाद की आवश्यकता पड़त किसान भाई, एक हेक्टेयर में आप जान लें एक है, अगर आप गोबर के खाद डालते हैं तो एक ट्रैक्टर के ट्राली से आपके एक ट्राली पर्याप्त है, अगर आप खाद डालते हैं उर्वरक तो एक है आप मान के चलें कि 1 किलो प्रति
0: बीघा।
1: हाँ बीघा
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से, और पानी तो एक बिल्कुल किसान भाई मामूली चाहे,
0: बस खाली
1: आप हल नमी बरकरार
0: नमी
1: रखे
0: बनी
1: बने
0: रहे बस।
1: वो 25 से 25 दिन के बीच खरपतवार आप देख लें अपने खेते में नहीं बा, तो हिसाब से आप जो ना है ओके सिंचाई कर दें, ना ही पहले खरपतवार के दवा डाल दें ओकरे बाद हल्की सिंचाई कर दें, और इसमें कोनो और आवश्यकता नहीं है, ये बिना लागत के खेती है किसान भाई
0: देखो
1: सबको।
0: राकेश भैया, कुल मिलाई के कहे के मतलब यही बना कि भाई लागत कम से कम कीन जाए और
1: हाँ
0: मुनाफा ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा जाए।
1: हाँ
0: तो जो निपात बताए ना आपकी, अगर मेथी के व्यवसायिक खेती कीन जाए
1: हाँ
0: तो भाई
1: किसान
0: किसान भाइयों के अच्छा लाभ हो
1: अच्छा
0: सकता।
1: लाभ होए और
0: बिल्कुल
1: बहुत फायदा होए, और सबसे मुख्य चीज तो यह है किसान भाई ये अपने घर में उपयोग करे वाली चीज है, जैसे हमहू खाई हम अपने आस पड़ोसों खियाई, रोग दोख मुक्त रही हैं लोग, निरोगित रही हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मेथी बहुत अच्छी फसल आता है।

0: राकेश भैया, कितना दिना में जो नेकर पौधा होता,
1: हाँ
0: अगर हम एकर मेथी का दाना ले चाहिए से,
1: हाँ
0: एक तो बात भाई कि भाई साग के, भाई साग एकर अगर ले लिया जाए, साग के बेचा जाए, वो से फायदा हो, मुनाफा
1: हाँ
0: हो उसे, अगर हम
1: हाँ
0: मेथी का दाना लिया चाहिए तो
1: हाँ
0: कितना दिना में एकर पेड़ तैयार हो जाता?
1: अब बहुत अच्छा प्रश्न आप भैया पूछा। जैसे अक्टूबर नवंबर में बोई जा,
0: हाँ
1: अक्टूबर से नवंबर ऐसे लेट आप मत करा,
0: अच्छा,
1: और उधर आप जाए के फरवरी मार्च अप्रैल, जैसे जैसे
0: जैसे गर्मी बढ़ाई शुरू होए।
1: हाँ जैसे जैसे आपको तो हल्की गर्मी पड़ती है, आप जैसे ओका मार्केट में हरी मेथी ले जा के बेचता है, जैसे
0: हाँ
1: लोग हरी धनिया ले जा के बेचता है, अगर उस बेचा चाहत हुआ तो ओका आप जो ना है
0: हमें
1: उसके
0: लगत
1: बाद
0: बाटे राकेश भैया, जैसे जब गेहूं की कटाई
1: बस
0: होता
1: बस
0: तब ही एकर कटाई
1: तब
0: होता।
1: एक कटाई होत है, और जब आपके एक पकाए के जैसे फली बेचे का है
0: अच्छा
1: तो आप जो ना है अप्रैल तक इंतजार करें, ना ही आप जनवरी से आप शुरू कर दें, बाजारा हाट ले जाए का आप बिठवा में, और फर्स्ट क्लास आपके अच्छा फायदा दे, और जो पेड़ बचा रहे वो फली दे, फली आप मंडी में ले
0: मंडी
1: जाए,
0: में बेचेंगे।
1: और एका बेचे बड़े आपके बिल्कुल सिफारिश की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से बिक जात, बहुत बढ़िया बिक जात है।
0: नहीं नहीं बढ़िया
1: हाँ
0: बाटे। चला राकेश भैया, चला चला, तो हम एक सवाल आपसे और पूछा जाब।
1: जी
0: जोन किसान भाई भाई मान लें कि मेथी की व्यवसायिक खेती करा चाहत हैं भाई,
1: हाँ
0: जोन किसान भाई अपन मन बनाए हैं,
1: हाँ
0: उनका आप कुछ संदेश देवा चाहें या कुछ विशेष चीज बतावा चाहें कि भाई मेथी की खेती जोन बा
1: हाँ
0: कैसे उनका अच्छी होए और कैसे
1: हाँ
0: उनका ज्यादा लाभ दे?
1: अच्छा किसान भाई, सबसे पहली चीज तो हमका खेत के चुनाव करे क्या है, खेत हमारे बलुआ दोमट मिट्टी हो चाहे, अगर आपके बढ़िया पैदावार ले के है तो दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो चाहे, और दूसरा चीज जहाँ पानी रुके कम, मतलब सिंचाई भय के बाद आपके पानी तुरंत निकल
0: निकल जाए।
1: जाए, सबसे मुख्य चीज दुई चीज के ध्यान दे क्या है किसान भाई, आपके बुआई करते समय ओके खर पतवार के सब समय देख के ओका अच्छे से जहाँ पानी की निकास रहा ओका पानी आप तुरंत
0: बिल्कुल
1: सिंचाई करके निकलवाए दें, ओकरे बाद आप देखें कि हमें खरपतवार हो तो ओके व्यवस्था कराए के, और हल्की फुल्की आप खाद भी बहुत कम लागत लागत
0: बिल्कुल
1: इज
0: बिल्कुल
1: खदिया बहुत कम लगती है ना इसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। राकेश सिंह
1: हाँ
0: भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आएन और आवे के बाद मेथी के व्यावसायिक खेती कैसे कीन जाए, इकरे बारे में किसान भाइयों से जो जानकारी साझा किए हैं, निश्चित तौर पर किसान भाई एका सुने हुए ही और भाई मेथी की व्यावसायिक खेती करी और ऐसे लाभ लें, आप आए इकरे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया,
1: तो
0: देखा
1: दिनेश भैया, ये रही मेथी के व्यावसायिक खेती, राकेश सिंह से रितेश शुक्ला भैया फरिया फरिया बतियाएं और बहुत बढ़िया बतवाएं कि कैसे मेथी की खेती कीन जाए
0: बिल्कुल
1: जिससे
0: बिल्कुल।
1: बढ़िया पैदावार हो और इसमें अच्छा पैसा कमावा जा
0: हाँ
1: सकत। तो भाई जैसा कि हम कह दें भैया, नवरात्र चलत बाटे, हम कही कि पंच भैया के एक देवी गीत सुनवाए
0: बिल्कुल
1: दिन जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो राम कृपाल यादव उनके संघातिन के एक देवी गीत बा,
0: सुना
1: तो
0: जाए
1: हम
0: सुना
1: सुना
0: जाए।
1: पंच भैया भी सुने।

0: हाँ दुर्गा भैया देखा गीत गौने हो गए हो श्री राम कृपाल जी का उनके संघाती का। अब एक बात ये होता ना भैया देखा हो सब कुछ अच्छा लगा तो दिवाली आवत ब नवरात्र ब दशहरा ब, लेकिन भाई जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि क्षेत्र में कचरा प्रबंधन साफ सफाई कई के कचरा कूड़ा कर एक जगह इकट्ठा कई के ओकर अगर उचित प्रबंधन करें तो निश्चित बात कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और समाज भी अच्छा रहे। अब पंचन से विदा लेके टाइम आएगा चलो विदा लीन जाए तो पंचों
1: राम राम, राम।

हमारे ग्रामीण भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संवेद स्वरों में एक देशभक्तिपूर्ण रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवित स्वरूमी, ये देशभक्ति पूर्ण रचना।
1: देश की मिट्टी प्यारी हमको, देश की मिट्टी प्यारी है, देश की मिट्टी प्यारी हमको, देश की मिट्टी।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: है मुआवजा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत जागरूकता रैली को किया रवाना। कई जिलों में कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा का दिया गया संदेश। 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 60 जनपदों में 2 पालियों में होगा इम्तहान। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित प्रदेश के 9,18,091 किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए कृषि निवेश अनुदान हस्तांतरित किए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने महज 8 से 10 दिन में किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया है। इस वर्ष बरसात के दौरान आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को करीब 1,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से कटान रोकने के लिए कार्य तत्काल शुरू करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अतिवृष्टि हुई है वहां 15 अक्टूबर से धान, ज्वार, बाजरा और मक्का के क्रय केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को फसल, मकान और पशुधन क्षति पर आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है।
1: अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण प्रदेश ने पिछले 1 सप्ताह पूर्व काफी बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारी जगह जन और पशु की भी हानि हुई है। आज डबल इंजन की सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को उनकी फसल क्षति, मकान क्षति, पशुधन की क्षति का ये आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मिशन शक्ति के छठे चरण के अंतर्गत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में महोबा, इटावा, श्रावस्ती, शामली में महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता का संदेश देने के लिए महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई। वहीं फतेहपुर में मिशन शक्ति अभियान फेज 6 के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में काफी संख्या में पुलिसकर्मी और विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: तो इस मार्च के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस प्रकार महिलाओं में शक्ति होती है, हर एक बच्ची में भी एक शक्ति होती है और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई जा रही है उसका भी लगातार अब प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, अवेयरनेस चलाई जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में कहा कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों और उनके परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में बेहतर कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।
1: शिक्षकों के हित के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए, हित के लिए जो अच्छा होगा सरकार उस प्रकार का कदम उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाएगी। हम आपके साथ में हैं, आपके हितों का संरक्षण करेंगे। जैसे हमने एक मुश्त पैसा दिया।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2026 की परीक्षा तिथि और आवंटित परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पेट 2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में संपन्न होगी। अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा जनपद की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि परीक्षा शहर की सूचना एडमिट कार्ड नहीं है। परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र अलग से वेबसाइट पर यथासमय जारी किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बारिश की आपदा से प्रभावित 9,18,000 किसानों के खातों में पहुंची 493 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन सरकार 8 से 10 दिन के भीतर दे रही

0: यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का यह प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ते देश के कदम की।
1: 21 दिसंबर 2021 को शुरू हुए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को स्वदेशी स्तर पर विकसित करना था, जिसमें निर्माण, पैकेजिंग, डिजाइन शामिल थे। इसके संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज की जरूरत मानते हुए कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है।
2: हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं।
1: गौतम बुद्ध नगर की उद्यमी खुशबू सिंह ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को बल मिला है।
3: स्थानीय स्तर पर चिप्स और उपकरणों का निर्माण होने से उद्यमी को महंगे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे सप्लाई चेन और भी तेज बनेगी।
1: सेमीकॉन इंडिया के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी के दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी के प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन के लिए काशी और आसपास के जिलों से भक्त पहुंच रहे हैं। जौनपुर स्थित शक्तिपीठ मां शीतला चौकिया धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बलरामपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन दर्शन पूजन के लिए लगी हुई है। पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालुओं का आना यहां जारी है। वहीं सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के 15 दिवसीय शारदीय नवरात्र मेले का शुभारंभ हो चुका है। यहां भक्तों की लंबी कतारें और माता के जयकारों से पूरा मंदिर क्षेत्र गूंज रहा है। एक रिपोर्ट।
4: आज नवरात्र के दूसरे दिन सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी में भारी भीड़ उमड़ी। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मेले में सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा CCTV कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा ने खरीदारों से निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही धनराशि जमा करने की अपील की है। प्राधिकरण ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित परियोजना के कलेक्शन अकाउंट का विवरण यूपी रेरा के आधिकारिक पोर्टल से अवश्य सत्यापित कर लें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर या प्रमोटर घर खरीदार से परियोजना के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि जमा करने के लिए कहता है तो खरीदार इसकी सूचना यूपी रेरा को दें। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बदायूं जिले में बिसौली थाना क्षेत्र में आज एक स्कूल की बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायल को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मेरठ में सरधना के दबथुआ क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश की आपदा से प्रभावित 9,18,000 किसानों के खातों में पहुंची 493 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन सरकार 8 से 10 दिन के भीतर दे रही है मुआवजा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में मिशन शक्ति के 6 चरण के तहत जागरूकता रैली को किया रवाना। कई जिलों में कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा का दिया गया संदेश। 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 60 जनपदों में 2 पालियों में होगा इम्तहान। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक बातचीत सुनवा रहे हैं जिसका विषय है स्वरोजगार एवं व्यापार। बातचीत कर रहे हैं चंद्रशेखर अरोरा और मोहन धनराज।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME, ये भारत की तस्वीर है और तकदीर भी है जो बदल देगा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और इसके अंतर्गत देश में छोटी छोटी वस्तुओं के उत्पादन के लिए खास तौर से बनाए गए इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित बहुत सारी योजनाएं इसमें चल रही हैं। लेकिन इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे श्रोताओं को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री चंद्रशेखर अरोरा साहब। आपका MSME में काम करने का 15 वर्षों का अनुभव रहा है और साथ में आप अकाउंटेंसी और स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के बहुत सारे काम करते रहे हैं। तो अरोरा साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। मैं जैसा कि चर्चा कर रहा था आपसे कि भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी MSME से, तो ये स्वरोजगार के माध्यम से बदलेगी, तो स्वरोजगार की आज आवश्यकता क्यों है?
2: धन्यवाद धनराज साहब। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी प्रयागराज का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। आपने सवाल किया स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देखेंगे सरकारी नौकरियों की स्थिति, जितनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं और जिसके कई गुना अनुपात में आवेदन हो रहे हैं। मुझे तो दुख तब होता है जब थोड़ी सी पोस्ट के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, उसमें से कई क्वालिफाइड होते हैं, वेल क्वालिफाइड, जो उस पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं है। तो सरकार खुद मानती है कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती
1: जी,
2: इसलिए स्वरोजगार की आवश्यकता पड़ी। प्राइवेट नौकरियों की स्थिति और भी ख़राब है, समय पे छुट्टियां नहीं मिलती, घर से बाहर रहना पड़ता है, काम के घंटे ज़्यादा होते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कोई इमरजेंसी पड़ गई परिवार में तो छुट्टी नहीं मिलती। इसके अलावा स्वरोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आप में स्वावलंबन की भावना जगेगी, जिसमें कि आपको अधिकतम लाभ होगा। एक नौकरीशुदा व्यक्ति, एक कर्मचारी अपने बच्चों को नौकरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता
1: जी,
2: लेकिन स्वरोजगार वाला व्यक्ति वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र कर सकता है।
1: ये बड़ी बात है।
2: इसके अलावा आपने सुना होगा एक स्लोगन चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, आत्मनिर्भर भारत। ये क्यों आया? ये इसीलिए आया कि आप में स्वावलंबन की भावना आए, एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, फिर एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, फिर एक समाज आत्मनिर्भर बनेगा, फिर देश आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आत्मनिर्भर बन जाएगा देश
1: जी,
2: तो ये भी एक परिप्रेक्ष्य है संदर्भ में। इसके अलावा रोजगार सृजन बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। सरकार उद्योगपतियों को इसलिए बढ़ावा दे रही है, उद्यम को इसलिए बढ़ावा दे रही है कि आप अपने साथ कई लोगों को जोड़ेंगे, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे
1: जी।
2: इस वजह से स्वरोजगार का दिन ब दिन महत्व बढ़ता चला जा रहा है और ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये गांधी जी भी कहते थे स्वावलंबन, स्वरोजगार
1: जी।
2: लेकिन कुछ ऐसे बीच में, क्योंकि देश बन रहा था, बड़े बड़े उद्योग चल रहे थे, बन रहे थे पब्लिक सेक्टर के, तो उसमें नौकरी का एक प्रचलन हो गया। लेकिन अब फिर वही बात बदल गई है और स्वरोजगार का महत्व बढ़ता चला जा रहा है।
1: एक बात और देखने में आई है कि आज अपने देश में छोटी छोटी वस्तुएं, टॉर्च, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इवन दिवाली पर लगने वाले झालर, होली पे लगने वाली पिचकारी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो घर में अवसर बेअवसर या रेगुलर यूज़ में आती हैं, जो बाहर के देशों से इम्पोर्ट होकर के आती हैं, जो कि हमारे देश में अगर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए या जो हाथ खाली हैं, जिनके हाथ में काम नहीं है, अगर उनको थोड़ी सी मदद की जाए, तो ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं हमारे यहाँ बहुत मात्रा में बन सकती हैं और हमारा जो बाहर से इम्पोर्ट करने का जो ये ट्रैक बना है, इससे मुक्ति मिलेगी और जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा हमारे

0: अपने बेरोजगार भाइयों को मिलेगा, तो इस बारे में आपका क्या मानना है?
1: देखिए, आपने इंपोर्ट की बात करी, इंपोर्ट का सबसे बड़ा बिल सरकार का है पेट्रोल एवं डीजल
0: जी।
1: अब पेट्रोल एवं डीजल के सब्स्टिट्यूशन के लिए अब आपने देखा होगा ई रिक्शाज आ गए। ई रिक्शाज क्या है, इसमें बैटरी चार्जिंग है, इसमें पेट्रोल डीजल की खपत कम है। तो आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर निश्चित रूप से अगर जो है भारत के घरों में छोटे छोटे उद्योग डेवलप होंगे तो इम्पोर्ट पे सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट हटेगा, इम्पोर्ट कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
0: बिल्कुल। तो सवाल ये होता है कि अभी तक जो देखा गया है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है और जो शिक्षा का पैटर्न है उसमें परंपरागत शिक्षा दी जाती है और तकनीकी शिक्षा का काफ़ी अभाव रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत ITI या इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र हैं लेकिन उनकी भूमिका बहुत अधिक नहीं दिखाई पड़ती है। तो अगर हमारे युवाओं को स्वरोजगार में जाना है तो उनको शिक्षित और प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो MSME के अंतर्गत अगर कोई हितग्राही अगर काम करना चाहता है तो उसको व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से मिल सकती है?
1: आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ITI यानी इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑलरेडी काम कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन कोरोना के बाद आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए।
0: हाँ।
1: कितनी कंपनियां बंद हुई, तो एक कंपनी से कई लोग रोजगार में रहते हैं, जरूरी नहीं सब वहां नौकरी कर रहे हो। कोई कुछ चीज की सप्लाई कर रहा है, कोई दूध सप्लाई कर रहा है, कोई मक्खन सप्लाई कर रहा है, कोई मशीनरी का पार्ट सप्लाई कर रहा है, वो MSME तो है जो छोटे छोटे उद्यमी है। अब तक ये हुआ है कि शिक्षा जो इस तरह की MSME से संबंधित हुई है वो पारिवारिक स्तर पे हुई है। तीन पीढ़ियों से व्यापार चला आ रहा है रेडीमेड गारमेंट का, दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते हैं, अब मैं कर रहा हूँ। तो ये पारिवारिक शिक्षा ये बहुत बड़े स्तर तक नहीं हो पाती और फिर इसमें एक गुणवत्ता भी नहीं रहती, फिर इसमें समय सीमा भी नहीं रहती। वो कहते हैं ना, गलती करो और सीखो, ये सिद्धांत ठीक नहीं है, ट्रायल एंड एरर। वो गलती करो, ज़्यादा से ज़्यादा गलती करो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। इससे अच्छा क्यों ना एक महीने का कोई कोर्स करो व्यावसायिक शिक्षा का।
0: एकदम सही।
1: और गलतियाँ करना बंद करो
0: जी।
1: तो मेरा कहना ये है, पारिवारिक शिक्षा जो चल रही थी वो ऐसा नहीं है कि MSME के आने के या कंसेप्ट आने के पहले व्यापार नहीं था, था लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ था
0: जी,
1: संस्थागत नहीं हुआ था। तो इसलिए एक जो अब संस्थाएं, कई संस्थाएं जैसे MSME, जैसे NSIC, UPICO, DIEPC, MBA कॉलेजेस, ITIs एंड पॉलिटेक्निक्स, सब तरह तरह की टेक्निकल और व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं। स्किल इंडिया कार्यक्रम आपने सुना होगा, इसकी मिनिस्ट्री ही अलग बना दी गई। पढ़ो, व्यवहार में लाओ, सीखो और कारोबार करो
0: जी।
1: इसके अलावा सफल उद्यमियों की जीवनी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर पाएंगे, तीन पीढ़ी पहले लाख रुपए से टाटा ग्रुप ने कारोबार शुरू किया था, आज जितना भारत में कारोबार है उसका कई गुना ज्यादा विदेशों में कारोबार है टाटा का
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें शिक्षित करती हैं।
0: तो MSME को जरा मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और व्यापक रूप से आप हमारे सुनने वालों को बताएं ताकि उनका विस्तार कहाँ तक हो सकता है या इसका स्कोप कितना है वो समझ सकें।
1: MSME एक समंदर की तरह है। ये कॉन्सेप्ट अभी हाल के वर्षों में प्रचारित हुआ है लेकिन ये बहुत बड़े समंदर की तरह है। ये एक ऐसा विभाग है जिसके अंतर्गत कई विभाग काम कर रहे हैं, जिससे जुड़े हुए कई विभाग काम कर रहे हैं। MSME की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो M मतलब माइक्रो, S मतलब स्मॉल, M मतलब मीडियम और E मतलब एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसको दो भागों में आप देखिए, एक MSME सेक्टर और एक MSME मिनिस्ट्री। MSME सेक्टर वो है जो कि पूरे देश में ही क्यों, पूरे विदेशों में भी फैले हैं ये। MSME सेक्टर कैसे काम कर रहा है, उसका क्या योगदान है। कृषि के बाद सबसे बड़ा योगदान MSME सेक्टर का है अपने GDP में। तो MSME जो विभाजित किया गया है प्लांट एवं मशीनरी में विनियोजन के आधार पर, अभी 1 जुलाई 2020 से नई परिभाषा आई है जिसमें कि 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, 1 करोड़ माइक्रो, 10 करोड़ स्मॉल और 50 करोड़ मीडियम एंटरप्राइज गिने जाएंगे अगर आपका प्लांट एवं मशीनरी में विनियोजन हो रहा है या होने जा रहा है।
0: तो ये तो काफी बड़ी राशि है,
1: काफी बड़ी राशि है।
0: और कोई भी हितग्राही अगर करना चाहे
1: जी,
0: तो मेरे ख्याल से ये इतना अमाउंट है
1: जी
0: कि वो छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा उद्योग कर सकता है
1: जी।
0: तो अच्छा, जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम कौन सा व्यवसाय चुने।

0: कि ताकि हम उसको कर पाएं, तो किस आधार पर हम चुनाव करें अपने व्यवसाय का कि हम अपने व्यवसाय को सफल बना पाएं?
1: एक अच्छा चुनाव कई सालों तक लाभ पहुंचाता है और एक गलत चुनाव कई सालों तक दुख पहुंचाता है।
0: जी
1: अब किशोर कुमार जी ने क्लासिकल संगीत नहीं सीखा था, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था,
0: रुचि,
1: उनको रुचि थी, पैशन, प्रोफेशन, मिशन सब उनका वही बन गया। अब कोई टेक्निकल शिक्षा तो ली नहीं उन्होंने, लेकिन एक जुनून था, उद्यमी बन गए, एक उद्यमी ही कहे जाएंगे। तो उन्होंने अपने कार्य को इस तरह से विस्तार दिया कि आज उनका नाम है। तो जिसमें आपकी रुचि हो और जो आप में क्वालिटीज़ हो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, जिसमें आपने दक्षता ली हो, कोई शॉर्ट ट्रेनिंग लिया हो, सिलाई कढ़ाई का कोर्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसको करके गैरेज खोल सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई क्लस्टर डेवलप करता है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा अलीगढ़ में ताला उद्योग, फिरोजाबाद
0: जी
1: में चूड़ी उद्योग, सूरत में डायमंड एवं कपड़ा उद्योग। तो ये अलग अलग क्षेत्र यूं ही विकसित नहीं हो गए, इसमें एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इनको डेवलप किया है। तो अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जुड़ जाते हैं जहाँ पे क्लस्टर डेवलप है, आपको सफलता जल्दी मिलेगी। किसी बड़ी कंपनी के सहभागी बन जाएं आप, किसी भी बड़ी कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, आपका कारोबार चल निकलेगा।
0: तो ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जब आप कोई काम करने चलते हैं तो आपको अपने लेवल पर भी थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। मार्केट सर्वे करिए, लोगों से सलाह लीजिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, तो ये सब करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो आपने जैसा कि कहा कि ज़रूरी ट्रेनिंग है वो लें, तो ले करके फिर आप आगे बढ़िए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप कोई उद्योग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से पंजीकरण भी कराना आवश्यक होता होगा और साथ में कुछ लाइसेंसिंग सिस्टम जो कि आवश्यक भी है,
1: जी
0: तो
1: देखिए,
0: इसके बारे में बताइए।
1: उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने सुना होगा काफ़ी पॉपुलर है और इसको कंपलसरी कई विभागों में कर दिया गया है।
0: जी
1: उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट में बताना चाहूँगा, msme.gov.in पे अगर आप जाएंगे तो ये एक रजिस्ट्रेशन कहलाएगा कि आप उद्यमी हो गए। उसमें आप चाहे सेवा उद्योग के लिए, चाहे निर्माण उद्योग के लिए और चाहे ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा GST तभी कराएंगे जब आप में अप्लीकेबल हो, और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। इसके अलावा कुछ फूड लाइसेंसेस, FSSAI का आपने नाम सुना होगा, अगर कोई सेंसिटिव इंडस्ट्री है जो खान पान से संबंधित है तो FSSAI कराना पड़ेगा। और जो आवश्यक हो, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर आपके बिजनेस में आवश्यक है तो वो करा सकते हैं।
0: आपने जिस साइट का नाम लिया है MSME का, वो साइट आप हमारे सुनने वालों को दोबारा एक बार बताइए।
1: msme.gov.in
0: MSME.gov.in।
1: .in
0: तो ये तो रही बात आपके रजिस्ट्रेशन की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको पैसा लेना पड़ेगा तो इसकी जो नोडल एजेंसी है जिला उद्योग केंद्र, वहाँ पर संपर्क करें रजिस्ट्रेशन कराने
1: जी
0: के बाद।
1: जी
0: और फिर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जरूरी होती
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं
1: जी
0: और फिर आपका आवेदन बैंक को जाएगा,
1: जी
0: बैंक आपको फाइनेंस करेगा, उनकी अपनी शर्तें होती हैं तो
1: जी
0: उस हिसाब से
1: जी जी
0: वो आपको फाइनेंस करेंगे।
1: जी
0: तो आप चलते चलते हमारे उद्यमियों को कुछ संदेश दीजिए।
1: मैं ये चाहूँगा कि बहुत अच्छा स्कोप है, आत्मनिर्भर भारत यूं ही नहीं आया है, वोकल फॉर लोकल यूं ही नहीं आया है, सरकार का ज़बरदस्त सपोर्ट है, तमाम योजनाएं हैं, लगन से लोग आगे बढ़ें बिना किसी झिझक के। 10 साल नौकरी में अप्लीकेशन देने के बजाय 1 साल व्यवसाय में स्ट्रगल कर लें तो सफलता ज़्यादा मिलेगी।
0: और एक चीज़ और है कि अगर आप बैंक से मदद लेते हैं तो
1: जी
0: बैंकों के प्रति आपकी बहुत बड़ी लायबिलिटी बनती है
1: जी
0: कि आप जो पैसा लेते हैं वो समय सीमा के अंतर्गत बैंकों को ईमानदारी से लौटाइए और आपका उद्योग कभी पीछे नहीं रहेगा। हम आशा करते हैं कि हमारे सुनने वाले इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। अरोरा साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आज के हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर अरोरा और मोहन धनराज के बीच ये बातचीत। बातचीत का विषय था स्वरोजगार एवं व्यापार। इसी के साथ अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से वक्त हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं अरुण गोलवाड़ी। इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एलडी शर्मा का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, किसी कारणवश हम आपको अरुण गुलवाड़ी का ये भजन सुचारू रूप से नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। विकल्प में आपको सुनवाने जा रहे हैं पंकज श्रीवास्तव के स्वर में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारे कलाकार हैं पंकज श्रीवास्तव। प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दीप्ति मिश्रा का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज श्रीवास्तव के स्वर में दीप्ति मिश्रा का लिखा ये गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवा रहे हैं नवरात्रि पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है शारदीय नवरात्रि पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप सभी को जय माता दी। शारदीय नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व। शरद ऋतु के इस निर्मल आकाश में जब ढाक के ढोल बजते हैं तो लगता है स्वयं आदिशक्ति धरती पर उतर आई है। पुराण कहती है नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की यात्रा है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी और सिद्धिदात्री। आज से ठीक 73 साल पहले 1953 में एक फिल्म ने इन 9 रूपों को पर्दे पर साक्षात दिखाया था। जी हाँ, फिल्म का नाम ही था नवदुर्गा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करती हैं उसी ऐतिहासिक फिल्म के गाने के साथ।

श्रोताओं, मन अभी भी उसी जयकार में गूंज रहा है। माँ का नाम ही सबसे बड़ा है। फिल्म सुहाग में जब मुसीबत आती है तो परवीन बॉबी माँ के सामने हाथ फैलाती है और कहती है, सबसे बड़ा तेरा नाम। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत

दोस्तों, मां का बुलावा जब आता है तो भक्त दौड़ा चला आता है। 1983 में आई फिल्म अवतार, वो अमर गीत जो आज भी चहुओं ओर गूंजता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।

आशा भोसले, महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल और साथियों की मिलीजुली आवाजों में इस वक्त आपके रेडियो सेट पर सुनाई पड़ रहा है अवतार फिल्म की ये भक्ति रचना। इसे लिखा आनंद बख्शी साहब ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: और भक्त जवाब देता है, तूने मुझे बुलाया शेरावालिये, मैं आया शेरावालिये। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में माँ के प्रति समर्पण का ऐसा भाव जो सीधे दिल में उतर आता है।
1: श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ फिल्म आशा का गाना आप सुनने जा रहे हैं। इसमें नरेंद्र चंचल ने भी इनका साथ दिया है। रचना आनंद बख्शी की, संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आज के इस प्रोग्राम का अंतिम गीत। 1975 में एक छोटी सी फिल्म आई थी बिना बड़े स्टार के, नाम था जय संतोषी माँ। किसी ने सोचा भी नहीं था ये फिल्म इतिहास बना देगी। उषा मंगेशकर जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत आज हर घर की आरती बन गया।

तो श्रोताओं, ये थे शारदीय नवरात्र पर मां को समर्पित पांच फिल्मी नगमे। पहले गीत में पूरी नौ दुर्गा की वंदना और अंतिम में आरती की भावना। मां ब्रह्मचारिणी आप सभी को सुख समृद्धि और शक्ति प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ अपने दोस्त संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। और हाँ, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर जरूर बताइएगा। और इसी मंगल कामना के साथ कि माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चला है सबरस कार्यक्रम का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र शर्मा का लिखा ये भजन। सबरस में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक दो चंद गजलें। आइए पहले सुनते हैं जमीर काजमी का लिखा ये कलाम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास के स्वर में जमीर काजमी का लिखा ये कलाम। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वाजिदा तबस्सुम का ये लिखा कलाम जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। लीजिए, समाप्त फरमाइए।

0: सब्र करी तुम्हें अभी आप सुन रहे थे वाजिदा तबस्सुम का लिखा ये कलाम जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। श्रोताओं इसी के साथ मिले जुले गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस यही खत्म होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का। अब से कुछ ही पलों में
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली हरियाणा पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2000

0: 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का

0: सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
2: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
4: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
3: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
5: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
6: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
3: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में

0: मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK. Targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate lists by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. An IMD forecasts a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab and Chhattisgarh till tomorrow. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने बरतानिया के साथ इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने के अज़्म का एआदा किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करने का हदफ रखा है। मरकज ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर जोर दिया है कि वो तिब्बी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात और सहूलतों के इवज शरहों को नुमाया तौर पर जाहिर करने को यकीनी बनाएं। हुकूमत महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना किसानों की शिकायत के इजाले की खातिर एक आला सतही कमेटी कायम करेगी। नई दिल्ली में जंतर मंतर अब एहतजाज का मकाम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज और मुजाहिरों के लिए 3 नए मकामात नामजद किए हैं। अमरीकी इकतसादी माहरीन रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इकतसादियात के शोबे में 2026 का नोबेल इनाम दिया गया है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने

की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने साल 2030 तक भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत के हजम को दोगुना करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में भारत बरतानिया मुश्तरका माशी और तिजारती कमेटी JETCO के 16वें इजलास के तहत मुनक्कदा मुकम्मल JETCO कारोबारी इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने यह बात कही। उन्होंने पायदार मसरूफियात

वाह क्या अंदाज है। दोस्तों कभी कभी कोई आवाज दूर से आती है और लगता है जैसे बरसों से इसी सदा का इंतजार था। कुछ ऐसा ही एहसास है हमारी अगली गजल में। आपको सुनवा रही है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गजल। और जब

गजलें अक्सर बिछड़ने की बात करती हैं, लेकिन एक गजल ऐसी भी है जो कहती है मिलते रहो क्योंकि मिलना ही जिंदगी है। आपको सुनवाने जा रही है मिताली सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल।

और अब इस कहकशा का वो मुकाम जहां अल्फाज कम पड़ जाती हैं। गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब, जिनकी आवाज में दर्द भी एक सुकून बन जाता है।

और अब आज की महफिल की आखिरी गजल। जिंदगी को समझना है तो इस गजल को सुनिए। मनहर उदास जी की आवाज में

श्रोताओं, ये थी आज की पांच गजलें, पांच एहसास। उम्मीद है ये कहकशा आपके दिल में कहीं ठहर गई होगी। इसी के साथ आज की इस गजलों की कहकशा से इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, आकाशवाणी प्रयागराज की विविध रंगी कार्यक्रम सुनते रहिएगा और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। हमारा नंबर है 800-492-6250। और अब शब्बा खैर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहकशा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में फिल्म संगीत का कार्यक्रम

सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। तुम्हारे होने से जिंदगी एक कविता बन गई है, एक गीत बन गई है। जिंदगी की राहों में तुम्ही से तो सारी महक और सारी चहक है। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते कट जाएंगे आसानी से अगर तुम्हारा साथ हो।

सोचता था कैसी कटेंगी रातें परदेश की। ये चांद तो वही है अपने आंगन वाला, जिसे सदा हमने अपने साथ रखा है। गर्मियों की रातों में उस छोटे शहर में चांद छत पर टंगी कंदील था। इस बड़े शहर में चांद समंदर पर चमक बिखेरता लाइट हाउस था। जिंदगी के मुश्किल दिनों में चांद जेब में चमकता सिक्का था। कितने कितने रूप इस चांद के हैं, जरा सोचिए तो। चांद में तुम्हारी झलक भी देखी है हमने। कितनी वजहें हैं चांद को हमेशा अपने साथ रखने की।

इंतज़ार की जादुई डोर जो कभी कभी एकदम छोटी सी होती है और पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाती है, पर अक्सर इंतज़ार का सिलसिला बड़ा लंबा खिंचता है। ज़िंदगी में जिस चीज़ का इंतज़ार किया उसने हमारे सब्र का इम्तहान लिया। तुम्हारा इंतज़ार सबसे बड़ा इम्तहान रहा, इंतज़ार जिसमें हम नहीं रहते, हम तुम हो जाते हैं।

जब इंतजार लंबा खींचना होता है तो खींच ही जाता है, कुछ भी आपके बस में नहीं होता। उदासी की एक लहर आती है और भिगोकर चली जाती है, पर उसे इतने से तसल्ली नहीं होती। दूसरी लहर आती है, वो भी भिगोकर चली जाती है। पहले की उदासी ज्यादा गहरी और ज्यादा संगीन बन जाती है। ऐसे में जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

इत्र सा महका अचानक अचानक जैसे खेल सा गया सब कुछ। ये तुम्हारा आना था जिसने सब बदल बदल सा दिया, जैसे अचानक ही बज उठा हो कोई साज और सब कुछ तिलस्मी चादर से ढक गया हो। तुम्हारे जुड़ाव और प्यार ने रंग भर दिए हैं हमारे संसार में। ये सतरंगी संसार किसी मासूम बच्चे की सपनीली ड्राइंग बुक में बदल

जिंदगी के मोड़ को कभी कोई समझ नहीं सका है। जिंदगी कोई गणित का समीकरण नहीं है कि यहां सब कुछ तयशुदा तरीके से होता रहे। जिंदगी के अपने लय हैं, सुर हैं। जिंदगी की इस खूबसूरती को शिद्दत से जीना है हमें। अपनों का हाथ कसकर पकड़े रहना है, बांटनी है मुस्कानें, साझा करने हैं आंसू, और बस जिंदगी की स्लेट पर तसल्ली की इबारत

श्रोताओं, हमने आपको जिन फिल्मों के गाने सुनवाए उनके नाम इस तरह से ही संगम। काला बाजार,

श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम अभी हाजिर होते हैं अपना अगला कार्यक्रम लेकर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग रागेश्री में धमार गायन। बोल हैं कुंज बिहारी हैं तेरो। आपके साथ पखावज प्रसंगति की है अंकित पारिक ने। तो आइए सुनिए पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग रागेश्री में धमार गायन।

शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे पंडित प्रेम कुमार मलिक का राग रागेश्री में धमार गायन। आपके साथ पखावज पर संगति की अंकित पारिक ने, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम 192.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों

0: को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।